सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: में करता नहीं बार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार?

हाँ बाबू, ये सर्कस है और ये सर्कस है शो 3 घंटे का।

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

नमस्कार नीतुषा, श्रोताओं को भी नमस्कार। नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल के सीईओ कुणाल नाइक और चेयरपर्सन नादिया पिरन ने कल प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम को गांजे से संबंधित सुधार की राष्ट्रीय रणनीति की रिपोर्ट सुपुर्द की। इस दस्तावेज में राष्ट्रीय स्तर पर हुए सलाह मशवरों से प्राप्त हुई सिफारिशें शामिल हैं। ये रिपोर्ट तैयार करने के लिए आम जनता और विभिन्न संबंधित पक्षों से 1800 से ज़्यादा सुझाव और राय इकट्ठा की गई थी। मंत्रिमंडल को सौंपे जाने से पहले नेशनल ड्रग कंट्रोल कमीशन के स्तर पर इस रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी। कुणाल नाइक ने प्रधानमंत्री को नदेक के समक्ष आ रही चुनौतियों के बारे में भी जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की तरफ से उन्हें इन समस्याओं का समाधान तलाशने में पूरा सहयोग मिलने का आश्वासन मिला है। शागोस मामले को लेकर आज मॉरिशस और यूके के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लगेगा। दोनों देशों के बीच समझौते को लेकर दूसरे वर्किंग सेशन के लिए फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के प्रतिनिधि और मॉरिशन अधिकारियों के बीच बातचीत चलेगी। बरतानी संसद में कल हुई बहसों में शागोस का मुद्दा एक बार फिर उठाया गया। कंजर्वेटिव नेता केमी बाधेनोच ने कहा कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री जेगोगस या की लीज पर इतनी बड़ी रकम खर्च करने को तैयार क्यों हैं, जबकि वे बरतानी रक्षा बजट के लिए फंड देने से इनकार कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिलीपींस में एक नौका पर भड़की भयानक आग में कम से कम 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि 87 अन्य लोगों के बारे में पता नहीं चल रहा। इस पर्यटन नौका एमवी जून से 42 लोगों को बचाया जा सका है। हादसे के वक्त क्रू 10 सदस्यों सहित नौका पर 134 लोग सवार थे। आखिर में स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत मॉरिशस के लिए ऊंची लहरों की चेतावनी जारी है, जो आज शाम 4 बजे तक के लिए बरकरार रखी जाएगी। मस्कारेंस के दक्षिण में पाई जाने वाली जोरदार एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर तेज और ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान आज दिन के दौरान रहकर पश्चिमी इलाकों पर बारिश होती रहेगी, ऊंचाइयों पर कोहरा छाया रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। ऊंचाई वाले जगहों और खासकर गाड़ी चलाते हुए क्रॉस विंड्स वाले इलाकों में खास सावधानियां बरतने की मांग की जाती है। प्रवाह रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। 4 से 6 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी, जिनका असर दक्षिणी तथा पश्चिमी लगूनों और तटीय इलाकों पर भी पड़ेगा। इसलिए खासकर मछुआरों और समुद्री गतिविधियों में संलग्न लोगों से इन इलाकों से बचने की मांग की जाती है। तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम रहेगा। सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम 14 से 16, अधिकतम 18 से 21 डिग्री सेल्सियस। साहिली इलाकों पर न्यूनतम 18 से 21, अधिकतम 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:10 पर सूर्योदय, शाम को 6:03 पर सूर्यास्त होगा।

0: ये थी अब तक की खबरें हम आपसे मुलाकात करेंगे 6:30 बजे मुख्य समाचार बुलेटिन के साथ तब तक के लिए आज्ञा दीजिए नमस्कार
1: Rise and shine. You're listening to RM3 Radio.

सदकल्लाहुल अज़ीम। सामीन, अभी अभी आपने कुरान मजीद की चंद आयतों की तिलावत समाहत की। कुरान की तिलावत से अल्लाह ताला की अज़मत और कुदरत का एहसास पैदा होता है और ईमान ताज़ा होता है। कुरान इंसान को नेकी, सच्चाई, इंसाफ और कामयाबी का रास्ता दिखाता है। जिस घर में कुरान की तिलावत होती है वहाँ दीनी और रूहानी माहौल पैदा होता है और अहले खाना को नेकी की तरगीब मिलती है। सामीन मुख्तरम, पेश खिदमत है एक हमद, आइए समाअत करते हैं।

देखते हुए सफ़र के दौरान चलते फिरते और फारिग वक्त में भी इंसान अल्लाह ताला को याद कर सकता है। सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह और अस्तग़फिरुल्लाह जैसे अस्कार ज़बान को पाक रखते और इंसान को अल्लाह ताला से जोड़े रखते हैं। इसलिए ज़िक्र ऐसा अमल है जिसके लिए किसी ख़ास जगह या वक्त की पाबंदी ज़रूरी नहीं, अगरचे मसनून औकात और अस्कार की अपनी ख़ास फजीलत है।

मोहतरम सामीन, ज़िक्रुल्ला एक बहुत आसान लेकिन नहायत अजीम इबादत है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ज़िक्र सिर्फ बुज़ुर्गों या फारिग लोगों के लिए है। हर उम्र का इंसान अल्लाह ताला को याद कर सकता है। सुबह शाम के अज़कार, इस्तग़फ़ार, दुरूद शरीफ, तस्बीह और कलिमाए तैयबा को अपनी रोज़ाना ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। अपने बच्चों को भी मसनून दुआएं और अज़कार सिखाएं।

ताकि उनकी ज़बान बचपन ही से अल्लाह ताला की याद से आशना हो। याद रखिए, जिस दिल में अल्लाह ताला की याद होती है वो रूहानी तौर पर ज़िंदा रहता है, और जिस घर में ज़िक्र होता है वहाँ रहमत और सुकून की फ़ज़ा पैदा होती है। अल्लाह ताला हमें कसरत से अपना ज़िक्र करने वालों में शामिल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आइए सबाल खैर के आखिर में रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सलाम का नजाना पेश करते हैं। इंशाल्लाह समीर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगा। अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

0: एमपीसीच्यावती तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।

तरसी हो कई शंकना ही का पन्याता साथ कार्यक्रम पूरी पूरा आनंद गीता हाथ तरसी को पनरामी दरला कार्यक्रम सपने साथ ही सरी स्टे कनेक्टेड दहावास्ता पर्यंत अन्य अक्षण तुम्हारे सकलन साथ ही या पुढील कोली गीता स्निवड आपन की लिया है।

मधुरता शुरू थई चुकी छे अने मधुरताना छांटानी साथे चालो श्यामनु आ गीत लईए। श्याम आल्बमनु गीत छे काव्यालीमयना स्वरमा राधा बोले माधव। भाई मिठास आपणे कहीने के संगीत द्वारा प्रसरी रही छे, तो बस आ संगीतमय वातावरणनी साथे आपणे पण एकदम भिनाश अनुभवीए अने आ प्रेमनी लागणीनी भिनाश छे, गीतोनी भिनाश छे। तो चालो आ भिनाशमां आपणे पण भिंजाई जईए अने गीतोनी मधुरता माणता रहीए।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया. आवो अमारी साथे. श्रोता मित्रों, माणस ना कावतराओनी सामे कुदरतनी कातर हमेशा मोटी होय छे. माटे जो आपणे कहीए ने कि खराब नियतनी साथे आपणे कोईनी मदद पण करीए, कोईनू भलू करवानू प्रयत्न करीए, कारण के आपणो काई एमां आपणो काई हित छुपायेलू होय, तो याद राखजो श्रोता मित्रों के घणी वखत ऊपरवाळो बस आपणा कर्मना अनुसार आपणने फळ आपे छे. अने ते साथे ज भाई कोईनो खराब समय चाली रह्यो होय त्यारे एनो हाथ पकड़जो अने तेने सहारो आपजो, कारण के खराब समय तो वीती जशे पण ए माणस छे ने तमने जीवन भर माटे दिलथी दुआओ आपशे. अने आ साथे ज भाई माणसाईनी वात आपणे घणी वखत करीए, कारण के आज तो जीवन में पॉजिटिविटी लई आवे छे, घणी वखत आपणे विचार करवा माटे मजबूर करी दे छे. अने आ वातोनी साथे मस्त मजाना गीतो तमारा माटे. आवो मारी साथे प्रोग्राम रेडियो मनोरंजनना लहेर पर, अने हूँ छू रत्ना, साथ आपी रही छू आप सब कोईनो. ठंडी गुलाबी छे अने जस्ट गुलाबी गुलाबी ठंडीनी साथे गुलाबी भरेला गीतो, गुलाबी गीतो तमारा माटे अमे चलावी रह्या छीए. तो चालो एन्जॉय करिए फरीवार शुभारंभनुं आ आगलुं गीत. एनीवेज आ जे गीत हमणां थोड़ी वार पहेला चाल्युं हतुं कीर्तिदान गढवी अने ईशानी दवेना स्वरमां मुकायेलुं शुभारंभनुं ज गीत हतुं. तो फरी एक वार दिव्य कुमारना स्वरमां मुकायेलुं गीत पलक जोशीए आप्युं छे साथ.

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

0: शक्ति, भक्ति में शक्ति। ताल एफएम पर।
1: सभी श्रोताओं को अनीता का प्रेम सहित नमन स्वीकार कीजिए तथा भक्ति में शक्ति कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह कार्यक्रम रेडियो मनोरंजन की लहरों पर प्रसारित हो रहा है। भक्तों, आजकल सर्वत्र गणेश चतुर्थी का पावन व्रत प्रारंभ हो चुका है। गणेश चतुर्थी का पर्व भगवान के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो बुद्धि समृद्धि और विघ्नहर्ता के प्रतीक है। तो श्रोताओं, आज का कार्यक्रम गणेश भगवान पर आधारित रहेगा, विशेषकर उनके अंगों के महत्व पर चर्चा होगी। आइए, गणेश वंदना के साथ ही हम इस कार्यक्रम का शुभ प्रारंभ करते हैं।

दोस्तों, सर्वप्रथम हम देखते हैं कि गणेश जी का एक बड़ा मस्तक है। गणेश जी का बड़ा सिर यह सिखाता है कि हमारी सोच हमेशा बड़ी और व्यापक होनी चाहिए। बड़े सिर वाले को कुशल

साथ ही साथ श्रोताओं, गणेश जी के कान हाथी जैसे बड़े हैं, जो यहाँ संदेश देते हैं कि हमें सबकी बात ध्यान से सुननी चाहिए, किंतु अपने जीवन के निर्णय अपनी बुद्धि और विवेक से करना चाहिए। यह बुरी बातों को बाहर छोड़ने की भी सीख देते हैं।

प्रियजन, भगवान गणपति की आंखें तो अवश्य छोटी हैं, किंतु यहाँ सूक्ष्मता, एकाग्रता, गहराई एवं दूरदर्शिता का प्रतीक है। उनके मुंह देखने में अवश्य छोटा है, परंतु यह हमें कम और नपातुला बोलने की सीख देता है, जो समझदारी की ओर

भक्तजन बापा को एक दिन कहा जाता है और उनका एक दांत टूटा हुआ है। उनका यह टूटा हुआ एक दांत यह सिखाता है कि जीवन में अच्छे और बुरे अनुभवों को अलग करके केवल अच्छी बातों को अपनाना चाहिए और अहंकार का त्याग करना चाहिए।

प्रियजन, भगवान विनायक का बड़ा उदर अर्थात पेट है, जो यह ज्ञान देता है कि हमें जीवन के अच्छे और बुरे दोनों तरह के अनुभवों और रहस्यों को अपने अंदर पचाना यानी संयम से संभालना सीखना चाहिए, तथा उनके चार हाथ हमारे अंतःकरण के चार तत्वों मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त का प्रतिनिधित्व करते हैं।

श्रोताओं, भगवान गणेश जी का प्रत्येक अंग हमें जीवन में ज्ञान, संयम और सही आचरण की सीख देता है। तो इन्हीं विचारों के साथ श्रोताओं, यह कार्यक्रम समाप्त होने चला है। आपने साथ एवं ध्यान दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अनीता को दीजिए अनुमति। नमस्कार और शुभ दिन।

नमस्कार नीलमणि, श्रोताओं को भी नमस्कार। नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल के सीईओ कुणाल नाइक और चेयरपर्सन नादिया पिरन ने कल प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम को गांजे से संबंधित सुधार की राष्ट्रीय रणनीति की रिपोर्ट सुपुर्द की। इस दस्तावेज में राष्ट्रीय स्तर पर हुए सलाह मशवरों से प्राप्त हुई सिफारिशें शामिल हैं। ये रिपोर्ट तैयार करने के लिए आम जनता और विभिन्न संबंधित पक्षों से 1800 से ज़्यादा सुझाव और राय इकट्ठा की गई थी। मंत्रिमंडल को सौंपे जाने से पहले नेशनल ड्रग कंट्रोल कमीशन के स्तर पर इस रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी। शागोस मामले को लेकर आज मॉरिशस और यूके के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस लगेगा। दोनों देशों के बीच समझौते को लेकर दूसरे वर्किंग सेशन के लिए फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के प्रतिनिधि और मॉरिशस अधिकारियों के बीच बातचीत चलेगी। बरतानी संसद में कल हुई बहसों में शागोस का मुद्दा एक बार फिर उठाया गया। कंजर्वेटिव नेता केमी बदेनोक ने कहा कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री जेको गौसिया की लीज पर इतनी बड़ी रकम खर्च करने को तैयार क्यों हैं, जबकि वे बरतानी रक्षा बजट के लिए फंड देने से इनकार कर रहे हैं। जवाब में बरतानी प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने बल देकर कहा कि यूके जेको गौसिया में अपना सैन्य अड्डा नहीं छोड़ेगा और इस बारे में अमेरिका के साथ बातचीत चल रही है। पोपलोबोसिस की अदालत पिछले 26 अक्टूबर को रिश्ते के एक हाइपरमार्केट के सर्वेलेंस कैमरों के फुटेज को सबूत के

0: तौर पर स्वीकार करने के बारे में अपना फैसला सुनाएगी। ये तस्वीरें पूर्व मंत्री कल्पना कुंजुशा के मुकदमे के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं, जिन पर चोरी और चोरी का सामान रखने के आरोप लगे हैं। इस मामले में कल 3 गवाहों के बयान लिए गए। हाइपरमार्केट के सिक्योरिटी मैनेजर तेगूर, सीआईडी के एक सर्जेंट और पुलिस आईटी यूनिट के एक अधिकारी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, फिलीपींस में एक नौका पर भड़की भयानक आग में कम से कम 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि 87 अन्य लोगों का पता नहीं चल रहा। इस पर्यटन नौका से 42 लोगों को बचाया जा सका है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त है। थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। क्लेयर फोन नंबर तीन फिनिक्स में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड श्री जुनाई जीवन जो बेबे नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 3:30 बजे इनकी पत्नी श्रीमती सुनीति सुमन गोपी के मकान नंबर क्लेफो नंबर 3 फिनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आले भैयाओं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:30 PM। जावियर रोड कास्कावेल में 36 साल के 36 ईयर्स ओल्ड के श्री केविन सोहराय जो कुनाल नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के दो बजे इनके पिता श्री मनोज सोहराय के मकान जावियर रोड कास्कावेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोसोंश की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो 2 PM। शोक में डूबे परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv. You're listening to RM3 Radio.

सुहाना सफर के सभी हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं को विदिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं हमारे प्यारे दोस्त? आ गई हूं मैं विदिता साथ देने के लिए रेडियो मनोरंजन पर। और आरएम थ्री पे आपको पता है हमारा जो प्रोग्राम है ये चलता है टिकटॉक पे लाइव। तो अगर आप लोग भी हमारे इस लाइव के साथ जुड़ना चाहते हैं तो भूलिएगा नहीं, आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे गीतों को एंजॉय तो करेंगे लेकिन साथ में आप अपने मैसेजेस भी उधर भेज सकते हैं। वहाँ पे हर तरह की बातें होंगी और आप चाहे तो वहाँ पर हमें जोड़ सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, खूबसूरत गीतों के इस बीच में एक बहुत ही प्यारे से गाने के साथ प्रोग्राम को आगे ले चलेंगे। अभी आप सुन रही थी सुमन कल्याणपुर को और फिल्म का नाम बात एक रात की। इसी के साथ नेक्स्ट जो हमारा होगा ये है फिल्म ये वादा रहा का गाना।

0: भाई जब हम सोचते हैं ना कि ऐसे कैसे क्या हो गया, तो ये प्रॉब्लम है ना कि हम सोचते रह जाते हैं, लाइफ में बहुत कुछ हो जाता है। तो चलिए अभी के लिए कुछ और करते हैं।
1: सुहाना सफर
0: ये है सुहाना सफर। सुहाना सफर में हमारे साथ जुड़ी हुई है बबीता जी, नमस्कारम। साथ में है श्यामा रिदु, वनकम। जीवासन पिरुमल, हेलो। एंड आई एम बेटर, थैंक यू सो मच। वंदीविल, आपका भी हम स्वागत करते हैं। एंड वी हैव किरण पुरी फ्रॉम वैंकूवर। सर्दी, वहाँ पे तो सर्दी होती है भाई, पता नहीं अभी गर्मी है या क्या, लेकिन आपके यहाँ भी सर्दी अभी बहुत जल्द शुरू होने वाली है, आई नो, क्योंकि जब हमारे यहाँ गर्मी होती है तो आपके यहाँ सर्दी होती है ना। ओके, शामिली आपका हम, शर्मिली आपका स्वागत करते हैं। और साथ में यहाँ पर हम नीता का वेलकम करते हैं। यहाँ पर गाना होगा फॉर केविन एंड कवीना, थैंक यू सो मच। ज्योति, चमन, अविनाश, हेलो, कैसे हो। और यही गाना जगदीप सिंह, हेलो जी, हाय, कैसे हो। ओके, तो यहाँ पर वंदीता हमारे साथ है, थैंक यू वंदीता। एंड किरण जी कहते हैं कि गुड टू सी यू स्माइलिंग। भाई हम तो हमेशा स्माइल करते हैं और हमें तो कभी कभी लाफ्टर भी निकल जाता है, इतनी खुशी होती है हमें आप लोगों से मिलकर। जमन फैमिली के लिए अराउंड मॉरिशस, जिंदगी प्यार की घड़ी। ओके, चलिए यहाँ पर हम जो आपने पता नहीं क्या मैसेज भेजा है लिसिफर, हमें पता नहीं, प्लीज़ फिर से भेजिएगा। यहाँ पर नमस्ते दीदी मेरा, ओके आपकी अच्छा फरमाइश है। ओके, समझ गई, थैंक यू सो मच जॉन। यहाँ पर गाना होगा सूर्या के लिए, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। एंड यही गाना हम चला रहे हैं आपके लिए, आप हैं अश्विना टिमल, यस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। सुनील भुवन, आपके लिए गाना, थैंक यू सो मच, मैं एम फीलिंग बेटर। वो क्या ना, सर्दी खांसी जुकाम तो आजकल सबको हो रहा है, तो थोड़ा सा हमें भी हो गया। अरुणा जी नमस्कार। मीला रामा, आपका स्वागत है, डीप रिवर से आप साथ दे रही हैं। एंड साथ में यहाँ पर गाना हम मनोज प्रतिया के नाम, जो कि सेबास्टोपोल से हैं, उनके नाम डेडिकेट करेंगे। कल्याणी हरी, स्वागत करसी फ्रॉम बैक फ्रॉम फिजी, हॉलीडेज ख़त्म और अब खूबसूरत गीतों का सफर जो है वो यहाँ पे जारी है।

चलिए जी, यहाँ पर श्यामा माहिर अली हमारे साथ, परी जुड़ गई हैं, वी हैव विमी एंड रोशन भी हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं और खूबसूरत गीतों के सफर में हम आपका स्वागत करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि भाई वायरस कैसे हो, सब ठीक है ना? चलो तो यहाँ पर आपने नाम अपना वायरस क्यों रखा ये तो नहीं जानती, लेकिन बड़ा क्यूट लगता है जी ये आम वायरस। साथ दे रहे हैं आप जहाँ से भी, स्वागत हैं और आपके मैसेजेस ज़रूर आप भेज सकते हैं हमें।

0: तुम बिन जाऊं कहां भाई कहीं जाने की जरूरत नहीं है सुहाना सफर है इसी में आप हम सफर बने रहिए
1: सुहाना सफर
0: चलिए डेडिकेशंस यहाँ पर आए हैं दीप्ति के नाम गाना डेडिकेट करेंगे और साथ में निजाम बहादुर संजना मनोरथ कुचोम्बेद संगीता सुचिता कुलमत उनके बेटे लक्ष्य के लिए फरहा कहते हैं सर्दी का मौसम है वो सर्दी को एंजॉय कर रही हैं और साथ ही साथ हमारे गीतों को भी थैंक यू सो मच माधवी दुमर जो हैं सियान और कियान के लिए गाना मांग रहे हैं वहीं पर संजना मनोरथ अजय छाया सभी हमारे दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं एंड रेशमी कैसे हो कहते हैं एक रोमांटिक गाना सारे गाने रोमांटिक है रेशमी जी हेलो जी मी कैसे हो वैसे मीनाक्षी हो सकती हैं और मिमी हो सकती हैं आप लोग अगर मुझे मैसेज भेजते हो ना प्लीज़ अपना नाम तो भेजना ज़रा प्लीज़ जानी जगरू गुडलैंड से है प्रणाम स्वागत आपका प्रोग्राम में
2: You're listening RM Free Radio Radio Radio
0: करिश्मा जहागी हमारे साथ हैं कैसे हैं जी नमस्कार चले जी हम सभी के लिए गणपति जी से प्रेयर करेंगे अभी वैसे भी बहुत सारे लोगों का जो फास्ट है व्रत है शुरू हो चुका है सभी तैयारी में लगे हैं बिल्कुल मोदक खाने को मिलेगा और भी बहुत सारी मिठाइयां लड्डू मिलेंगे खाने को बेबो का स्वागत करते हैं प्रोग्राम में आइए सुनते हैं लता जी को

0: ना सफर सुहाना सफर।
1: चलिए नेक्स्ट हमारा गाना जो है रोश मनीता रागिनी और वास्तव के नाम हम चलाएंगे। स्वराज हमारे साथ हैं, गुड आफ्टरनून टू यू। एंड जोशीवा, गुड मॉर्निंग टू यू। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो बताओ। एंड आपको गाना पसंद आया, मेरे जीवन साथी, सो लवली, है ना। जीवासन पिरुमल, आपका हम फिर से वेलकम करते हैं। प्रिया पुरन, आपका भी। हेमा रिकाई गाना मांग रही है। मून बासु, हासिया, अरुणा, सुबर्ग, सामी, ये सभी आई सी यू टीम में काम करते हैं, तो उन सब के लिए गाना होगा। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट फोटो मिर्जे आपके लिए होगा। आप अपना असली नाम नहीं भेजते, मुझे नहीं पता आपका असली नाम क्या है, फ़ोटो को तो हम पता नहीं, फ़ोटो होता है। आप लोग अपना असली नाम भेजें तो मेरे लिए और भी आसान हो जाएगा। तो खूबसूरत गीतों की इस लिस्ट में आप भी सोच रहे होंगे ना कि हम अभी कौन सा गाना चलाएं। ठीक है, जोशीवा कहते हैं मैं बहुत बहुत अच्छा गाना था, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं तो हम भी ठीक हैं। चलिए इसी के साथ अभी जो हमारा नेक्स्ट गाना होगा उसे हम सभी हमारे उन लिसनर्स के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे जिस समय गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो जहाँ से भी साथ दे रहे हैं साथ देते चलिए और हमारे गाने गुनगुनाते चलिए।

0: मौसम तो दीवाना है लेकिन लगता है कि यहाँ पर पुराने गीतों के जो दीवाने हैं वो भी हमारे साथ है
1: सुहाना सफर
0: चलिए यहाँ पर पूजा नौशाद बुझावन थंका बहादुर कैसे उब्रो शर्मिला रामभरत उनकी मॉम चिंता और उनकी दीदी शैला के लिए गाना मांग रहे हैं वहीं पे हमारे साथ जो नेक्स्ट गाना होगा वो हम नाहिद जरीन के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे और कहते हैं रुक जाना और ऐसे मस्त गाने चलाते रहना कुसमुस थैंक यू सो मच और यहाँ पर सैंडी हमारे साथ हैं और आप कहते हैं कि हाय लुकिंग लाइक द एक्ट्रेस हु संग आपके प्यार में हम सवरने लगे अरे वो तो चुड़ैल थी नहीं वो नहीं जब गाना गाया था तो जिंदा थी हाँ जिंदा थी ओके थैंक यू कंपेयर मत क्या करो बहन भाड़ी पड़ जाए ना हाँ मैं कह देती हूँ कहीं वो वाले रूप में आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी थैंक यू सो मच सैंडी लव यू चले यहाँ पर कनाडा से रेनू हमारे साथ हैं क्या बात है कनाडा वालों आजकल रेडियो मनोरंजन के साथ ऐसे चिपके हो कि सोने का नाम नहीं लेते हो बहुत तो देर हो गई है लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच आई लव यू सो मच गाइस थैंक यू सो मच चलिए यहाँ पर प्रीति हमारे साथ हैं गाना जाएगा उनके हस्बैंड विक्की बेटी एलियाना और आशी के नाम और केशनी उनकी मम्मी का बर्थडे है और उनके हस्बैंड राज और बेटे शशांक की तरफ से हैप्पी बर्थडे अहमद मुस्तफ़ा राम जोन थैंक यू सो मच साथ देने के लिए और यहाँ पर गाना आपको अच्छा लगा जानकर हमें भी बहुत अच्छा लगा चलिए तो यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा प्यारा सा गाना है साइलेश के नाम डेडिकेट करेंगे और यही गाना हम लूना के नाम डेडिकेट करेंगे और मुझे नहीं पता आपने विजिटेशन क्यों लिखा कहीं पे हैं या मेरे नाम को अगर आपने टाइप किया होगा मोबाइल पे तो कुछ और बता रहा है एनीवे कभी कभी हो जाता है वेजिटेबल्स भी हो जाता है तो प्रॉब्लम नहीं है पूजा थैंक यू सो मच कहते हैं गाना ऐसा कि डांस करने का मन कर रहे हैं तो करो पूछो मत जब डांस करने का मन करे तो डांस करना चाहिए ओल्ड इज गोल्ड ऑफकोर्स चले जी अनसुया यहाँ दागुजिया से साथ दे रही हैं सरोज नमस्कार और साथ में हम सभी का वेलकम करते हैं जिन्होंने यहाँ पर मैसेज भेजे लेकिन नाम नहीं है तो मुस्कान के लिए गाना होगा और साथ में नीरेका के नाम मालिनी विश्राम लीना यानी कि बबीता के लिए लीना अपनी मम्मी बबीता के लिए गाना मांग रही है एजे हेलो ब्रो स्वागत है आपका प्रोग्राम में

सुहाना सफर। हर प्रोग्राम में कुछ ऐसे भी गाने लेकर आए हैं जो मुझे पता है कि पहले मैंने कभी नहीं चलाए और कभी कभी इन गीतों की फरमाइश भी आती है. तो नेक्स्ट गाना हमारा राजफा के लिए अशरफ एंड वी हैव डेनी लोपेज, जिन्होंने एक बहुत प्यारा सा मैसेज भेजा जो मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि उन्होंने अपने लैंग्वेज में भेजा. एंड कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच. एंड नितेश वेलकम, मीला रामा, ऋषि बालगोविन फ्रॉम यूके, रामचंद फैमिली के लिए फ्रांस से मैसेज है, बेलरोस के बेलेगवे सर्च के जितने भी फैमिली हैं उनके लिए गाना होगा डेफिनेटली. यहाँ पर बिंता जी हमारे साथ जुड़ी हैं एंड संजना के लिए गाना डेडिकेट करते हैं. गीता जी नमस्ते, और कहती हैं कि आज फिट लग रहे हो. रियली थैंक यू सो मच, आपको मैं फिट लगी. और हाँ बिल्कुल, आपने बोल दिया मैं हो गई फिट. निज़ाम उजीर आपका वेलकम है. एंड यहीं पे गाना जो है हम डेडिकेट करना चाहेंगे मीता जी आपके लिए, साथ में जितने भी लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे टिकटॉक लाइव में, उन सब के लिए गाना डेडिकेट करेंगे. एंड यही गाना हम जीवी के नाम डेडिकेट करेंगे, फ्रेंड्स प्रिया एंड दिव्या के नाम, काम कर रहे हैं अभी और हमारे गाने एंजॉय कर रहे हैं. थैंक यू गाइस. फिल्म का नाम है मोहब्बत, पुरानी फिल्म मोहब्बत. शीला राम फल नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोग्राम में. और गाना अगर आपको पसंद आए तो बताएगा ज़रूर.

अजीब यार में जुदाई तो आती है। चलिए दिलवंती मीता कृष्णा हमारे साथ हैं, एंजॉय कहते हैं उनकी मम इन लॉ नीता रघुनंदन के लिए अगर गाना चला दे जो कि है फ्रॉम सुरीनाम, तो क्या बात है। जरूर ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने सासू माँ को याद तो किया। सुहाना सफर। यहाँ पर एजे कहते हैं RM3 से जाके तो देखो। चलो अच्छा लगा जानकर कि हमारे जाने से आपको फर्क तो पड़ता है। एंड किरण जी तो हमारी स्ट्रीमिंग को रिकॉर्ड पे ही डाल देते हैं, हमारे शो को पता नहीं किसको बताते हैं दिखाते हैं, लेकिन थैंक यू। हाँ और वी हैव भावी कहते हैं अपने जवानी के दिन याद आ गए, इस गाने से कितने सारे लोगों की यादें जुड़ी हैं ना। एंड साहिल तो काफ़ी देर से आए लेकिन बोला कि अभी एयरपोर्ट गया था, अभी काम पे आया हूँ लेकिन आपको सुन रहा हूँ। गुड मॉर्निंग वेदिता। ये है रोहित, गुड आफ्टरनून। एंड यहाँ पर निशा वर्मा हमारे साथ हैं, अगला गाना कौन सा होगा सुनिए। वादिया मेरा दामन। अब चलिए यहाँ पर अब बात चली है प्यार की, तो मिलते हैं 1 बजे के बाद।

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे सुमेरा नमस्कार।
1: नमस्कार आदाब। कल 32 साला हंसराज कृष्णा को गिरफ्तार किया गया। वो दागोचिया का रहने वाला है, पेशे से ड्राइवर। उस पर शक है कि वो एफसीसी का अफसर बनने का नाटक करता है, जो गाड़ियां बेचने का जिम्मेदार है और पैसे ले जाता है। एक व्यक्ति ने एफसीसी को इत्तला किया। शकी मुजरिम के घर की तलाशी ली गई। एक लैपटॉप, एक पेन ड्राइव और एक मोबाइल फोन को जब्त किया गया। एफसीसी को शक है कि शकी मुजरिम ने कई और लोगों के साथ ये हरकत की होगी। मॉरिशस में 11 से 13 सितंबर तक यानी कल से वर्ल्ड टैमिल्स इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस का 13वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। ये सम्मेलन अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में लगाया जाएगा, जहां पर ठेकेदार, अर्थशास्त्री और विभिन्न देशों से आए पेशेवर भाग लेने वाले हैं। इस सम्मेलन के दौरान वैश्विक अर्थनीति की चुनौतियों पर बात की जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर बातचीत की जाएगी। पहली बार के लिए मॉरिशस में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रतिनिधि मंडल आया हुआ है। इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के महानिदेशक दाहिन तांग ने विदेश मंत्री से मुलाकात की। मॉरिशस ने WIPO के समर्थन की मांग की है, ताकि विभिन्न परियोजनाएं चलाई जा सके। इनमें आयात के संदर्भ में बातचीत शामिल है। और विदेश में अमेरिका ने कहा है कि अगर सभी अमेरिकी $5,000 का पे आउट करे तो रिपब्लिकन और चैम्बर्स ऑफ कांग्रेस यानी दोनों का इलेक्शन में जीत हो तो सभी अमेरिकी बालिगों को $5,000 मिलेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार आदाब।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. You're listening to RM3 Radio Mana.

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।

0: दीवाने तो हैं यहां पर लेकिन पुराने गीतों के दीवाने
1: सुहाना सफर
0: प्रोग्राम है सुहाना सफर दिन के 1:09 हुए हैं और आज हैं गुरुवार 10 सितंबर और यहाँ हमारे जो दोस्त हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं उनके डेडिकेशंस की तरफ बढ़ते हैं हेलो तो एक बार फिर से निशा वर्मा का वेलकम करते हैं करुणा हमारे साथ हैं गाबूजी गम गम देखती हूँ अगर मौका रहा तो चलाऊंगी नहीं तो आपके हस्बैंड क्लागल के लिए अगला गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे वी हैव नीला रघु कहती हैं सुपर गाने चल रहे हैं सुपर गाने उन्होंने नहीं सबने कहा हेलो जी कैसे हो जी तो यहाँ पर नेक्स्ट गाना होगा आपके लिए और गाना है रवि उपासना उर्वी शविया और जियांशु के नाम सरस्वती जी का मैसेज आया है कहते हैं कि वाओ ग्रेट सॉन्ग्स एंड थैंक यू वार्म रिगार्ड्स योगिता थैंक यू योगिता जी यहाँ पर इनको भी गाने अच्छे लगे शीला जी कहती हैं गाने कमाल के हैं रागिनी जी को भी बहुत अच्छा लग रहा है वैसे गाना मैंने नोट कर लिया है रागिनी जी थोड़ी आपको वेट करना पड़ेगा विद्या नायकू नमस्कार सूर्या थैंक यू फॉर लविंग द सॉन्ग्स लीना हरकोरी गाना उनके भाई रोशन के लिए मांग रही हैं कहते हैं कि ही इज़ कमिंग बैक रोड्रिक्स कमिंग बैक यानी कि आप कहाँ से सुन रही हैं तो आप रोड्रिक्स में हो या वो रोड्रिक्स में हैं चलो कोई नहीं जाने दो नेक्स्ट स्पेशली फॉर यू रागिनी थैंक यू ओके तो ये आपने कहा कि भाई ये तो बॉस का फेवरेट गाना है खुशी के मारे घूम रहा है वादिया मेरा दामन ओह सो स्वीट पीसफुल गाने थैंक यू निर्मल कुमार यादव नमस्कार मीरा रामा आपको गाना पसंद आया जानकर अच्छा लगा शीला उबिलक नमस्कार एंड धड़कन फिल्म का गाना नहीं चला सकते कल भी मैंने बोला था नहीं चला सकते क्योंकि नए गाने हम नहीं चलाते पुराने गाने चलाते हैं निर्मल जी थैंक यू सो मच और साथ में यहाँ पर हम नेक्स्ट गाना दविंदर सिंह सागू के नाम डेडिकेट करेंगे जो ऑस्ट्रेलिया से सुन रहे हैं हमें हाय साकुन थैंक यू सो मच आपके पति के लिए भी नेक्स्ट गाना होगा मदर इन लॉ का बर्थडे है कल तो कल डेडिकेट करेंगे गाना एंड साथ में कनाडा से किसी ने भेजा है हाय तो हम कहते हैं हेलो इंदिरा रामरेखा स्वागत पूजा आपका वेलकम और साथ में यहाँ रोशन जी को कहेंगे गुड आफ्टरनून यहाँ इंडोनेशिया से हमारे पास एक मैसेज आया है फ्रॉम एरिक हाय एरिक वेलकम टू रेडियो मनोरंजन RM3 एंड सुपर नाइस सिलेक्शन ये है बहुत सारा प्यार सविता की तरफ से एंड गिरवर आपका हम वेलकम करते हैं साथ देने के लिए थैंक यू सो मच एंड यही गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे कहते हैं इट्स फ्रीजिंग कोल्ड अच्छा बाहर का मौसम हेलो वनीसा आपका हम स्वागत करते हैं एंड साथ में ईश्वर अधिकारी जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं वी हैव रीना एंड साथ में ये गाना हम डेडिकेट करेंगे कहते हैं सलाम फ्रॉम बाली हेलो जी थैंक यू मिस्टर ईश्वर अधिकारी वेलकम टू रेडियो मनोरंजन एंड क्या बात है हम तो इंडोनेशिया भी पहुँच गए हस्बैंड विक्रम दर्शन के लिए ये है निशी की तरफ से और शिवचंद नंदिनी को कहेंगे नमस्कार रोशनी आपका वेलकम उत्तम आपका भी वेलकम करते हैं

0: नहीं चाह रहा है।
1: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
0: यहाँ पर हमारे साथ करिश्मा सी दोयाल है यूके से, मीरा है लंदन से, दुर्गा सिवासन समुगम, लीना मालिनी सामफाजा, मेधा लिंजे, लोलिता ज्योति गिरधारी उनके हस्बैंड तनवीर के लिए गाना मांग रहे हैं। वनकम अंजी कैसे हो आप, माधुरी हमारे साथ हैं, कागोर शर्मिला फ्रॉम तेगोज, एंड वी हैव मायरा। गाना किसके लिए होगा भाई, यहाँ पर बिमल कुसुमिया हमारे साथ हैं तो गाना उनके नाम भी हम डेडिकेट करना चाहेंगे। और ललिता कहते हैं शाम का बर्थडे है आज, प्लीज गाना चला दीजिए। लीजिए चला दिया गाना।
2: You're listening RM Free Radio, Radio, Radio.
0: और ये गाना डेडिकेट करते हैं सरिता के लिए जो गुडलैंड से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनको ये गाना पसंद आए उम्मीद करती हूँ। आज का सिलेक्शन कमाल का है, थैंक यू सो मच। सुपर से ऊपर ये है रोशनी फ्रॉम कैटरबोन, साथ देने के लिए थैंक यू। गाना किरण पुरी, जे जे लाल, नरेंद्र कुमार नंदी, काला राम कारीगर वैंकूवर कैनेडा में साथ दे रहे हैं, थैंक यू।

0: RM3 Radio.
1: चलिए भी अगला गाना जो होगा डेडिकेट करेंगे अब हम अनिष्ठा राम तोहल के लिए, उनकी मामा दीवंती मां, उनकी का कल बर्थडे 8 तारीख को बर्थडे था, उनके सभी बच्चों की तरफ से अमृता अमिता अनिशा आत्मा अब्दुल रिशाद हमारे साथ हैं, नीता राय फ्रॉम मलेशिया वेलकम टू रेडियो मनोरंजन, वी हैव अंजू आराध्या वीना बाली कविता किरण की तरफ से उनके हबीब ऋषि बेटी रिया और बेटे कृषि के लिए, साथ में माधवी कवि देविका नवीन और करुणा के लिए काजल, वी हैव मायशा तो संगीता अंजलि और जगदत्त के नाम

0: मिला करो, प्लीज हमसे मिला करो। तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। लव फ्रॉम पर्थ, थैंक यू सो मच अशोक। नमस्कार ब्रदर, कैसे हो आप? तो आप सबों का हम एक बार फिर से वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में जो कि आप सुन रहे हैं इस समय। तो अभी के लिए क्या है ना कि हम बहुत सारे लोग हैं हमारे इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं, प्यार भेजते हैं, उस प्यार के लिए थैंक यू सो मच। चलिए इसी के साथ CWO की तरफ से एक कम्युनिके सुन लीजिए। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी जो है, अभी जैसा कि आप जानते हैं कि जो माओवाकवा का जो रिजर्वॉयर है वहाँ पर मरम्मत का काम चल रहा है, तो CWA अपने इन ग्राहकों को सूचित करता है जो लोग लामारी, कोंडोस, वाकवा, फिनिक्स, क्यूपीप, फोरेसाइड, फ्लोरियाल, सैंपिया और मोका के रहने वाले हैं। इन सभी को सूचित किया जाता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से गुरुवार 10 सितंबर और शुक्रवार 11 सितंबर को पानी की सप्लाई में कटौती लाई जा रही है, और इस असुविधा के लिए सेंट्रल वाटर अथॉरिटी क्षमा प्रार्थी है।
1: RL3 रेडियो, रेडियो, रेडियो।

चलिए यहाँ पर राजू गुप्ता के लिए गाना होगा, साथ में ये गाना आलिया के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे, और संगीता अंजलि जगदत्त जो साथ में है, और यही गाना अंजनी आपके नाम।

0: दिल की बात जुबान पर लाना जरूरी होता है और यहां पर हम सुनीता रामदनी के लिए गाना चला रहे हैं ललिता मोहन वी हैव लीजा सचिता पीतिया आपका भी हम स्वागत करते हैं प्रोग्राम में क्यों थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग योर गुड मैसेजेस और यहां पर नेक्स्ट गाना रेशमा वनीसा ललिता ऋषि जो कि अभी काम पर हैं विदेश की तरफ से उनके लिए गाना होगा और यही गाना हम गुरुदत्त जय के नाम डेडिकेट करेंगे प्रेम और यही गाना होगा आपके लिए देविना जी थैंक यू सो मच साथ दिया आपने
1: RM3 रेडियो रेडियो
0: चलिए तो यहाँ पर वृंदा जो है हमारे साथ नेक्स्ट गाना फी के नाम और शर्मी आपके लिए गाना होगा कहते हैं काम पर हैं और आपको सुन रहे हैं सो थैंक यू सो मच अनीता पर तो आपका भी हम वेलकम करते हैं और यही गाना हम श्रीमान महेंद्र के नाम डेडिकेट करते हैं हेमंत जी आपका भी वेलकम है और साथ में रॉय आपका भी गाना जाया फॉर अंजेला और साथ में रॉय नमस्कार आपको

0: चलिए जी, कार्यक्रम का अगला गाना जो है हम डेडिकेट करेंगे शमी की तरफ से उनके हस्बैंड हैप्पी हरप्रीत सिंह के नाम। अनिता पैदुक जी थैंक यू सो मच, कहती हैं ये गाना तो याद है मुझे, ये फिल्म में पर्दे पे देखने गई थी, वाह क्या बात है। और यहाँ पर चलिए सबीना के लिए गाना होगा और वहीं पे कपाल हमारे साथ हैं, क्या बात है, उनके लिए भी गाना डेडिकेट करते हैं। आशा गुलाम कैसे हो आप, चलो अभी काम का समय है तो दीजा को कहेंगे भोंकुआज एंड सुरेखा रामतुल्य को कहेंगे थैंक यू फॉर लविंग द सॉन्ग।
1: RM3 Radio.
0: और ये गाना हम डेडिकेट करेंगे सुमन और दिवीना के नाम। मिली कैसी हो, हाँ मिली अभी आई है हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच मिली अभी के लिए। तो सलीमा कैसी हो भाई, आपकी ये सिस्टर बिल्कुल ठीक है, आपको भी हमारी ओर से सलाम और वेलकम।

आग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए यहां पर हम आपके लिए कॉमेडी के लिए कर आए हैं CWU की तरफ से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो जलाशय है माओवाकवा का, वहां पे कुछ काम चल रहा है जिसके चलते CWU अपने इन ग्राहकों को सूचित करता है जो लोग लमारी कोंडोस वाक्वा फिनिक्स क्यूपे फ्लोरियल फॉरेस्ट साइड सैंपिया और मोका के रहने वाले हैं। आपको हम सूचित करते हैं कि गुरुवार 10 सितंबर और शुक्रवार 11 सितंबर को मरम्मत कार्यों की वजह से पानी की सप्लाई में कटौती लाई जा रही है और इस असुविधा के लिए सेंट्रल वाटर अथॉरिटी क्षमा प्रार्थी है। तो हमारे प्यारे दोस्तों को बता दें हमारे जाने का टाइम हो गया। आपसे मुलाकात बहुत जल्द यानी कि कल हम 12 बजे करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम नाट्य कला। चलिए गाना हम अश्विन रामबन के नाम भी डेडिकेट करेंगे जो इस हमारे साथ हैं। इंदिरा जी शाम के लिए गाना मांग रहे हैं। वहीं पे हमारे साथ हैं पूनम जो इस गाने को पसंद कर रहे हैं। राधे कृष्णा आपको, और यही गाना हम डेडिकेट करते हैं सभी दोस्तों के लिए जो इस समय हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत जल्द मिलेंगे।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गए हैं सुमेरा अकबर अली, आपको नमस्कार और आदाब।
1: नमस्कार आदाब। कश्तियों को दी जा रही सेवाओं को आसान बनाने के लिए बंदरगाह आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहा है। पोर्ट अथॉरिटी डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रही है, प्रक्रियाओं को डिजिटलाइज बनाया जा रहा है। मैरिटाइम सिंगल विंडो के जरिए बेहतर संचालन पर जोर दिया जा रहा है। इस साल मॉरिशस में वर्ल्ड तमिल इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस का 13वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। 11 से 13 सितंबर तक पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन के अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में ठेकेदार, अर्थशास्त्री और मुख्तलिफ मुल्कों से आए पेशेवर वैश्विक अर्थनीति और अंतर्राष्ट्रीय तिजारत की चुनौतियों पर बात करेंगे। पहली बार के लिए मॉरिशस में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रतिनिधि मंडल आया हुआ है। आज इस अंतर्राष्ट्रीय इदारे के महानिदेशक दागेन थांग ने विदेश मंत्री से मुलाकात की। मॉरिशस ने कई परियोजनाओं के लिए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग की मांग की। विदेश में फिलीपींस के पलावन राज्य में कश्ती में आग लगी, कम से कम 5 लोग मारे गए हैं और 87 लोग जख्मी। तटरक्षकों के मुताबिक 82 लोगों को बचाया गया, जिनमें 38 मुसाफिर और 4 क्रू सदस्य शामिल हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर नवंबर के चुनावों में रिपब्लिकन्स की जीत हुई तो हर अमेरिकी नागरिक को $5,000 मिलेगा। अपनी कार्यावधि के मध्य में पार्टी के पहले जुटाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ये वादा किया है। तो अभी के लिए बस इतना ही, शोक समाचार सुनिए। मामजल जान गुडलैंड्स में 85 साल की 85 ईयर्स ओल्ड श्रीमती यशुमती लकू, श्रीमती यशुमती लकू पैदाइशी नाम रामेश्वर जो दादी बानी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल 10 बजे के बेटे संजीव लकू के घर मामजल जान गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टमोरो एट 10 AM। शोक में डूबे इस परिवार से हमें हमदर्दी है।
2: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।
4: नाट्य कला, रंगों की भाषा, भावों की धारा, जहां मंच पर हर एक किस्सा हमारा। नाटक पर आधारित कार्यक्रम

0: नाट्य कला।
1: लिमिटेड स्टेज लेकिन अनलिमिटेड क्रिएटिविटी। स्टेज जो है वो सीमित होता है लेकिन सृजनात्मकता अनलिमिटेड है, अनंत है। स्वागत करते हैं आप सभी का नाट्य कला कार्यक्रम में, और नाट्य कला कार्यक्रम के जरिए हम नाटक की दुनिया से जो भी बातें होती है, जो भी सुंदर सुंदर विचार होते हैं, उन सब को लेकर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। नाटक लेखन से लेकर उनके मंचन से लेकर और निर्देशन से लेकर गुजरते हुए प्रेक्षक तक जो भी विधियाँ आती है, जो भी स्टेजेस आते हैं, आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। शुरुआत इससे हम करते हैं कि नाटक केवल एक शब्द है लेकिन एक शब्द के साथ साथ एक बड़ी दुनिया भी है। चलिए उसकी शुरुआत हम लेखन से करते हैं। आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं विश्वानंद पतिया जी। आप महात्मा गांधी संस्थान के वहाँ पर प्राध्यापक है और हेड ऑफ संस्कृत डिपार्टमेंट है। विश्वानंद जी, आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्ते।
2: नमस्ते रितेश जी।
1: गत बार आप आए थे, इस बार यह कार्यक्रम का दूसरा भाग है
2: जी।
1: गत बार हमने आपका जो नाटक अतृप्ति शीर्षक नामक नाटक पर हमने बात की, इस बार हम रावण लीला पर बात करेंगे। तो विश्वानंद जी, आप कैसे हैं?
2: मैं तो एकदम स्वस्थ और सानंद हूँ, आप कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया, हम भी स्वस्थ, मस्त और व्यस्त।
2: अरे व्यस्त व्यस्त रहना बहुत आवश्यक है जीवन
1: में। बहुत आवश्यक है। तो शुरुआत करते हैं इसके साथ, क्योंकि जब मैंने आपके नाटक का शीर्षक लिया, मैंने रावण नाम न लेकर राम लिया
2: जी।
1: क्योंकि स्वाभाविक, हाँ स्वाभाविक बात है, जब भी हम लीला के बारे में बात करते हैं तो रामलीला आ जाती है। तो मेरा प्रश्न यही है कि रामलीला नहीं, रावण लीला ही क्यों?
2: जी हाँ, एकदम सही। और जैसे अभी अभी हमने कहा कि जब आप बोल ही रहे थे शीर्षक, तो मुंह से राम शब्द निकल रहा था, क्योंकि राम हमारे लिए सात्विक है, हमारे लिए पूजनीय है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन जब मैं लिखने जा रहा था तो मैंने सोचा, कई दिनों से, प्राचीन काल से सभी लोग राम की ही चर्चा कर रहे हैं, राम के महत्व को दर्शा रहे हैं नाटकों के माध्यम से। तो क्या रावण में कोई भी विशेषता नहीं थी? रावण सिर्फ एक नकारात्मक पात्र था? क्या उसके बारे में हम एक नाटक नहीं कर सकते, कुछ लिख नहीं सकते? तो रचनात्मकता की दृष्टि से मैंने सोचा कि चलिए रावण लीला पर लिखते हैं।
1: क्या बात है।
2: और रावण लीला मैंने नकारात्मक को निकाल कर, जो कहते हैं ना विलेन है, खलनायक है, उस भाग को मैंने निकाल कर उनकी जो अच्छाइयां हैं थोड़ा बहुत, उस पर भी इस नाटक में मैंने प्रकाश डाला है।
1: नाटक रावण लीला की गहराई में उतरने से पहले चलिए इस पात्र को, इस किरदार को आप एक जुबान से सुनना चाहेंगे
2: जी।
1: रामायण, रामचरितमानस, या फिर राम कहानी हम सब जानते हैं, एक्टर होता है राम, विलेन होता है रावण। तो आपके लिए रावण, क्योंकि आपने रावण लीला लिखा
2: जी,
1: तो आपके लिए रावण कैसा पात्र है?
2: जी हाँ, देखिए रावण शब्द ही जो है, सभी लोग जब सुनते हैं तो उनके मन में भय उत्पन्न हो जाता है। मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, नकारात्मक, मतलब निगेटिव। और साथ ही साथ यह भी हम जानते हैं कि रावण बहुत ही शक्तिशाली था, उसके साथ वह प्रकांड विद्वान था और महान संगीतज्ञ था। इसीलिए जब हम रावण शब्द को लेते हैं तो उसके पीछे बहुत कहानियां भी हैं। सबसे पहले आपको पता ही होगा ये कि रावण का पहला नाम तो दशानन था। दशानन का अर्थ है दश जोर आनंद, दश मतलब दस और आनंद का अर्थ हो गया मुख।
1: मुख
2: मतलब उसके दस चेहरे थे, दस मुख थे। अब उन मुखों का, उन चेहरों का, उनसे क्या तात्पर्य है, उनका क्या प्रतिनिधित्व है, सिंबल क्या करता है, क्या सिंबोलिज्म है उसका, तो उस पर हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। देखिए दस मुख में जो छह मुख हैं वो छह शास्त्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। छह शास्त्र मतलब शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष।
1: तो वेद के छह मुख,
2: वेद के छह अंग कहलाते हैं, वेदांग।
1: वेदांग
2: तो वे इन छहों शास्त्रों के प्रकांड विद्वान थे,
1: अच्छा।
2: जानते थे। और उसके अलावा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और

0: अथर्व वेद के जाता थे, ज्ञानी थे। तो कुल मिलाकर 6 वेदांग और 4 वेद हो गए 10। तो दशानन मतलब इन सभी का ज्ञान उनमें था, इसीलिए वे प्रकांड विद्वान कहलाते हैं।
1: आगे बढ़ने से पहले हम सब, जैसे आपने कहा कि एक नकारात्मक दृष्टि से हम रावण को देखते हैं, लेकिन जब जैसे आपने कहा कि वेद के 6 अंग और वेद के 4 के 4 भाग, मतलब टोटल 10 कुल मिलाकर 10 उनमें है, और महाविशेषज्ञ और संगीतज्ञ और
0: पराक्रमी,
1: मतलब
0: कुल मिलाकर सब
1: सब सब है। तो हम खुद की तुलना उनसे नहीं कर सकते उनके जैसे आजकल कहां दिखाई देता है।
0: ऐसा यह भी माना जाता है कि अपने समय में वे राम से भी ज्यादा ज्ञानवान थे, बुद्धिमान थे, क्योंकि उन्होंने इन सब का उसको ग्रहण कर लिया है, उसको जान लिया है। आप सोचिए, लेकिन आपने कहा नकारात्मक खलनायक,
1: बिल्कुल
0: वो उनकी एक गलती के कारण, और गलती सभी श्रोता जानते हैं कि गलती उन्होंने क्या की।
1: हाँ,
0: उस पर हम चर्चा करेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं पे तो हमने एक कथावाचक से हमने यह सुना, क्योंकि उनकी महत्वता के बारे में बात कर रहे हैं। तो मंदोदरी, जब रावण का विनाश और मृत्यु हो गई, तो मंदोदरी आए और श्री राम से मिलने के लिए, और श्री राम ने कहा कि आपके आने का तात्पर्य, मतलब कारण क्या है। उन्हें कहा कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ जिन्होंने पूरे सृष्टि पर विजय पाकर जब संतुष्ट नहीं हुए, तो उनको हारने वाला जो आप बैठे हुए हैं उनसे हम मिलना चाहते हैं, आपको हम जानना चाहते हैं। ये मंदोदरी का करना है। तो रावण लीला, और चलिए तुरंत हम आपकी स्क्रिप्ट में चलते हैं, कहानी के बारे में बताइए।
0: रितेश जी, अभी अभी आपने मंदोदरी की चर्चा कर ली, और वे राम जी से मिलने गए, क्योंकि राम उस समय विजयी हुए और उन्होंने रावण को मार डाला था। उसी स्थल को देखते हैं, वहां पर बहुत कुछ हुआ जो शायद बहुत सारे श्रोता नहीं जानते होंगे। उस समय श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, जाओ देखो, वहां पर एक परास्त राजा है, जमीन पर है, लेकिन अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, लेकिन बहुत ही विद्वान है, महाप्रकांड विद्वान है, उनसे जाकर तुम कुछ सीखो, क्योंकि बाद में ये तुम्हारे ही काम आएगा। तो लक्ष्मण जी गए, तब रावण ने उस समय उनको 3 बहुमूल्य लेसन्स सीखें दी। सबसे पहली, ये बहुत आवश्यक है, यदि कोई भी जनता श्रोता गण अगर अपने जीवन में ये 3 सीखें लागू कर लें, इस पथ पर चलें, तो निसंदेह उनको सफलता प्राप्त होगी। सबसे पहला जो पहली सीख है वह है शुभस्य शीघ्रम, मतलब शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए। ये है संस्कृत में है, शुभस्य शीघ्रम। जो भी अच्छे कार्य हैं आप उनको तुरंत कीजिए। रावण ने गलती क्या की? रावण ने सोचा, अरे वानर आ रहे हैं, साधारण मनुष्य आ रहे हैं राम के रूप में, और उसकी सेना क्या है, वानर, तुच्छ वानर, बहुत कमजोर हैं, उनको मैं तो क्षण में परास्त कर दूंगा। यही गलती की उन्होंने जल्दी नहीं की, उन पर आक्रमण नहीं किया, और देखिए अंत में क्या हुआ, मारे गए। ये पहली सीख। दूसरी सीख, अपने शत्रु को कभी भी कम या कमजोर मत समझो। शत्रु चाहे एक चींटी ही क्यों ना हो, एक मच्छर ही क्यों ना हो, या कोई योद्धा, कोई भी आए शत्रु है, तो उसको ऐसे ही मत लीजिए। सीरियस हो जाए, गंभीर हो जाइए, और उसके नाश में आप तुरंत लग जाइए। ये दूसरी सीख है। देखिए, मैंने अभी अभी कहा ना, हनुमान वानर था, ठीक है, और नील नल ये सब थे। उन्होंने सोचा, रावण ने सोचा कि अरे ये सब तुच्छ हैं, इनको मैं जल्दी ही मार डालूंगा, हरा दूंगा, लेकिन अपने शत्रु को उसने कमजोर सोचा, माना, और परास्त हो गया। तीसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है श्रोताओं, और हमारे दर्शकगण भी हमें देख रहे हैं, जीवन के जो रहस्य हैं उनको आप गुप्त रखें। रहस्य मीन्स सीक्रेट्स। आपके कुछ सीक्रेट्स हैं, आप महत्वाकांक्षी हैं।

0: आप कुछ बनना चाहते हैं जाकर पड़ोसी से, मैं अभी इस बिजनेस में लगा हुआ, ये काम करना चाह रहा हूँ, मैं अभी ये कोर्स फॉलो कर रहा हूँ, ये तो क्या है, उनका मन इसमें लग जाएगा, हाँ ये करने जा रहा है, वो करने जा रहा है, ठीक है। तो आपने अपने रहस्यों का उद्घाटन कर दिया,
1: सभी लोग
0: जान गए कि आप क्या करना चाहते हैं,
1: ठीक है।
0: अंग्रेजी में भी एक कहावत है, वर्क हार्ड लेट सक्सेस मेक नॉइज, ठीक है, साइलेंस, वर्क हार्ड इन साइलेंस लेट सक्सेस मेक नॉइज। तो आप जो काम कर रहे हैं उसको साइलेंटली कीजिए, सक्सेस अपने आप नॉइज करेगा, शोर करेगा। तो ये बातें हैं। तीसरी जो सीख है यह है कि आप जो भी कर रहे हैं उसको रहस्य ही रखने दीजिए, जब तक काम पूरा ना हो जाए। आप सलाह लीजिए, अपने हित मित्रों से सलाह लीजिए, अपने शिक्षकों से सलाह लीजिए, क्योंकि वे आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपको अच्छी राह पर ले जाएंगे। लेकिन सभी लोगों को, पूरी जनता को मत बताइए कि आप क्या करने जा रहे हैं, नहीं तो आपको ये काम दे देंगे, वो कर देंगे, तो आपके राह में वे अवरोध पैदा कर देंगे। इसीलिए तीन सीख हैं, शुभस्य शीघ्रम, शत्रु को कमजोर मत समझो, और जीवन में जो रहस्य हैं आपके उनको गुप्त रखें। ये तीन बातें अगर आप अपने जीवन में लागू कर देंगे तो निसंदेह आपको सफलता की प्राप्ति होगी।
1: बहुत ही सुंदर,
0: ये रामायण का निचोड़ है, खासकर रावण से सीख है।
1: तो हमारे श्रोताओं और दर्शकों को याद दिला दे कि ये सत्संग नहीं चल रहा है,
0: बल्कि
1: हमारा नाट्य कला कार्यक्रम चल रहा है,
0: जी,
1: लेकिन विषय आज का हमारा है रावण लीला, और रावण लीला, रावण और राम दोनों साथ साथ चलते हैं, और अच्छी अच्छी बातें उभर कर सामने आती है। मैं हमेशा कहता हूँ विश्वानंद जी कि जब हम कहानी सुनते हैं तो हमारा मनोरंजन होता है, लेकिन कथा सुनते हैं तो मनोमंथन होता है,
0: मन का चिंतन,
1: आत्मचिंतन, मन का मंथन होता है, और रत्न निकल आते हैं। तो निकल आ रही है, एक घंटे का कार्यक्रम अभी समय है, तो चलिए तुरंत बढ़ते हैं आपके रावण लीला का जो नाटक आपने लिखा है, कहानी विषय वस्तु उसके बारे में बताएं।
0: जी अवश्य, यह जो नाटक है प्रायः दो पात्रों से इसकी शुरुआत होती है, नाम है आरव और प्रिया, दोनों अच्छे मित्र हैं। प्रिया को एक शीर्षक की आवश्यकता थी, वह नाटककार है, वह कुछ लिखना चाह रही थी लेकिन कुछ नयापन लाना चाह रही थी। तो उसका वार्तालाप होता है आरव से, बातचीत होती है, तो आरव उसे कहता है कि देखो मैं तो अभी रामलीला देखने जा रहा हूँ, तो चलिए। लेकिन प्रिया बोल रही है कि उस रामलीला में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अरे नहीं, दिन प्रतिदिन लोग कम होते जा रहे हैं, क्योंकि हमेशा रामलीला देख देख कर वे लोग उब रहे हैं। तब प्रिया बोल रही है ऐसा क्यों, तो उसने कहा शायद नयापन ना हो, अब हर साल यही सब देखते देखते उनका मन उब गया हो। तो प्रिया बोल रही है कि अब क्या कुछ नया लाएं ताकि वे आकर्षित हो नाटक देखने के लिए। तब ऐसे ही बातचीत चलती है, तब आरव बोलता है अरे उसमें प्रकांड विद्वान ये इन शब्दों की चर्चा होती है उसमें। तो उसने कहा प्रकांड विद्वान ये कौन है, तो उसने कहा अरे प्रकांड विद्वान को तुम नहीं जानते, हमारे रावण। उसने कहा रावण, तब प्रिया सोचती है क्यों ना रावण पर कुछ लिखा जाए। तब साथ ही साथ कुछ दृश्य चलते हैं रावण पर, किस प्रकार से सुरपंखा उसकी बहन उसके सामने आती है और कहती है भ्राताश्री देखो मेरी नाक किसी वन पुरुष ने काट दिया, वन में कोई चल रहा था, दो पुरुष थे, उसमें से एक ने मेरी नाक काट दी। तब ये पहला सीन, उसके बाद विभीषण से संवाद, ऐसे ही आगे चलता है, ठीक है। और उसके बाद एकदम दृश्य बदलता है, सीन बदलता है, प्राचीन काल से निकलकर हम आधुनिक काल में चले आते हैं। यदि आप चाहें तो मैं उसका एक संवाद
1: जरूर बिल्कुल
0: साझा करना चाहता हूँ। तो रावण बोलता है मेरा आदि है अंत नहीं, स्वयं मृत्यु का स्वामी यमराज मेरी दया पर जीता है, और इंद्र मेरे भय में है, धरती मेरे पैरों के नीचे है और आकाश मेरी मुट्ठी में है, क्योंकि मुझी में शक्ति है और मेरी शक्ति ही मेरा अभिमान है। तीनों लोकों का राजा, वीरों का वीर, असुरों का महाराजा, लंकाधिपति मुझे

0: हाँ मुझे रावण कहते हैं, मैं ही हूं दशानन। इन देवताओं ने हम असुरों पर, मेरे पूर्वजों पर बहुत अत्याचार किए हैं। इंद्र सावधान, तुमने बहुत सोमरस का पान कर लिया, अब और नहीं। मैं इन देवताओं को इतना तड़पाऊंगा कि समस्त देवगण कांप उठेंगे, कांप उठेंगे।
1: क्या बात है, बहुत ही सुंदर है ये।
0: इनफैक्ट ये मैंने नहीं किया, मेरा एक विद्यार्थी है आदर्श, पिछली बार मैंने उसका नाम लिया था, आदर्श सितोहल, इस किरदार में वह था रावण का, और उसने यह बोला था और बहुत ही बुलंद आवाज में, एकदम रावण ही की तरह।
1: तो ये आपका दूसरा नाटक है और दोनों नाटक स्टेज पर रह गए कंपटीशन में,
0: कंपटीशन में, और फर्स्ट प्राइज मिला
1: दोनों नाटक,
0: प्रथम स्थान पर। जी हाँ, अतृप्ति 2018 और 2019 में रावण लीला,
1: 2018 फिर 2019 रावण ले, फिर उसके बाद आपने लिखा नहीं।
0: उसके बाद कोविड
1: ये तो अच्छा समय था, घर पर रहते रहते।
0: हाँ, तो देखिए प्रोत्साहन भी आवश्यक होता है ना, अब जो जितने भी किरदार थे, कैरेक्टर्स थे, पात्र थे, सब कोविड के दौरान सब कॉन्फाइंड, और कभी कभी मन भी कॉन्फाइंड हो जाता है। अब जब हमारे सामने ये सब होते हैं, देखिये अभी चर्चा हो रही है ना, तो अब थोड़ा प्रोत्साहन मिल रहा है, एनकरेजमेंट, अब कुछ लिखेंगे, चर्चा करेंगे। जैसे उपनिषदों पर कुछ ले सकते हैं, कठोपनिषद है, ईशा ईशोपनिषद है, इनसे कुछ विषय वस्तु लेकर एक नाटक कर सकते हैं, या नहीं?
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे आप जैसे लेखकों की कमी तो नहीं कहेंगे, लेकिन जरूरत जरूर है। और हमारे दर्शक या फिर श्रोतागण जो हमें सुन रहे और देख भी रहे हैं, अगर आप नाटक खेलते हैं और नाटक का मंचन करते हैं, और कोई भी लोकल आप स्क्रिप्ट लेना चाहते हैं, तो विश्वानंद जी है यहाँ पे, एमजीआई में काम करते हैं, और बहुत सारे लेखक हैं, आप उनसे संपर्क रखिएगा जरूर, और अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट को लेकर आप उसका मंचन कर सकते हैं, और गांव-गांव में, शहर शहर में आप जा सकते हैं, और कंपटीशन में भी जा सकते हैं।
0: हमें देख कर जो लोग नाटक लिखने के इच्छुक हैं, वे लोग भी सामने आ सकते हैं, प्रोत्साहित हो सकते हैं। देखिए अभी अभी एक शब्द की चर्चा हमने की, दशानन, मैंने तो कह दिया छह शास्त्रों का जो जाता है, और चार वेद, उसके अतिरिक्त क्या सिंबलाइज करता है, इसका प्रतिनिधित्व करता है, वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये सब चीजें हैं जो नकारात्मक हैं, ठीक है? तो यहां पर निगेटिव आ जाता है उसका, तो मतलब दशानन एक, जैसे मैंने कहा, वेदों का ज्ञाता है, लेकिन साथ ही साथ इन सब चीजों का भी प्रतिनिधित्व करता है। मतलब जब वो निगेटिव सेंस में हम लेते हैं, नकारात्मक, तो इनको काटना चाहिए, इनको मिटाना चाहिए, ये भी है पॉजिटिव निगेटिव।
1: रावण के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, तो जैसे आपने कहा कि प्रखान पंडित, प्रखान विद्वान, जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, साथ में एक और चीज भी आ जाती है, बाय वन गेट वन फ्री बाय प्रोडक्ट होता है, वो है घमंड,
0: घमंड, अहंकार,
1: अहंकार। तो जब आप अपना स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, तो घमंड झलक रहा था।
0: मैं उस रावण के कैरेक्टर में आ गया था पूरा, ऐसा लग रहा था आपको?
1: तो यहाँ बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। तो ऐसा ही, मतलब रावण हमको ये दिखा रहे हैं कि इस ज्ञान के साथ साथ घमंड भी आ जाता है, लेकिन घमंड को निकालना चाहिए,
0: घमंड को निकालना चाहिए। जो देखिए अहंकार शब्द अहम से बना है, अहम मीन्स आई, आई को निकालना चाहिए, तब सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। आई एम पॉसिबल, उसको निकालो, सब पॉसिबल रह जाएगा, तब संभव, ठीक है ना? तो बहुत से लोग ज्ञानी तो बन जाते हैं, जैसे कुर्सी पर बैठते हैं, जैसे उनको पद प्राप्त हो जाता है, उसी समय अब मैं ही भगवान हूँ, मेरे नीचे जो लोग हैं, ठीक है, वो मेरे दास हैं, मैं स्वामी हूँ। तो रावण में भी यही स्थिति पैदा हो गई थी, यही स्वभाव आ गया था। इसीलिए तभी से जैसे एक व्यक्ति अहंकारी होता है, घमंडी होता है, तभी से उसका पतन शुरू होता है, ठीक है? ये बहुत आवश्यक है। देखिए भगवद्गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि पतन कैसे होता है, पतन मीन्स डाउनफॉल, एक व्यक्ति का नाश कैसे होता है। सबसे पहले विषयों का निरंतर चिंतन करते रहता है कि यह मुझे चाहिए, वह मुझे चाहिए, उससे क्या होता है, आसक्ति, उसके प्रति अटैचमेंट, अटैचमेंट के बाद कामना उत्पन्न होती है, मुझे यही जमीन चाहिए, मुझे यही गाड़ी चाहिए, BMW चाहिए, ये है कामना। तब उसके बाद अगर कामना की पूर्ति न हो, तब क्रोध उत्पन्न होता है, एंगर, आदमी गुस्से में आ जाता है। उसके बाद सम्मोह, सम्मोह का

0: अर्थ है संदेह उत्पन्न करना, जैसे उत्पन्न होना, जैसे अर्जुन, अर्जुन को पता नहीं मैं करूं या ना करूं, किम कर्तव्य विमूढ़ बोलते हैं इसको, किम कर्तव्य विमूढ़ मतलब क्या करें क्या न करें की स्थिति, डेल्यूजन, कन्फ्यूजन, संदेह। उसके बाद क्या होता है, विवेक का लोभ। विवेक का लोभ मतलब क्या अच्छा है मेरे लिए क्या बुरा है वो मैं नहीं जानूंगा, अब उसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा। उसके बाद बुद्धि का नाश, बुद्धि भ्रष्ट, तब आएगा पतन, डाउनफॉल, जैसे रावण जी का हो।
1: मुझे उसका श्लोक याद आ रहा है, ध्यायतो विषयान् पुनसः संगस्ते इषु उपजायते संगात संज्ञा। बहुत ही सुंदर,
0: बहुत ही सुंदर,
1: बहुत ही सुंदर।
0: देखिए इसके विपरीत क्या है, विद्या ददाति विनयम्, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम् आप्नोति, धनात् धर्मम् सुखम् ततः सुखम्। मतलब विद्या से ही विनय आती है, और अगर विद्यावान विनयशील न हो, मतलब हम्बल न हो, तो क्या फायदा। और अंततः देखिए सुख की प्राप्ति होती है, विद्यावान जो हो जाता है उसी में योग्यता आती है, और वही धार्मिक कार्य भी करता है उसके साथ, तब अंततः उसको सुख की प्राप्ति होती है। यदि वह अहंकारी है, रावण को देखिए, इतना विद्वान था, वेदों का शास्त्री, ठीक है, लेकिन एक समय भी उसको चैन नहीं, वो सिर्फ सीता को अशोक वाटिका में रखो, वानर लोग आ रहे हैं, कुंभकर्ण तुम जाओ उसको मारो, मेघनाथ कहाँ हो तुम, देखो वो लड़ रहा है हमसे, तुम जाओ, तो परेशान है वो। हालांकि महाविद्वान है लेकिन परेशान है, क्यों, अहंकार और घमंड के का कारण। इसीलिए बोला गया है, चाणक्य नीति बोलते हैं, चाणक्य बोलते हैं, बुद्धिर यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि हो उसी के पास बल है। जैसे खरगोश और सिंह की कथा पंचतंत्र में है, हितोपदेश में है। खरगोश एकदम छोटा सा था, जब उसकी बारी आई बलिदान देने की, सैक्रिफाइस, उसको भोजन के रूप में जाना था सिंह के पास, तब उसने अपनी बुद्धि से काम लिया, उसने सोचा मैं तो मर नहीं जा रहा हूँ, थोड़ी बहुत बुद्धि से काम ले लूँ। वहाँ गया, शेर को बोला कि चलो कुएं के पास, लेकिन पता है तुम्हारा एक शत्रु आ गया है जो तुम्हारी तरह है, वो कुएं में है, और ये भी भोला भाला कुएं में देखा, अरे उसकी परछाई उसको देखी, और उसने सोचा सचमुच नीचे एक शेर है, चलो इसे झगड़ते हैं, नहीं तो ये यहाँ का राजा बन जाएगा। कुएं में गया, मारा गया, भोलापन, और उसके पास बुद्धि नहीं थी इसलिए मारा गया।
1: बहुत
0: तो बुद्धिर यस्य बलम तस्य,
1: बहुत ही सुंदर। आप की रावण लीला नाटक के विषय को लेते हैं, नाटक के पात्रों के बारे में बताइए। आपने कहा कि शुरुआत होती है दो पात्रों के साथ,
0: जी हाँ,
1: फिर इसके बाद कौन कौन से पात्र आते हैं?
0: इसके बाद जैसे मैंने कहा शूर्पणखा आती हैं, शूर्पणखा, और उसके बाद विभीषण से वार्तालाप, तब उसके बाद आधुनिक युग का आगमन होता है, ये मान लीजिए उसका सेकंड पार्ट है, ठीक है, दो तीन दृश्य हैं तब सेकंड पार्ट। अब यहाँ पर पात्र जो है, ठीक, मैंने पात्रों का एग्जैक्ट मतलब फिक्टिशियस है, काल्पनिक है, लेकिन आप लोगों को पता चल जाएगा कि वे पात्र कौन से हैं। जैसे अभी पूरी दुनिया में जो राज्य कर रहे हैं, जो बहुत ऊपर कुर्सी में बैठे हुए हैं
1: दुनिया में,
0: अब जो लोग तानाशाही करते हैं, मतलब सिर्फ उन्हीं का राज चलता है, उनको मैंने लिया है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नाम तो नहीं लूंगा यहाँ पर। हाँ। तो उस कैरेक्टर में रावण पैदा होता है आधुनिक युग में, सत्ताधारी, पावरफुल, और वो जो चाहें वे करेंगे, चारों ओर बम फोड़ रहे हैं, बम फेंक रहे हैं, मिसाइल इत्यादि, मतलब तोड़ फोड़ कर रहे हैं, और चारों ओर पोल्यूशन, प्रदूषण ये सब हो रहा है, और वे जो चाहें वही हैं। जैसे रावण अपने युग में था प्राचीन काल में, अब आधुनिक युग में भी वही रावण कई जगह है, उसी रूप में, अहंकारी रूप में, और वे इस पूरी दुनिया की शांति को भंग कर रहे हैं, ये है दूसरा उसका दृश्य।
1: बहुत ही सुंदर। तो आप लोग साथ देते रहिए, एक लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं
0: जी।

0: बड़े गुरुजनों ने कहा है कि कोई भी पात्र नकारात्मक नहीं होता है, बल्कि समाज को संदेश देने के लिए उनके कर्म नकारात्मक हो जाते हैं। जैसे अभी हम चर्चा करे हैं रावण लीला के बारे में और रावण के जीवन के बारे में आप पढ़ेंगे जानेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें सामने आएगी कि रावण किस तरह से प्रखान पंडित थे, वेद के ज्ञाता थे, लेकिन एक दो गलतियों के कारण उनको नकारात्मक की मतलब दहलीज पर रख देते हैं और समाज के सामने एक नकारात्मक पात्र भी बन जाते हैं। रावण के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसीलिए कि हम आज के हमारे मेहमान विश्वानंद पत्या जी ने रावण लीला नाम का एक नाटक की रचना आपने लिखा है इसके बारे में, और इसी नाटक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं विश्वानंद जी। तो नाटक लिखते समय आप बहुत सारी बिंदुओं को ध्यान में रखकर लिखते हैं
1: जी।
0: उन सभी बिंदुओं में से एक है साध सज्जा
1: जी,
0: जो टेक्निकलिटीज होती है, जो स्टेज पर दिखाई देता है, एक निर्देशक का काम होता है, डायरेक्टर का काम होता है, इन सभी जो काल्पनिक बातें हैं, काल्पनिक चीजें हैं, उनको हकीकत में डालना, स्टेज पर डालना। लेकिन शुरुआत होती है लेखन के समय, क्या जब आप लिखते हैं तो इन सब बातों पर ध्यान देते हैं, खासतौर पर साज सज्जा पर ध्यान देते हैं?
1: जी हाँ,

0: तो जब हम साज सज्जा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मान लीजिए जब पहनावे ही पर चर्चा कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी अभी कहा, इस नाटक में दो भाग हैं, एक प्राचीन काल का रावण और एक आधुनिक काल का रावण। तो प्राचीन काल में जैसे कुंडल और उनके कवच, ये सब जैसे आपने एपिसोड्स में देखे हैं रामायण, ये सब वो सब थे पहले से। आदर्श सीतोहल ने उन सब का प्रावधान कर लिया था, उनके पास पहले से हैं। तो एकदम ऐसा लग रहा था कि रावण ही, और जब वो स्टेज पर आते थे उनका जो पहनावा था, बाल थे, मुकुट, ये सब, तो लग रहा था कि रावण स्टेज पर है। तब उसके बाद जब दूसरा भाग आया तो दूसरा भाग एक कॉस्ट्यूम, ठीक है, जैसे आजकल के हमारे बड़े बड़े जो नेता होते हैं, सत्ताधारी होते हैं अन्य अन्य देशों के, ठीक है, उस स्टाइल में आया, उस शैली में आया। तो ऐसा लगा कि प्राचीन काल से निकलकर हम आधुनिक काल में आ गए हैं। तो ये दर्शकों को दिखना चाहिए, अगर ये ना दिखे तो नाटक का क्या फायदा, नाटक करने का क्या फायदा,
1: बिल्कुल,
0: ठीक है। तो ये सब बातें देखना चाहिए, डायरेक्टर देखता है, उसके पीछे वो जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर है ये सब देखता है, उसको बहुत आवश्यक है।
1: एक और खास बिंदु के बारे में हम बात करना चाहेंगे, वो है संगीत, म्यूजिक।
0: जी जी जी, हाँ जी।
1: तो खास तौर पे इस नाटक में आपने किन किन विशेष बातों पर ध्यान दिया, उसके साथ सज्जा और उसके म्यूजिक पर?
0: म्यूजिक पर, अब जैसे जो शिव जी हैं, जब तांडव नृत्य उनका होता है, डुम डुम डुम, ठीक है, ऐसी आवाजें निकलती हैं, लग रहा है कि सचमुच हाहाकार हो रहा है, अब पूरी दुनिया अब समाप्त हो जाएगी, इसका नाश होगा। तो ऐसे जैसे प्रलय आ रहा हो, तो रावण भी जब चलता था तो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, एक सर्वशक्तिमान, एक राजा, खूंखार, अहंकारी, जब ऐसे चल रहा है डुम डुम, तो सब प्रबंध आदर्श ने किया हुआ था। और एक बात यहाँ पर मैं जोड़ना चाहता हूँ, ये विशेषकर श्रोताओं के लिए, देखिए रावण शब्द जो है यही अपने आप में बहुत ही अर्थपूर्ण है। शायद बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि रावण शब्द कैसे बना। रावण का अर्थ ही है जो रो रहा हो, कराह रहा हो दर्द से। तो ये कैसे यह नाम बना? एक दिन क्या हुआ था, दशानंद वो जा रहे थे शिव जी से भेंट करने, ठीक है, अपने उरन खटोले में, उस समय भी था उनके पास था, और उस समय नंदी ने, ठीक है, जो द्वारपाल था शिव जी का, उन्होंने उनको रोका, उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो अभी? तो दशानन ने कहा मैं शिव जी के दर्शन करने जा रहा हूँ, मैं ही उनका परम भक्त हूँ। ये भी उनका एक, उनकी एक संज्ञा है, उनको एक टाइटल मिला है परम भक्त। रावण ही शिव जी का सबसे परम भक्त था, परम भक्त। नंदी ने उनको रोका, कहा अभी नहीं जा सकते, शिव जी तपस्या में लीन है, व्यस्त है, नहीं मिल पाओगे। अहंकारी था दशानन, उन्होंने कहा तुम मुझे रोकोगे, साधारण नंदी, और तुम्हारा चेहरा देखो, बंदर जैसा तुम्हारा चेहरा है, तुम मुझे रोकोगे? मैं दशानन। नंदी नाराज, उन्होंने कहा तुमने मुझे, मेरा मुख जो है बंदर जैसा है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम मृत्यु लोग में जन्म लोगे और तुम्हारे मरने का कारण वानर ही होगा, हनुमान। तो ये उनको श्राप मिला था। उस समय दशानन बहुत क्रोधित हुए, उन्होंने कहा तुम मुझे रोक रहे हो मेरे आराध्य देव से मिलने के लिए, देखो मैं क्या करता हूं अभी। कैलाश पर्वत ही उठाने लगे, कैलाश पर्वत जब उठाने लगे, पार्वती को पता चला, पार्वती ने जाकर शिव से कहा ये देखो ये आपका परम भक्त क्या कर रहा है। तो उसने कहा चिंता मत करो, वो भी थोड़ा नाराज हो गए और अपने पैर से उन्होंने उसमें थोड़ा और बोझ रख दिया, जैसे कैलाश पर्वत पर दबा दिया, भारी हो गया, और उनका हाथ नीचे ही रह गया और वे कराहने लगे दर्द से। जब दर्द से कराहने लगे तो एक प्रकार से रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तब से उनका नाम पड़ा रावण। जो दर्द से, पीड़ा से कराह रहा हो, चिल्ला रहा हो, वह है रावण। तो शिव जी ने उनका नाम एक प्रकार से रावण रखा।
1: अच्छा, ये सीन भी है इस नाटक में,
0: ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये अच्छा पीछे है पृष्ठभूमि के रूप में, तो ये आवश्यक है जानने के लिए।
1: आपका, आपकी स्क्रिप्ट बहुत ही सशक्त है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो आप लेखक होने के नाते एक प्रश्न आपसे है कि क्या ऐसा कोई होता है कि एक वीक स्क्रिप्ट होता है, एक स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट होता है, इनकी मतलब कैसे

0: से पहचाने जाएंगे और किस तरह से एक वीक स्क्रिप्ट को स्ट्रांग स्क्रिप्ट में बदल सके?
1: जी हाँ, तो इसके लिए बहुत काम करना पड़ता है, ठीक है, अध्ययन बहुत करना पड़ता है। एक स्क्रिप्ट को जैसे आप बोल रहे हैं वीक या स्ट्रांग, ये निर्भर करता है कि आप उनमें कौन कौन से विषय रख रहे हैं। जैसे इसमें फिलोसॉफी है, दर्शन है, इसमें कर्म का पाठ है, इसमें दशानन जैसा चरित्र है, और जो मेरा कैरेक्टर है आदर्श, उसके भाई और अन्य, वे लोग सब इन बातों को एक प्रकार से प्रेषित कर रहे हैं दर्शकों तक, श्रोताओं तक। तो ये सब होना चाहिए उस स्क्रिप्ट में, तब जाकर ये प्रथम, द्वितीय या तृतीय सर्वश्रेष्ठ नाटकों में गिना जा सकता है। तो सबसे पहले विषय वस्तु, और ऐसी विषय वस्तु जो प्रासंगिक हो, रेलेवेंट हो, और जो समाज से जुड़ा हुआ हो। और जब श्रोता या दर्शक से देख रहे हैं तो उससे एक सानिध्य स्थापित कर रहे हैं, कनेक्शन। अगर वो कनेक्शन नहीं होगा तो वे गुम हो जाएंगे, उनको नीरस लगेगा नाटक। तो इसीलिए अब जैसे आपने कहा संगीत, उसमें संगीत भी जोड़ना चाहिए। संगीत जब उसमें जोड़ते हैं तो कानों पर प्रभाव पड़ता है, ढुम ढुम। इसे अब मान लीजिए रावण चल कर आ रहा है स्टेज पर, एक ध्वनि नहीं है, वो स्वयं अपनी आवाज से सबको आकर्षित कर रहा है, तो ये भी ठीक नहीं है। बैकग्राउंड में पीछे एक ध्वनि, ठीक है, जब वो ध्वनि उत्पन्न होगी और उसके साथ जब रावण इसे चल कर आ रहा है तब सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो ये सब बातें देखनी चाहिए। और जैसे मैंने कहा विषय वस्तु ना, विषय बहुत ही आकर्षक होना चाहिए और आधुनिकता से भी मेल खाना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है।
0: ऐसी लीलाओं पर आधारित आपको कहीं कहीं मौका मिला है राम लीला के बारे में या फिर रावण लीला के बारे में पढ़ने जी, के लिए, या फिर रामायण राम कहानी से जुड़े और पात्र की लीलाओं पर कोई कहानी या फिर नाटक?
1: जैसे मैं अभी सोच रहा हूँ, बाली एक बहुत ही दिलचस्प करैक्टर है, ठीक है। बाली को एक वरदान मिला था कि जो शत्रु उसके सामने होगा, ठीक है, तो उसकी जो आधी शक्ति है वो उसे प्राप्त हो जाएगा। तो इस पर एक कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे लक्ष्मण पात्र ही हैं, लक्ष्मण बहुत क्रोधी स्वभाव का है, तो क्रोध को कैसे नियंत्रण में रखा जा सके उस पर भी हम एक नाटक कर सकते हैं। हनुमान अपने आप में तो पूर्ण है, ठीक है, और जैसे हनुमान का जो पात्र है ये जो बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए जब वो सागर के किनारे पर था, सीता माता की खोज में निकलने के जा रहा था, तब उस समय उसे अपनी शक्ति का एहसास नहीं था। नल और नील ने उनको याद दिलाया कि अरे तुम तो महावीर हो, पवन पुत्र हो, तुम तो एक छलांग लगाकर अशोक वाटिका में जा सकते हो, क्या हुआ तुम्हें, अपनी शक्ति तुम भूल गए? तब वे लोग उसको याद दिलाते हैं कि उत्साहो बलवान आर्य, न अस्ति उत्साहात परम बलम, सोत्साहस्य च लोकेशु न किंचिदपि दुर्लभम। अर्थात उत्साह बहुत बलवान होता है, उत्साह से श्रेष्ठ और कोई चीज नहीं। इस संसार में जो उत्साही होता है उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं। तो जीवन में एंथुजियास्म बोलते हैं उसको, जील, उत्साह। जिसके पास उत्साह हो वो इस संसार में सब कुछ कर सकता है, इस दुनिया में सब कुछ कर सकता है। जब ये बातें प्रोत्साहन के रूप में हनुमान को प्राप्त हुआ तब उन्होंने सोचा कि अरे मैं, मुझ में वीरता है, मैं कुछ हूँ, शक्ति है मुझ में, और तब उसने सागर को पार किया। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ये जो श्लोक मैंने अभी भी कहा, इसी पर हम एक नाटक लिख सकते हैं, उसको हनुमान से जोड़ देंगे और सभी लोगों के लिए ये प्रेरणादायक भी होगा, बहुत ही मोटिवेटिंग होगा।
0: बहुत ही सुंदर, क्योंकि जो आप कह रहे हैं मेरे विचार में ये आ रहा है कि आजकल के जमाने को हम जब हम देखते हैं बहुत सारी मादक द्रव्य से ग्रसित नौजवान है,
1: वे सोचते हैं कि मादक द्रव्य थोड़ा सा उसका सेवन कर लेने से हमारा जीवन सुखमय हो जाए, नहीं, पतन की ओर जा रहे हैं,
0: पतन की ओर। और जील नहीं है, वो जील नहीं है, उत्साह नहीं है,
1: निरुत्साही हो गए हैं।
0: तो आपके हिसाब से हमारे जो पौराणिक कथाएं हैं, जो ऐतिहासिक कहानियां हैं, उनमें वो क्षमता है समाज में सुधार लाने की?
1: एकदम बिल्कुल सही आपने कहा, उनमें क्षमता

0: है, जैसे चर्चा हो रही थी कक्षा में कठोपनिषद के बारे में, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है नचिकेत, वह जाता है यम के पास, मतलब एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब न यम के पास जाता है, वहां पर वह तीन वरों, उसको तीन वर प्राप्त होते हैं कि वह बोलता है कि मेरा जो पिता है वो अपना यज्ञ करे और मैं कैसे लोगों का कल्याण, इन सब बातों पर चर्चा होती है। तो ये अपने आप में एक नाटक का विषय हो गया, बहुत अच्छा नाटक इसमें हो सकता है। सोचिए एक छोटा सा एक बालक यम के पास जाकर, और यम यहाँ पर एक शिक्षक है, ये यहाँ पर एक विद्यार्थी है, तो जो उनका संवाद होगा उसको एक नाटक का रूप देके आप सोचिए कितना शिक्षाप्रद होगा, इस पर बहुत काम हो सकता है।
1: आपका जो रुचि है, आपकी जो रुचि है वो खास तौर पे ज्यादातर किस की ओर जाता है, पौराणिक कथाओं की ओर या फिर आधुनिक कंटेम्पोररी स्टोरीज?
0: देखिए मैंने पंचतंत्र, हितोपदेश, वेद, भगवद गीता, इन सब का अध्ययन किया है, तो थोड़ा बहुत इनका ज्ञान मेरे पास है, तो उसको मैं मिक्स करता हूँ आधुनिकता से।
1: अच्छा।
0: और आदर्श सितोहल ने मुझे यह बताया कि यदि आप प्राचीन काल के जो ग्रंथ हैं उनमें जो शिक्षाएं हैं उनको लेकर उनको आधुनिकता से जोड़ें और एक प्रकार से ऐसा नाटक, ऐसे नाटक का निर्माण करें जो श्रोता या दर्शक देखकर प्रभावित हों, या उनको मार्गदर्शन मिले, या उनकी जीवन शैली में बदलाव आए, तो यह बहुत अच्छा होगा, शिक्षात्मक होगा। तो इन्हीं सब बातों को यदि हम ध्यान में रखें तो नाटक सर्वोच्च हो सकता है, बहुत ही उत्कृष्ट।
1: क्यों जैसे तैसे कहानी है, कथा है, नाटक है, वैसे नहीं ला सकते हैं, बल्कि उसमें थोड़ा सा परिवर्तन? क्यों ऐसा? क्यों
0: ऐसा? इसलिए कि हम जिस स्थिति में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, उसी के अनुरूप अगर नाटक हो तो ये अच्छा होता है, क्योंकि नाटक से हम एक संदेश देते हैं। देखिए जैसे इस नाटक में हम एक संदेश यह दे रहे हैं, एक पात्र है जो अंत में बोलता है, मर कर रावण अहंकार के रूप में आज भी हम सभी प्राणियों में विद्यमान है, इसी अहंकार के कारण प्राचीन काल में उसकी मृत्यु हुई और आधुनिक काल में इसी कारण उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन यदि हम एक भला मानस बनकर अच्छे काम करके, श्रेष्ठ कर्म करके अपना जीवन व्यतीत करें और मृत्यु को प्राप्त हो, तो सभी लोगों को अच्छा लगेगा और एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। हमारा जीवन उद्देश्य यही होना चाहिए, स्वस्थ समाज का निर्माण।
1: आप क्योंकि नौजवानों के साथ काम करते हैं, MGI में आप प्राध्यापक हैं संस्कृत के, क्या नौजवानों की रुचि रहती है इन पौराणिक कथाओं में?
0: यदि शिक्षक स्वयं उदाहरण हो, मॉडल हो, आदर्श हो, अच्छी तरह से पढ़ाए, बच्चों को अपनी ओर आकृष्ट करे, तो क्यों नहीं होगा। जैसे मैं आकृष्ट हुआ अपने गुरुजनों से, मेरे गुरुजन जो मुझे, जैसे मैंने अभी कहा हितोपदेश, पंचतंत्र, इनके बारे में मैं कभी जानता ही नहीं था। जब मैं BA हिंदी कर रहा था, ठीक है, BA संस्कृत, तब मुझे इन ग्रंथों के बारे में पता चला। तो यदि अध्यापक गुरु नहीं होता तो कैसे मुझे पता चलता? और गुरु का अर्थ ही क्या है, जो हमें अंधकार रूपी अज्ञान से निकाल कर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु अंधकार रूप प्रकाश, अंधकार से निकालकर प्रकाश, तो ये गुरु का काम ही है। गुरु आदर्श होता है, शिक्षक आदर्श होता है, और उनका काम है भूले भटके विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना, ज्ञान से उनको प्रकाशित करना।
1: चलिए थोड़ा सा आप एक निजी जीवन में उतरते हैं आप वैसे तो आप एक नौजवान थे और आगे चलकर आपकी रुचि हुई कि किसी क्षेत्र में, तो आपकी रुचि कैसे संस्कृत भाषा की ओर, कैसे लेखन की ओर, कैसे पौराणिक कथाओं की ओर, वेद शास्त्र उपनिषद की ओर, कैसे वहाँ पे उस चली?
0: जैस मैं तो एक हिंदी अध्यापक था पहले, हिंदी के प्रति मेरी रुचि थी, मैंने BA हिंदी, MA हिंदी ये सब किया, ठीक है। तो उसके बाद गुरुजनों से भेंट हुई, नाम मैं नहीं लूँगा अभी, नाम आवश्यक नहीं, मैं बता रहा हूँ यात्रा कैसे। तब संस्कृत की पढ़ाई जब शुरू हुई तो मेरा सामना श्लोकों से हुआ।
1: अच्छा।
0: संस्कृत श्लोक, तो श्लोकों का मेरे जीवन पर बहुत ही प्रभाव हुआ, उसका प्रभाव पड़ा। तो मैंने सोचा अरे दो लाइनों

0: का इतना प्रभाव पड़ रहा है। यदि हम इसकी संस्कृत में जो ग्रंथ है, वेद हैं, उपनिषद हैं, भगवद्गीता, रामायण, महाभारत इत्यादि हैं, विदुर नीति, चाणक्य नीति, चाणक्य नीति का मुझ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, तो यदि ये सब हम पढ़ें तो सोचिए ज्ञान की खान है वहाँ पर। इनको पढ़ने से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। और उस समय जो महापुरुष हुए जैसे चाणक्य, विदुर, ठीक है, ये इन सब के बारे में, वाल्मीकि, विश्वामित्र, इन सब के बारे में हम जान सकते हैं यदि हम संस्कृत पढ़ें तो। तो इसीलिए मेरा झुकाव तब संस्कृत की ओर हुआ और मैंने कुछ नाटक जैसे अभिजान, शाकुंतलम, ये सब मैंने पढ़े। तो तब मुझे लगा कि अरे ज्ञान तो अनंत है, असीमित है, जैसे आपने शुरू में बोला था ना, लिमिटलेस, तो असीमित है
1: बहुत।
0: तो ये सब पढ़कर ही ज्ञान प्राप्त हुआ और आज दो नाटक आपके समक्ष हैं, दो स्क्रिप्ट।
1: बहुत ही सुंदर। हम बात कर रहे हैं नाटक के बारे में, कभी कभी हम बात करते हैं हिंदी भाषा के बारे में, चलिए आज उनकी जननी संस्कृत भाषा के बारे में।
0: इसीलिए बोलते हैं ना, हिंदी संस्कृत की सुपुत्री है।
1: सुपुत्री। तो एक प्रश्न आपसे जरूर कहना चाहूंगा, वैसे आप लोगों को बता दे कि जब मैं अपना डिप्लोमा इन संस्कृत पढ़ा था तो आप हमारे लेक्चरर रह चुके हैं, सुपरवाइजर भी रह चुके हैं। तो उन लोगों को जो लोग सोच रहे कि संस्कृत बहुत ही कठिन भाषा है, नौजवानों को खासतौर पर सोच रहे कि हम कहाँ संस्कृत पढ़ सकते हैं, उन लोगों के लिए संस्कृत कैसी भाषा है?
0: संस्कृत बिल्कुल भी क्लिष्ट भाषा नहीं है, कठिन नहीं है, ये सब मन में है। कहा भी गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि मन में आप बिठा लें कि संस्कृत कठिन है तो आपके लिए कठिन है, और यदि मन में बिठा लें कि सहज है तो सहज है। एक उदाहरण मैं दे सकता हूँ आप लोगों को। मान लीजिए यदि आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो क्या करेंगे? हिंदी से संबंधित पुस्तकें पढ़ेंगे। अगर पुस्तक पढ़ने की रुचि नहीं है तो एक दो फिल्में देख लीजिए, समाचार सुन लीजिए MBC का, ठीक है,
1: हमारे कार्यक्रम
0: देख लीजिए हमारा, क्योंकि हम हिंदी में बात कर रहे हैं और कुछ संस्कृत श्लोकों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये सब देखने से आप धीरे धीरे हिंदी से सानिध्य आपका स्थापित होगा और आप सीखने लगेंगे हिंदी। तो ये है, उसी प्रकार संस्कृत भी है। संस्कृत में अब YouTube है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आपको वीडियोस प्राप्त हो सकते हैं, वार्तालाप हैं, वो देसयानी में सब कुछ अब बहुत ही इजी हो गया, एक्सेसिबल। तो वो सब देखकर आप अपनी संस्कृत को और भी उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और सीख सकते हैं बहुत जल्दी। तो सुविधाएं बहुत हैं, आपको सिर्फ एक अच्छा मार्गदर्शन मिलना चाहिए, और अगर आपको एक अच्छा गुरु, संस्कृत गुरु मिल जाए तब तो सोने पे सुहागा। आप उसे सीखिए और बहुत 30 दिनों में आप बहुत अच्छी संस्कृत भी बोल सकते हैं, मम नाम विश्वानंद तव नाम किम, ये सब बोलकर आराम से आप संस्कृत सीख सकते हैं। और कहा गया है ना, Where there is a will, there is a way. जहाँ चाह वहाँ राह।
1: बिल्कुल बिल्कुल। आप नाटक सीखना चाहते हैं जरूर नाटक सीखेगा, हमारे कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा। आप हिंदी सीखना चाहते हैं सीखिएगा जरूर, संस्कृत सीखना चाहते हैं तो गुरुजन है, MGI तो है वहाँ पे, विश्वानंद जी है
0: मेरे, रितेश जी मेरे गुरु जी ने कहा था जब मैं HSC में था, तो उन्होंने कहा था कोई भी भाषा हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, फ्रेंच हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, तमिल, तेलुगु, जो भी भाषा हो आप सीखिए, क्योंकि वो आपके लिए एक स्किल है, एक कौशल है। किसी भी देश में जा रहे हैं वह आपके साथ, वह भाषा आपके साथ एक मित्र के समान जा रहा है। मान लीजिए आप इंग्लैंड चले गए और आपको अंग्रेजी नहीं आती, तो अंग्रेजी उस समय आपका दुश्मन है। आप हिंदी नहीं जानते हैं, आप भारत चले गए, तो उस समय हिंदी आपका शत्रु है, दुश्मन है, है नहीं। तो इस प्रकार से तो हर एक भाषा को सीखिए और उसको दोस्त बनाइए, मित्र बनाइए।
1: बहुत ही सुंदर। कार्यक्रम के अंत तक तो हम पहुंच रहे हैं विश्वानंद जी, आपकी ही नाटक रावण लीला का एक छोटा सा संदेश जो सेनापति के मतलब उनके उनकी ओर से ये कहा जा रहा है, और खास तौर पे सभी जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो युद्ध हमारे देश के लिए, दुनिया के लिए, सृष्टि के लिए, प्रकृति के लिए बहुत ही हानिकारक है, दुश्मन है। तो एक सेनापति के शब्द में विश्वानंद पत्या जी के नाटक से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं सेनापति। डरती हुई, महाराज एक बार फिर सोच लीजिए, आप पहले से ही एक शक्तिशाली और धन संपन्न राजा है, आपकी प्रजा इस युद्ध से बहुत प्रभावित होगी, पुरुषों को

0: युद्ध भी अग्नि में धकेलना अहितकार व हानिकारक सिद्ध होगा। विवाहहीन महिलाएं विधवा हो जाएगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। चाहे आपकी जीत हो या हार, दोनों ही परिस्थितियों में आपकी प्रजा की ही हार होगी, आपकी ही प्रजा की हार होगी। मतलब युद्ध में आप लड़िएगा मत, युद्ध में भाग नहीं लीजिएगा, बल्कि शांति बनाए रखिएगा।
1: युद्ध से सिर्फ हानि ही होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अरे अगर युद्ध हो जाए तो इसमें हमारा कल्याण है, लेकिन भूलिएगा मत, इसमें बहुत से लोग चले जाते हैं, हमारे अपने परिवार के सदस्य चले जाते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण पहले शांति दूत बनकर गए थे हस्तिनापुर, उन्होंने शांति की कामना की थी, लेकिन उन्हें शांति वहाँ पर मिली नहीं। शांति जब मिली नहीं वहाँ पर, तब अंततः नो चॉइस, युद्ध करना पड़ा। किसके लिए? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए
0: जरूर युद्ध करना चाहते हो तो धर्म की स्थापना, धर्म के लिए युद्ध कीजिएगा, नहीं तो न कीजिएगा, खुद के लिए सेल्फिश बनकर बहुत ही विनाशी है। तो विश्वानंद पतिया जी, आप एमजीआई महात्मा गांधी संस्थान के संस्कृत डिपार्टमेंट के हेड है और संस्कृत प्राध्यापक है, संस्कृत पढ़ाते और नाटक भी लिखते हैं आप, एक लेखक है, आप आए हमारे कार्यक्रम में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी,
0: और ऐसे ही लिखते रहिएगा।
1: हाँ,
0: और हमारे कार्यक्रम में आते रहिएगा।
1: और श्रोताओं को भी मैं बोल देता हूँ कि यथाशक्ति जहाँ तक हो सके आप लिखिए, चाहे वो नाटक हो कहानी हो, लेकिन अच्छा लिखिए और ऐसा लिखिए ताकि लोग प्रभावित हों और उनको एक मार्गदर्शन प्राप्त हो। बहुत धन्यवाद रितेश,
0: बहुत ही सुंदर। विश्वानंद जी ने बहुत सारी बातों को लेकर आज हमारे सामने रखा है, उनमें से एक बात है, एक जो होता है स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट, दूसरा होता है वीक स्क्रिप्ट। तो बहुत हमारे देश में बहुत नाटककार है जो नाटक खेलते हैं, लिखते भी है, लेकिन इस बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा आपकी स्क्रिप्ट स्ट्रांग होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट वही होती है जब जहाँ पे हाँ लोगों के मस्तक में, लोगों के जीवन में एक भाव, एक छाप छोड़ जाए। तो जरूर लिखिएगा, स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट लिखिएगा और इस नाटक की दुनिया है उसको आगे बढ़ाते रहिएगा। अगले कार्यक्रम तक हमारी ओर से नमस्कार। नमस्ते।
2: नाट्य कला, रंगों की भाषा, भावों की धारा, जहां मंच पर हर एक किस्सा हमारा, नाटक पर आधारित कार्यक्रम नाट्य कला।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है सुमेरा अकबर अली। आपको नमस्कार और आदाब।
1: नमस्कार और आदाब। कश्तियों को दी जा रही सेवाओं को आसान बनाने के लिए मर्चेंट पोर्ट अथॉरिटी प्रक्रियाओं को डिजिटलाइज कर रही है। मैरीटाइम सिंगल विंडो के विकास से आधुनिक तरीके अपनाए जा रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म के जरिए कई बंदरगाही सेवाओं को एक ही जगह उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रणाली से बंदरगाह समुद्री ट्रैफिक को बेहतर तरीके से संचालित करेगा। गैर कानूनी तरीके से कचरा फेंकना या यानी इलीगल डंपिंग करने की हरकत के सिलसिले में पर्यावरण मंत्रालय ने आज सुबह कुडो में मोरी फैसिलिटीज में एक राष्ट्रीय चेतना अभियान की लॉन्चिंग की। नए उपकरणों को प्रदान करते हुए यह ऐलान किया गया। भारतीय सरकार के सहयोग से 6 स्कैवेंजिंग लॉरियां दी गई हैं। ये चेतना अभियान इलाकाई प्रशासनों की मदद से चलाया जाएगा ताकि जनता के ज्यादा करीब हो। इस साल मॉरीशस में वर्ल्ड तमिल इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस का 13वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। 11 से 13 सितंबर तक पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन के अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में ठेकेदार अर्थशास्त्री और मुख्तलिफ मुल्कों से आए पेशेवर वैश्विक अर्थनीति और अंतर्राष्ट्रीय तजारत की चुनौतियों पर बात करेंगे। विदेश में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर नवंबर के चुनावों में रिपब्लिकन्स की जीत हुई तो हर अमेरिकी नागरिक को $5,000 मिलेंगे। अपनी कार्यावधि के मध्य में पार्टी के पहले जुटाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ये वादा किया। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। कोऑपरेटिव रोड लाफलोहा में 91 साल के 91 ईयर्स ओल्ड श्री किसवरदत्त दुर्बीजा जो चुनन क्वाफिया के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल 11 बजे के बेटे राज दुर्बीजा के घर कोऑपरेटिव रोड लाफलोहा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांव बुआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रेमेशन टुमारो एट 11 AM। रॉयल रोड पिछे काफरे में 89 साल की 89 ईयर्स ओल्ड श्रीमती मिंत्रावती सिबा पैदाइशी नाम सुन्यासी की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दोपहर बाद एक बजे इनके घर रॉयल रोड पिछे काफरे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाऊची की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। शोक में डूबे इन परिवारों से हमें हमदर्दी है।
2: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।
3: आप सभी को नमस्कार। आज की चर्चा कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक स्वागत हम करते हैं। और आज हमारे टीम में है फैजन जो टेक्निक पर है, उरुसा हमारी प्रोडक्शन सहायिका, और निज़ाम के निर्देशन में ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है। और आज जैसे कि आप सबको बेसब्री से इंतज़ार है ये जानने के लिए कि किस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। वैसे आज की जो चर्चा एक चर्चा कार्यक्रम जो है वो ऐसे विषय पर है जो खेती, खाद्य उत्पादन, पर्यावरण और हमारी आने वाली पीढ़ियों, इन सभी से सीधे जुड़ा है। एग्री फूड सेक्टर इन सर्कुलर इकोनॉमी, यानी कृषि और खाद्य क्षेत्र में ऐसी अर्थव्यवस्था जहां संसाधनों का इस्तेमाल केवल एक बार करके उन्हें फेंक न दिया जाए बल्कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम उपयोग किया जाए, उन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जाए और कचरे को भी एक उपयोगी संसाधन के मतलब उसे बदल जाए। तो आपको याद होगा कि हमने वैसे पिछले बार एक प्रोग्राम पर्यावरण मंत्रालय से एक पिछला प्रोग्राम में हम लोगों ने सर्कुलर इकोनॉमी पर चर्चा की थी।

0: तो आज ये प्रोग्राम हम कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम का दूसरा भाग है और हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं इस समय ऐसे पर्यावरण मंत्रालय से हमारे साथ हैं श्रीमती सुदेवी सुब्रन जी और फारे यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन इंस्टीट्यूट श्री संजय शंभू जी, आप दोनों का स्वागत हम करते हैं। नमस्कार हमारे इस प्रोग्राम। और पिछला प्रोग्राम में हमने जान लीजा सर्कुलर इकोनॉमी के महत्व पर कौन जी है अतः हमने के मॉरिशस देश जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स यानी कि सिड्स में गिनल जाला इतना सबको जाना एक सामना कैसे करी हमने के आज के ई प्रोग्राम में चर्चा करब जा एग्रीकल्चर से भी सकेला ई भी मदद करी ततनी हमने के सरल भाषा में बताओ सर्कुलर इकोनॉमी सरल भाषा में कुछ बताओ कि पिछले जो निको ब्रीफ हमने के श्रोता या दर्शक के बताओ।
1: जैसे नमस्कार श्रोताओ, पहले एगो हमने के एगो प्रोग्राम हो रहा जहाँ हमने जनरल बच्चे ले सर्कुलर इकोनॉमी पर आज बोलब सर्कुलर इकोनॉमी आखिर फूड सेक्टर पर
0: जी।
1: जैसे जाने लो हमने के रोड मैप हमने जो अप्रूवे हो रहा उसमें एगो सेंक सकते बातें एगो है आखिर फूड एंड आखिर फूड सेक्टर तो इहो में हमने सकब सा सर्कुलरिटी आने कैसे सर्कुलरिटी जैसे बोला तुम्हें हमने बनावप्स लेवअप्स बनावप्स फेकअप्स नहीं ओके हमने के चालन घुमा फिरा के सर्वी करे के तो आगे कुल्चर वो में होवे लाते हैं घुमा फिरा के सर्वी करे के तो देख पा जब हमने है कर सर्कुलर इकोनॉमी करब सा लागे कुल्चर में तो हमने के पोल्यूशन रिस पोल्यूशन डिमिनिया हो जाए हमने के हम कच्चा माल जो है ढेर ने सेवी करब सकब से सेवी करते रहे और जो है हमने जो हमने के जैसे बोला हमने के सीड्स है हमने के पे ये गो सीड्स है स्मॉल डेवलपिंग आइलैंड स्टेट तो उसमें सर्कुलर इकोनॉमी एगो श्वान है उगो नेसेसिटी बन गल बातें तो हमने के जब हाउ प्लान हमने के रोड मैप बनल तो एग्रीकल्चर वन ऑफ द सेक्टर रहल उमे तो उ खातिर हमने दलित से कुमाऊँ पर हमने बल्ली से सर्कुलर इकोनॉमी पर आज बच्चे आते हैं सर्कुलर इकोनॉमी इन एग्री फूड सेक्टर
0: तो मोरिस खातिर एग्रीकल्चर के क्षेत्र एगो नेसेसिटी बन गल जैसे अभी सुब्रन जी बताइए तो कैसे एक इम्प्लांटेशन मिनिस्टर देने से करा जा
2: सबसे पहले नमस्ते एक से आगे एगो चीज हम एगो झलक देला ज़्यादा तक जाने ला जब हमने सोचब जा कि पोल्यूशन कहाँ हुआ था या कचरा कहाँ पर ही होता यानी कि दिमाग में हमने के कौन कौन ऐसा चित्र आवेला ज़्यादा तक देख सोच पाता तो हमने के झलक ना एगो कारखाना बाते वहाँ से कुछ निकला था फेंकल जाता ऐसा ऐसा दृश्य आवेला दिमाग में लेकिन जैसे सुब्रन जी बोलन हमने के कृषि क्षेत्र में भी ऐसा ऐसा कार्य होला उत्पादन होला जहाँ से हमने के जैसे बोला सा वेस्ट एग्रो वेस्ट या एग्री फूड वेस्ट में हमने है पोजुआ के लजा जन सकल जला हमने के चला जन सकला फिकात हुई या वालोगिजेनेट हुई या सकल जा ओके ट्रांसफॉर्मे करे तो इस सब गन्ना हमने है उतना गन्ना ओकर पर अमल नहीं कला जा आज ये करती जाता तो सकेला एक आध गो चीज हमने बाहर से नहीं मंगेती सर कैसे उदाहरण के रूप में हमने ओकर में इकोनॉमी जुड़ल बा सर्कुलर इकोनॉमी में तो जब बात कहला जा फर्टिलाइजर के खाद के शुरू में तुम्हें खाद के बोल रहा तो उतना जब फर्टिलाइजर एम्पोर्टे होता तो आज कहला हमने के देश में एक बड़ा योजना रहत कैसे सकत ज़्यादा मात्रा में कंपोस्टाज करी या फिर ओकर से जस्ती अब वालों की जासों में बोलते हैं एक एगो उदाहरण में बोलते हैं कंपोस्टाज तो एगो चीज होल तो ओके सकब सा अब एनरिच कंपोस्टिंग करे एनरिच कंपोस्ट यानी कि कंपोस्ट तो बात है लेकिन अब ओके ऋषि का देव सा एक आध गो चीज से जो ज़्यादा मात्रा में सकेला नाइट्रोजन रहे फॉस्फोरस रहे ऐसे चीज रहे तो सकेला हमने कोई ना कोई मात्रा में हो जितना जो जितना फैचरीजा एम्पोते होता
0: उसको कम कर दे
2: कम कर दे अब देखा यही उदाहरण में वालोगिजेशन कैसे होता तो जन उत्पादन अब कंपोस्ट से होता उतना नेचुरल है ना ऑर्गेनिक तो ज़रा तक जन चीज अब एकड़ में से निकली कौन चीज हो उतना केमिकल्स नहीं बाकर में हाई एगो छोटा सा उदाहरण द्वारा बोला था अब जैसे बोला हमने हम

0: ni mantralai dwara ya hamni ke sansa dwara kunchi kate ja dugo chit me sakama me ke bole ego taba policy wise jaise abhi hamni ke sathi bolan saki bolan yahan par ki circular economy we par ego rapport taiyar karna ba jahan par hamni ke jitna institution ba ya stakeholders ba khali mantralai nahi paski mantralai sab chiz ne sakela kare
1: bilkul
0: koi hamu as a citizen se boila sa ego nagrik ki tarah hamro kame kono responsibility mate ta hai ego chiz ba aisan ese rapport ba circular economy par tai to ba lekin hamnyo lage कृषि मंत्रालय में हम यो काम कर लिया जा जैसे कि लासीज रहा लासीज बिलाग एग्रीकल्चर 2026 उसके द्वारा में जितना है सब चैलेंज हमने की लोकल बा कैसे आए कचरा से सकब सा लिपटे कैसे सकब सा वैलोरिजेशन करे है सब हम यो लगे आए एगो रापो में आल बा और अभी हाल ही में अभी निकला ले बा में एगो फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम में भी है काम होता और देख बा बजट जो 26-27 के हाल ही में अभी निकलल बाते ओकर में देखबा एगो फ्लैगशिप प्रोग्राम बाते ओकर बा नाम विजन 25x35 जेके इन नचला जे सकब बोले तब बोलता दे कैसे सकब सा हमनी 25% अपन जन खाए के हमनी के चाहेला 2035 में करे using minimal agricultural inputs. Ta iyo ego bada ba, lekin circular economy ekar mein awela aur terrain par ab kunchi hota. Hai ta ita kagaz ke tukra ke te bana. Ata terrain mein kunchi hota. Ata terrain mein hamni ke jitna department ba fare mein dekba crop extension ba livestock extension ba research bhi department ba ta sab koi kaam ke la saath saath kon kon strategy se kala apnaye kaisi se ki hamni ke mati jun ba मॉरिशस में फट उपजाऊ रही रेजनरेटिव रही उपजाऊ रही ताकि जो पीढ़ी आवा था उसकी वो माटी के प्रयोग करे कैसे सकब सा जो कैसे घास के जरा होते नहीं सा तब बजा सा कॉम्पोस्टे करे के तो इस पर ट्रेनिंग वगैरह मिलेला कैसे सकेला कैसे फिमिया बातें तो हमने ज्यादा तक जान ला सके फिमिया के लेके खेत में प्रयोग करो नहीं फिमिया कैसे भी सब कंपोस्ट करे कैसे सब एनरिच करे सब पेलेटाइज करे कैसे ट्रांसफॉर्म होता वैलोरिजे होता तो है सब चीजों का में आवेला और ओकर में भाभी फूड वेस्टेज भी आवेला तो कैसे सब एकर में तो हमने के देर फॉर्मेशन भी दिला सके सब ट्रांसफॉर्म करे
2: यहां से कब आज तक करे हमने के जो प्लेटफार्म है सब हमने के जो गवर्नेंस है हमने के स्टीयरिंग कमिटी है प्लीज हमने के सेट प्लेटफार्म बातें जो जो हमने के फोकस एरिया बातें जैसे एग्री फूड है वो हमने के अपेप्रे एगो 20 action policy action grand action ha jen jala implementer kare ke 2023 le da hay plateforme ou président ou elate l'agriculture c'est ça veut dire ego personne ha jen l'agriculture me ba ou président kare la chi personne ha ar hamni ke सब मॉम बाते स्टेकहोल्डर्स जैसे बोली लासा तो वो लोग आवेलन सा अपन इनपुट देवलन सा डिफरेंट एक्शन पर जैसे फूड वेस्ट बोलक जैसे फीमेल बोलक जैसे बोलक जैसे जब बायो गैस बनाई कैसे वॉलंटरी एग्रीमेंट कर बट हर सब एक्शन वहाँ पर काम हुआ था ते और ये प्रोग्रेस हुआ था बस के इम्प्लीमेंटेशन कुमासे हो गल बातें और यहाँ पर देख बात खाली गवर्नमेंट नहीं रह रहते हो जब हमने एगो कमिटी करी लासा लाके किल्चिया पड़ता वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर रह लाते वहाँ पर एनजीओ रहेला हमें आगेम रही सब कोई रही तो वो लोग सब कंट्रीब्यूट करें ऐसा कैसे हमने सकब सा है आगे फूड बगल के सर्कुलरिटी आने
1: द सर्कुलर इकोनॉमी रोड मैप और रिएक्शन प्लान 2023-2033 के बारे में पिछला बार भी आप बोल कर पर जितना कोई ई प्रोग्राम सुना था जुड़ल बात वो लोग के जैसे अभी बोल खुलासा देला तो ई जो एक्शन में एग्री फूड कैसे सकेला ई एक्शन प्लान में मदद करे अभी जो अभी बोला वह
2: एक्शन प्लान में जैसे बोली तो उकर में एगो जैसे बोली जिसने एक्शन बातें प्लस उकर क्रॉस कटिंग जो ना हाँ गवर्नेंस उकर सेंसिटाइजेशन उकर प्रोक्यूमेंट उकर कुत्ते लालवा सब बातें तो है जिसने एक्शन वां

0: कचरा भी सक बचा ओके ट्रांसफॉर्मे आज जनला करे ओके को ऐसा को रूप में अनब तो कचरा नहीं है वो आप तो इकोनॉमी में डुगल एगो एगो एगो कोमोजिटे होगल जन जन आदमी लोग सकी प्रयोग करे अभी कैसे बेंजी कान के गन्ना पर बात करे थे तो ऐसे ही देख बा कैसे हमने के प्लास्टिक बा हम के याद बा हमें कला 2010-2012 उन्हें मतलब यूरोप में रहनी तो होटल में हुआ पर तो हुआ पर ही जो शैम्पू के जो बोतल रखा रहा तो बोतल ही कर रहा प्लास्टिक मेड फ्रॉम शुगर केन देखा कौन समय में तो यहीं पर ही हमने क्या ऐसा पूछता हूँ शिल्पा कैसे जब उतना गन्ना के फसल होला जब हमने के केला के जब जब फसल केला जाए तो जो पत्ता वगैरह से सकल जाए सब्जी बनाए तो दिखला किसे कचरा वेस्ट लेके बालों के जो को मुझे होगा
1: तो मोरिस के सिचुएशन में स्टैटिस्टिक फूड वेस्ट के बारे में क्या बताए बाकुंची कितना गैस्पियाज होता
0: ये देखा हमने लगभग आज वो मात्रा में बोला जा हमने के ओर से तो सकब साहब सकब जा बोले कि लगभग 30% जो कृषि से जुड़ल बा तो गन्ना प्रोडक्शन में प्रोडक्शन जब प्रोडक्शन होता और उत्पादन होता खेत में या खेत में से पोस्ट हार्वेस्ट निकल गल मंडी में से तो और घर जब जाता वगैरह तो लगभग 30% तक अभी आए हमने बिला दे ला सा
1: खाली
0: खाली हाँ हमने जब फूड आए जब आगे फूड पर बोलता है 30% तो जब देख 30% तो अब हमने जाओ कैसे आज 189 मिलियन आज लेगी पोज करनी सा एक साल में अब तो सोचा होगा मैं कितना कि हमने पी एच बी करता है सा तो जब हमने सिक्योरिटी आलिम होते पर बोला जाओ फूड रेजिलियंस पर बोला जाओ तो आज 30% जनती सा हमने बचाए तो कितना गन लकी सर
1: भाई जी तो खेती हर लोग खातिर अच्छा फसल मिले खातिर कौन नेचुरल पदार्थ चाहे ला सेवी करे के हो जैसे अभी बोले फिर ये सब हम जानी ला
0: देखा एक कोनो एगो चीज कुछ में होए कृषि में होए कुछ में होए कोनो एगो चीज ज्यादा मात्रा में प्रयोग करवा या कम मात्रा में तो ठीक नहीं हो तो उसका संतुलन बिगड़ जाला कैसे कि गन्ना एगो चीज की खेती बाड़ी करत हो तो अब तू जहाँ तो फसल के समय आवता तो लेकिन उससे पहले जो खाद में नाइट्रोजन ज़्यादा बा ओके प्रयोग करत हो तो नहीं अच्छा बात क्योंकि जब प्लान सब ओके आप सोबे का दे नहीं होने तो का शेल्फ लाइफ उतना नहीं रही या फिर पेस्टिसाइड्स के प्रयोग कर दिला ओकर से आगे तो ये जान ही ला सा कि जन जन जन पौधे में पेस्टिसाइड रहला तो ओकर शेल्फ लाइफ लंबा नहीं रहला कौन पाकर जी कर तुलना में लेबा एगो एगो चीज जन में गन्ना बियो पौधे रहा
2: यहाँ पर हम सब आज की करे देख बट बिलमा बगल पालमा बगल ढेर प्याज रुपेला तो जब डाले लंसर में फैचिलीज ढेर ढेर तो जब ढेर जैसे भाई से बोलक जब ढेर डल जनसा तो हौलीच हो जलाते जाके तब लामिया में चल जला जब लामिया में देख पालमा बगल बगल देख सिग्रॉस जो सिग्रॉस है बहुत ढेर हो जलाते तो हमने के लापला जोली नहीं हो लाते तब वही खातिर जन भाई जी बोलक तो चाहे हमने के मात्रा सकब से कंपोस्ट से भी गए तो वो बहुत अच्छा बात है फैचिलीजों चिमिने करके नहीं तो हमने के है सब जाफेवन देख हाउ जो नाइट्रोजन है फोस्फाट है हम सब पानी में चल जाला पानी में चल जाए तो हम जहाँ पर देख अलगल ब्लूम हो जलाते देख पानी में चल जलाते जब पीब तो हम सब नहीं अच्छा है तो वही खातिर चाहला ओकर मात्रा जान के से भी करे
0: हमने के चाहला एक में हमने के उपदेश कौन सी बात चला माटी के बढ़िया रखे के ना कितना कोई अभी देखा प्रोजेक्शन बीओ में हो अंसा तो लोग कैसे करते हो अंसा निमन से फिमिया वगैरह डाल के करते हो अंसा तो सब कम मात्रा में आज मन हुई थोड़ा फैच चीजों के प्रयोग भी करे ऐसा बच्चा कम ती प्रयोग करे मैं ज्यादा तक कंपोस्ट या फिमिया के प्रयोग करे
1: और खेती हर लोग जनना बनान के रोपाई करे लंजा और जब ई फल तोड़ देवे लंजा तो कैसे सकब जा उकर पत्ता उकर फिब के उपयोग करे
0: ये एगो बड़ा कठिन प्रश्न बात है देखा बाहर में आज देखा जा कैसे भारत में देखा जा वहाँ पर बहुत

0: laki-laki
1: badan hula. Badan
0: hula. Hula wang padi. Wang padi dek bata leh, ego legistri ba. John Kela sange jural ba. Ego filier ba te. Hai la poswa hamni lagi habile nei ba. Nei bata. Ego filier hi ba. Kaise ki jab wang padi jab Kela ke okar fasal hogal, ta jab okar okar gaunchi bi kata dala na, okar patta bi kata dala, ta hai sab leke फिकल जला हाई सब जाके अब वहाँ पर ही एक आध गो कारखाना बाते जो ना अब हाई सब के काजे करके उकर फिब निकाल के उकर से रस्सी उकर से
1: ढेर चीज बनावे
0: कुछ रेसिपियां हमने खाई ला सा
1: हाँ एक प्लाली सा एक प्लेट देखे हुए
0: सारी ये भी उकर से बने ला तो अब हमें लगे हाई सब प्रोडक्शन कैसे बजा सा जिस पे ऐसे बस काटे बा और हो फिलिया पोचा के कमी बाते
2: है जहाँ पर हम बोले चाहब कि यूनिवर्सिटी बहुत रिसर्च कर ले बाते और हमने जापान गए सर तो देख ली से एगो कंपनी वो जाना के हो जन लाहुआ पता पता वहा वो सेवी करके सकी माहौ के लेदर बनाए तो उसे साक सब बने लाते हो बनानों से काम करे
0: जूता भी बनाए
2: जूता बनी साक बनी सब चीज बनी बनान से सकी साड़ी उस सब बना दे वालं सा तो हो कंपनी वा आए अभी नवंबर में तब उकर से देखा बस कैसे हमने ईडीबी बगल से कैसे ओके
0: लेकिन हमने सब चीज के गाना इजोलाशों में दिखला सा ना सिलो में दिखला जा कैसे कैसे हये खिसावा जे लेप जा कि केला से केला के तह उत्पादन होला मॉरिशस में कौन चीज सकल लाए करे ओकर वेस्ट से तो एक आध गोची जावेला तो कहाँ कहाँ है प्रोडक्शन बा कहाँ कहाँ के सकी एकर एक हमासे करे के संगे ले ढेर करे हाँ और कल पीछे लॉजिस्टिक कहाँ से कहाँ कौन के ऑर्गेनाइजे करे तक किसान अपन से जाए लेके जाए छोड़े या फिर एक कंपनी आ जाए तो वो जाए हमने किसानों के बलि देखा हमारे लगे बातें आवल उसे से तो हाई हमने किसान इजोलाशों में नहीं दिखे के नहीं तो कैसे अभी गन्ना के खेती में होता हमने हमारे पिताजी अति कतलन गन्ना के खेती कतलन तो रुकावट हो गल सन सकेला 2020 से तनिशुन आगे रोक देने से काहे क्योंकि वो कामियों नहीं रहा लोरी नहीं रहा आए गन्ना ले जाए के तो गन्ना के उत्पादन बंद हो गल तो आई सब चाहला संगे दिखे के
1: तो इस चर्चा को थोड़ी देर के लिए हम रोक रहे हैं और श्रोता और दर्शक लोगों से यही मांग करेंगे अगर आपके पास कोई मतलब सुझाव हो या फिर कोई सवाल हो बेझिझक हमें फ़ोन कर सकते हैं 4028085 पर और अभी अंजू आपके लिए एक गीत चलाने जा रही है

0: आज का हमारा विषय है एग्री फूड सेक्टर इन सर्कुलर इकोनॉमी और पर्यावरण मंत्रालय से श्रीमती सुदेवी सुप्रन है हमारे साथ और फागे यानी फूड एंड एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन इंस्टीट्यूट से श्री संजय संभोजी हमने के संगे भाभी स्टूडियो में। तो मान लो एगो ऐसा सिचुएशन आल कि प्रोडक्शन में सरप्लस हो गल तो फागे महिला लोग के कैसे मदद पहुँचावेला शंभुजी
1: हमने लगे फागे में वैसे तो हमने के जैसे बोले शुरू में डिपार्टमेंट और एक बार कैसे क्रॉप एक्सटेंशन में लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन में तो यहाँ पर ही हमने महिला लोग के एम्पावर करी लचा लेकिन फागे ही में एक डेडिकेटेड यूनिट बाते उसका नाम है वुमेन एंड यूथ यूनिट तो ये डेडिकेटेड कैसे यूथ और वुमेन खातिन तो ये लोग ज़्यादा तक वैलोरिजेशन में होता है ट्रांसफॉर्मेशन में होता है एग्रो प्रोसेसिंग में होता है तो महिला लोग के एम्पावर के लिए फॉर्मेशन दे ट्रेनिंग दे कैसे सकल जाए लाके किसी से जुड़ा जो उनको मजीते बातें ओके लेके ट्रांसफॉर्मे करके वाले आ जुटे आने और कैसे वो लोग के खाली ट्रांसफॉर्मे कर एगो चीज नहीं है मैं कैसे ओके लेके अब तू उठबा आज एक प्रोड्यूसर से लेके एगो छोटा मोटा एंटरप्रेन्योर कहते हो जाए एंटरप्रेन्योर कैसे ओकर मार्केटिंग भी कर चाहे लाखों पाए मा हमने लगे हो और एगो खाली फागे लगे ना लेकिन हम सबका बोले कि एगो जेंडर मंत्रालय में भी बा नो एक बात है नेशनल वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल वो लोग भी महिला लोग के हाई सहायता करे लंचाथ हो मौजे भी लंचा कैसे करना अपन एंटरप्राइज के सेकेंड निमन से ले जाए लेकिन यहाँ पर ही हमने के हम के एगो कहना एगो अपॉर्चुनिटी दिला एगो चीज़ बोले के एगो उदाहरण देला अदरक पर से हमने हम जहाँ रहिला हम हमारे गांव में कैबके मोतालोंग और लिमोयान लेबा मॉरिशस में जन अदरक आवेला माजोगीते यहीं से आवेला सकेला सुशांत जी पूसा 70% यहाँ से आवत हुई जब देखबा तो घर घर में सकेला महिला लोग हुई सकेला काम करते हुए सकेला घर पर हुए या सकेला खेत में वो लोग भी हाथ बटावत हुए लेकिन देखबा यहाँ पर कितना अपॉर्चुनिटी बातें है जितना अदरक पहुँचा हुआ था ज़्यादा तक मंडी में जला नेशनल होलसेल मार्केट में जला है ये अदरक के गाँवें में बा गाँवें के महिला सकत ले सकत ओके ट्रांसफॉर्मे करे सकत ओके पाउडर पाउडर अदरक बनाए जेकर वाले आ जुटे है तो जस्ती महंगा हो भी चला खाली है ना

0: हाइता कहना अदरक लेके थौसोमे कलंजा जब किसान अदरक के रोपाई करेला तो जहाँ तक एगो चीज लोग बना चाहे जैजाम सुती
1: ये अलग
0: ये एगो चीज एगो दूसरा तरीका कौन चीज होला जब अदरक के रोपाई होल ई बारिश तगनला आठ नौ महीना के बाद आठ महीना के बाद तब कर फसल हुई ना तो कौन चीज कर लंच के माटी में छोड़ देवे लंच तो अब ओकर फसल दूसरा बारिश में कर जान लेकिन दूसरा बारिश होते हुए तो फिर से जमे लगेगा फिर से जस्ती बढ़ा हो लगेगा जस्ती फेम हो जाएगा वगैरह वगैरह लेकिन जब दूसरा देजाम सीजों में जब ओकर फसल कर जान अब कौन चीज होगा तब बड़ा बड़ा जजाम बात ओकर में फेम बा निमन बा लापू सब एकदम से दिख बता तो लेकिन साथ साथ अब तनि सुन तानो रहेला ओकर में तो नहीं सकेला सब निमन से माचू रहे तो अब तनवन के लाख अब जब बेचे लंच तो फेमन के दाम निमन रहेला तो जरा तक तनवा लेके फेंक देवे लंच तो हम बताली अदरक के वालो विजय करे के कैसे के थौसो में करे के लापुट में बनाए तो जन तनवा फिकल जला सकेला कैसे लेसौस भी बनाए ओकर में एगो मसे बातें जो हमने ताप नहीं करता है और फिकाता है सर्कुलर इकोनॉमी में कैसे सकल आए
2: यहाँ पर हम सकब आज उठे करे बोले कि हमने के सर्कुलर इकोनॉमी रोड मैप में बोले ना सब के ग्रीन जॉब जहाँ क्रिए करे के ग्रीन जॉब क्रिए करते हैं सर तो है में महिला लोग के सकब से लेके बहुत चीज करी दिखबत जो आग्रो प्रोसेसिंग में बातें जैसे बोला भाई जी तो ट्रेनिंग देवे ला सर जब दिखबत आम सीजन रहे लाती तो आम के लेक्सी के कि कौन के तो देख पाता ढेर ढेर हो जा रहा थे तब कौन सा फेंका जाला तो मैडम लोग के वो लोग के ट्रेनिंग दे के बोले ला सा जा सा अचार बनावा सा सा ड्राई फ्रूट बनावा सा हो बना के सर्विस अकब करे तो मैं हाउ हमने के जो जैसे बोलनी सा ना ढेर फूड लॉस हो जाते तब फूड लॉस जिमनी कर दे वापस और हाँ वो बातें जब मैडम लोग जब घरे रह लन सा तब देख बात वो लोग तला कुजीन में रह लन सा छिलका सब रह लाते तो वो लोग सक्यान सा है सब छिलका वन ले के कॉम्पोस्ट बना दे और जो वो लोग लावे कुल चाहे वो मैं वन सा तर कॉम्पोस्टिंग सक्यान सा करे आवड़ी एगो चीज आवड़ी एगो बातें कि सीवीज जैसे बोली ढेर बातें तो कॉपी खाची वो में हमने के सहायता करे थो सा तो वो लोग जब कॉपी खाची मानाम लोग के सकब से ट्रेन करे कैसे सीवीड्स के ओके लेके सकब से स्वा कॉम्पोस्टिंग बनाए स्वा को दूसर क्वालिटी फौजी बनाए कुछ में ची जो वाले आजूते बाते वो लोग के ट्रेनिंग दे के सकब सकब से
1: लेस के जो हमने के लाकुट में देखी ला सीवीड सीवीड वाला में निकले ला
0: और सकब चाहे के देखो दूसर लेवल पर भी ले जाए हाँ जैसे बोला था ट्रांसफॉर्मेशन तो ट्रांसफॉर्मेशन का एक फौजी तक खाली ट्रांसफॉर्म ही होता ना एक दूसर लेवल पर सकब चले जाए कैसे हमने जान लेना चाह कि मॉरिशस में ढेर लोग चाबे चिखा कितना कोई हमने के मरुशा जैसे जाबे चिखा तो जब ट्रांसफॉर्मेशन का तैसा तो देखा कुछ सारे वाले आज उठते हो जला कि जब कोई चीज ट्रांसफॉर्म करके बनावट हुआ तो कहना वो शुगर फ्री आज रहा तब सोचता ओके अब मार्केट में जब लाना तो तब अब एक ब्रांडिंग होता होगा संगे कि शुगर फ्री तो हमने के जे जाबे चिखा या फिर जाबे से बचाए खातिन तो अनिवार्य फायदा ही फायदा बात में
1: तो हमने के सब बताओ हमने के घर पर जो फ्री फल लेग्यूम सब्जी से भी करी ला जा कैसे इस सर्कुलर इकोनॉमी प्रैक्टिस अमल हो सकी बस जैसे हमने के अभी जितना कोई हमने के सुना था देखा था वो लोग घरे में हवन सा तो कैसे वो लोग के कहे कि जब बोली ला जा सर्कुलर इकोनॉमी एग्री फूड में कितना हमने शुरुआत में बोली बा कितना खाए कि हमने फेंकी ला जा और फ्री में भी बहुत और एक खराब बोल ट्रियाज है करेगी जैसे लापू ये सब ओके ट्रिए करेगी तो कौन चीज अकबर बोले हमने कि जितना कोई हमने के सुना था वो लोग के फ्री वन कौन चीज अकड़ा करे
2: जैसे मौसम बोलक भाई जी हमने बहुत फूड वेस्ट ओके फेंकी लासा वो है जैसे हाँ आप 150,000 टन पर लाने फेंकी लासा और हर एक दिन के 400 टन फूड वेस्ट फेंकी लासा तो कैसे फूड वेस्ट ढेर ढेर क्वालिटी है ढेर क्वालिटी है सब जब जैसे बोला फ्री वे बातें घर में तो कैसे करवा तो कि ट्रांसफॉर्म में कर दे ट्रांसफॉर्म में सक कर दे तब ओके सब ओके अचार बनाए ओके जाम बनाए दूसरा ट्रांसफॉर्म में करके पहले के दादी लोग तो देखा था ढेर ढेर कई थे चीज़ बड़ी

0: बरिस अपन अचार रख दे वतन से बिलाइन भी रह
1: पचीस में
0: डाल पचीस में डाल के तो हो
2: भाई इतने बड़े इप्पे सब
0: हाँ इप्पे हाँ और कर तेल निमन से डाल के बहुत दिन ले रख दे वतन से आज बताओ कर अचार बहुत मजेदार है तो उसे हमने सकब से अति करे आवरे कैसे घर में कैसे सकब से करे जब जयबकी ने हुई था जब जब किने है तो फ्रियो के ढेर नहीं हम बच्चा अब जब किने जात हुआ था जब किने जब तो जन तो हो चाहे उकिन के आना उकिन के आना रख दे रख दे अब दूसरा कुछ जब तो फिर से जब किने ना अन बता जन हो जन नीचे के बातें ऊपर कर दे जब मैं ओकर एक्सपायरी डेट घरे हुए मैं एक मजे नहीं आते हो जाए देख पाते ढेर कोई आने ला ढेर ढेर दा

0: पारी दे खड़े हुए मैं मजे ने अति हो जाए देख पाते ढेर कोई आने ला ढेर ढेर प्रिजर्व करके रख देव जब जब लिता जब महंगा रही तब सेवी कर और जब माता हम लोग तो अपन खाए के बना हुए ला ना जब खाए के बनाई तो के चला नाप के मनाई के नाप के बनाई तो ढेर घस प्याज नहीं हो खा ले फिनी हो जाए तो भाई में और जो छिलका के जो बोल ली जो छिलका वो अपन पीछे बगल पहले देखा तो पीछे में बनान के गौछ रहा तो बनान में फेंक दे तो बनान जोली जोली निकले तो अब तो उतना प्लास नहीं आता वो कंपोस्टिंग वो सब कर दे तो कंपोस्ट हो जाए
1: जैसे बोला बनान जोली जोली हो जाए तो ऐसे कंपोस्ट हुआ और फेंक के तब ऐसे जोली होकर बा तब सकेला कंपोस्ट हुए बनाए कि ना अपन वासों में
0: अब तो प्लास नहीं बा वो खाते
1: कई जना बोले प्लास थी लोग के रूफ गार्डनिंग से आना करे के कोनो कोनो बड़ा के प्लास नहीं रहे लोग तो कौन ची आप लोग के मंत्रालय या फिर पारे देने से कौन कौन प्रबंध सके लाओ लोग के दे के
2: एक एक एक आज कोई भी व्यक्ति लगे गन बगीचा ने बा जगह ने बा एको बगीचा के देखा थे तो सकी कंटेनर गार्डनिंग कंटेनर गार्डनिंग करे सकी रूफ गार्डनिंग करे समझ चाहना चाहने के कैसे कौन मात्रा में माटी कंपोस्ट मिला के कंटेनर में डाले के तब इस सब हमने फॉर्मेशन दिला जा बात ये हम लगे इस सब फॉर्मेशन दिला जा और एक चीज बा है देशे के हमने घर जन के रसोई घर से निकला कंपोस्ट बा लेकिन आजकल देख बा हमने के मार्केट में एक आध गो छोटा मोटा लापागे मिलेला जन से घर ही बायोगैस बनाए और तो हर वेस्ट किचन वेस्ट से ओकर से है बायोगैस बनेगा हायो एक भी है संभावना बातें और एक चीज हमने के चलना सोचे के बहन जी बोलन कैसे बोलन हमने लगे से 400 टन एडिशन है पोजो गार्डन साल रोज हमने के जहाँ तो हमने के लगभग 400,000 घर बा मॉरिशस में आज हर एक घर में सोच ला 400 टन एक आते नहीं सकेला एक एक एक किलो तक निकला तो कम से कम है जैसे ऑर्गेनिक जैसे बोला सब निकला तो सकेला सकेला घरे जब एक जगह देखा तो अपन नजरिया से तो सोचा था हमें लगे तो खाली इतनी ही निकलता ना लेकिन ओके जगह सोचे कि एगो कैसे बोला सको पात्रियोत की तरह एगो देशभक्त की तरह जब सोच बा हमारे के लिए 400,000 घर बा कुल मिला के देखा कितना होगा ऑर्गेनिक वेस्ट तो आज हमने सब ऐसे जाके लेके पिकअप से लैंडफिल खाते इंटरने छमा ना तो घर ही पर एक आदमी बोला बर्न हैबिट्यूड
0: रूफ गार्डनिंग वो है लाहो पर मन को मंत्रालय देवाताते फैसिलिटी एक्वापोनिक करके एक्वापोनिक करके तब लाहो में थी सब्जी रोपे के अब हवो नहीं रही था कोई के तो पोवे में सब डाल दे ढेर कोई अपन अपन स्वायों कर
1: छोटा
0: जो लेगी फाइन हाँ फाइन है वो उस अक्यान से प्लांट कर दे तो देख पाते ढेर चीज सकब सा घरे करे हमने के बोलो उते चाहे लाते
1: तो आज आज की चर्चा में एक बात स्पष्ट है कि सर्कुलर इकोनॉमी केवल कचरे को कम करने की सोच नहीं है बल्कि संसाधनों में को समझदारी से इस्तेमाल करने और उसके उनकी पूरी वैल्यू को बनाए रखने की सोच है और कृषि ने निकले वाले अवशेष हो खाद्य से पैदा होने वाले वेस्ट हो पानी या ऊर्जा इस्तेमाल करके बहुत कुछ भाई शंभू ने हमने के बताया तो ये सब जानकारी खातिर बहुत बहुत धन्यवाद दो शब्द समाप्त करने के अगर आप जोड़ना चाहेंगे
2: आज हम की रात बोले कि हम बोलते देखा हमने के चला हमने के माटी के सबसे पहला चला उपजाऊ रखे के तो जन ऐतों बा हमने चाह निमन से चुन के ओकर प्रयोग करे के और ऐसा ऐसा ऐतों चुने के जन सकब जा माटी के उपजा रखे और हमने के जन घास बा चलाने जलाए के जन जन फेंकत है सब ओके जैसे छारा रिसिकले करती सा कंपोस्टे करती सा ओकर से माटी के तब उपजाऊ रखती सा और फिर जन चीज हमने पोजुए करते हैं सा हम के चला खाली पोजुए करके नहीं सोचे के कि देखा जा नेचुरल होलसेल मार्केट में डाले चला ये भी सोचे के हम तो एक हमेशा बरिस भर सकेला पूजा करते हैं

0: उन अपॉर्चुनिटी और बा एकर से एगो लेवल जैसे जाके ओके ट्रांसफॉर्म करे खान के
1: अच्छा बिल्कुल
2: हम जन बोले ख जब कल हला बोले नो नो गो ए जन बा रिड्यूस रियूज रिसाइकल रिपर्पोज रिमैन्युफैक्चर हम बिल हाई कांसेप्ट पर चला एग्री फूड में डाले के तब हाई दलब सोच ऑन सकप एविटे करे रिफ्यूज करे सकप रिसेव करे हर एगो चीज में तोहर घर में तोहर रिटेल में हर कारों में हई प्रिंसिपल दल पर ते पर हमने सकप सपन टारगेट जन बोली ना सकों पूसों वेस्ट फूड वेस्ट चिमिने करे तो हमने के चाहला हमें अमल
1: करेगी श्रीमती सुदेवी सुब्रन जी पर्यावरण मंत्रालय से आई हुई उनको धन्यवाद देते हैं और फागे से श्री संजय शंभू जी इन महत्वपूर्ण सरल भाषा में बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग के तो हमें पूर्णाशय इस प्रोग्राम से हमारे श्रोता और दर्शकों को जरूर लाभ उठाया हुआ होगा एक अगले प्रोग्राम तक हम लोगों को आज्ञा दीजिए साथ में अंजू फैजन उरूसा और निज़ाम के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार।

0: आइए सुनते हैं समाचार सुमैरा अकबर अली के साथ. नमस्कार और आदाब.
1: नमस्कार और आदाब. गैर कानूनी तरीके से कचरा फेंकना यानी इलीगल डंपिंग करने की हरकत के सिलसिले में पर्यावरण मंत्रालय ने आज सुबह कुद्दो में मुरी फैसिलिटीज में एक राष्ट्रीय चेतना अभियान की लॉन्चिंग की. नए उपकरणों को प्रदान करते वक्त ऐलान किया गया. भारतीय सरकार के सहयोग से 6 स्कैवेंजिंग लॉरियां दी गई हैं. ये चेतना अभियान इलाकाई प्रशासनों की मदद से चलाया जाएगा ताकि जनता के ज्यादा करीब जाया जा सके. कश्तियों को दी जा रही सेवाओं को आसान बनाने के लिए मुर्शिद पोर्ट अथॉरिटी प्रक्रियाओं को डिजिटलाइज कर रही हैं. मैरीटाइम सिंगल विंडो के विकास से आधुनिक तरीके अपनाए जा रहे हैं. इस प्लेटफॉर्म के जरिए कई बंदरगाही सेवाओं को एक ही जगह उपलब्ध कराया जाएगा. इस प्रणाली से बंदरगाह समुद्री ट्रैफिक को बेहतर तरीके से संचालित कर पाएगा. इस साल मुर्शिद में वर्ल्ड तमिल इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस का 13वां संस्करण आयोजित किया जाएगा. 11 से 13 सितंबर तक पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन के अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में ठेकेदार, अर्थशास्त्री और मुख्तलिफ मुल्कों से आए पेशेवर वैश्विक अर्थनीति और अंतर्राष्ट्रीय

0: तिजारत की चुनौतियों पर बात करेंगे। पहली बार के लिए मॉरिशस में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रतिनिधि मंडल आया हुआ है। आज इस अंतर्राष्ट्रीय इदारे के महानिदेशक दारेन तांग ने विदेश मंत्री से मुलाकात की। मॉरिशस ने कई परियोजनाओं के सिलसिले में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग की मांग की है। विदेश में अमरीकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर नवम्बर के चुनावों में रिपब्लिकन्स की जीत हुई तो हर अमरीकी नागरिक को $5,000 मिलेंगे। अपनी कार्यावधि के मध्य में पार्टी के पहले जुटाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने यह वादा किया है। तो अभी के लिए बस इतना ही, थोड़ी देर में शोक समाचार। रॉयल रोड गोंबे में 68 साल की 68 इयर्स ओल्ड श्रीमती साकिला सुवांबेया, श्रीमती साकिला सुवांबेया पैदाइशी नाम लक्ष्मण, जो साकिला के नाम से ज्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल शाम चार बजे इनके पति रमेश सुवांबेया के घर रॉयल रोड गोंबे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शिमे वैपिए गोंबे की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 4 PM। शोक में डूबे इस परिवार से हमें हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।

0: 4:09 हो चुके हैं. नमस्ते दोस्तों, हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ पूनम और आप सुन रहे हैं RM3 रेडियो मनोरंजन पर. आप सभी का स्वागत है आप ही के प्यारे शो में दिल से मिले दिल. ये एक वन आवर जो है ना, जहाँ पे हम सिर्फ बात करते हैं दिल की, दिल से सुनते हैं, दिल की बात करते हैं और दिल से ही जुड़ने की कोशिश करते हैं. तो आप अपनी चाय और जूस अगर जो भी ले रहे हैं साथ में लेते रहिए, आराम से बैठिए और इन्जॉय कीजिए उस पुराने प्यारे से सफ़र को, जहाँ पे 90s के गाने चलते हैं, जहाँ पे थोड़ी सी बात अलग कुछ हुआ करती थी, जहाँ पर हम सारे गाने उस टाइम के सुनते हैं, जहाँ पे थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा मजाक और थोड़ी सी बातें वो वाली जो दिल तक छू जाती है. तो चलिए सिर्फ मिलते हैं इसी प्रोग्राम में हमारे ये गाने, तो चलिए इन्जॉय करते हैं इन प्यारे से गानों को.
1: RM3 Radio.

4:17 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम दिल से मिले दिल के साथ में। और इस समय मैं आपका साथ दे रही हूँ पूनम। मुझे एहसास है कि जब कोई दिल की बात करता है और दिल की बात में याद आ जाए उस इंसान की जिससे आपने कभी प्यार किया, उसकी बातों में उसकी यादों में जब इंसान खो जाता है तो फिर एहसास होता है कि हमने क्या मिस कर दिया, क्या वो टाइम था, क्या वो अच्छे दिन थे जब हम उस इंसान के साथ थे। पर क्या करें, वो इंसान अगर दूर भी है तो क्या हो गया, आप तो अपने साथ जुड़े हुए हैं ना। तो अगर दिल से उसको याद भी कर लिया तो आई थिंक सो टाइम पूरा हो जाता है। और हर किसी का ज़िंदगी में एक टाइम होता है उसकी ज़िंदगी में रहने तक का। तो कई लोगों को इस समय याद आ रहा होगा कि वो काश मुझे एक बार वो मैसेज भेज दे, वो टाइम में वापस लौट जाएँ। पर कभी वापस लौट के जा नहीं सकते, हमें आगे ही बढ़ना होता है। और जब बढ़ते बढ़ते हमें एहसास होता है हमने ज़िंदगी का वो पड़ाव पार कर लिया जहाँ पे दिल ने कई चीज़ें समझ ली। और जब दिल चीज़ें समझ जाता है ना तो एहसास होता है कितना प्यार हमें हर किसी से होता है। और ये प्यार ही तो है जो हमें दिल से जोड़ के रखता है। RM3 Radio.

0: 4 बजकर 23 मिनट हुए हैं दोस्तों। इस समय आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम दिल से मिले दिल के साथ में। ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी क्या चीज़ होती है दोस्तों? पैसा, शौहरत, सबसे ज़रूरी है अपनापन। जब कोई हमें समझता है बिना कहे, जब कोई हमारा दर्द बिना बताए महसूस करता है, वही असली रिश्ता होता है। आज के दौर में लोग पास होते हैं फिर भी बहुत सी दूरियां होती हैं। तो आज किसी अपने को कॉल कीजिए, कह दीजिए कि आप उनके साथ हैं, बस इतना ही बहुत होगा और उनकी शाम तो बनेगी ही बनेगी। साथ में उनको एहसास होगा कि चाहे आपने बहुत सालों के बाद कॉल किया हो या मैसेज किया हो या बहुत समय लग गया हो, महीना हो गया, हफ्ता हो गया, उन्हें एहसास हो जाएगा कि आप उनके साथ आज भी साथ दे रहे हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपको भी कोई ऐसा गाना याद आता है, किसी ऐसे इंसान का नाम याद आता है जिसको आप इस समय मिस कर रहे हैं, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 5250-6200 पर। ये गाने जो हैं दिल से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हम कहते हैं हमेशा दिल के साथ जुड़े रहो।
1: RM3 Radio.

आप सुन रहे थे एसपी बालासुब्रमण्यम और अलका याग्निक की आवाज़ में बहुत ही प्यारा सा गाना। और अब जो सुनने जा रहे हैं हम गाना, ये उनके लिए है जिनको अपने प्यार की याद आती है। जब प्यार की याद आती है ना, तो एहसास होता है कि कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है ज़िंदगी में। अगर काम हो, पैसा हो, ज़िंदगी हो, खुद की ज़िंदगी भी छोटी लगती है कि जिससे प्यार होता है। और जिससे प्यार होता है उसके लिए तो कहते हैं ना कि हर कोई कुछ भी कर गुजरता है। तो हम भी यही कहेंगे, ज़माना है ऐसा ही है, चाहे दुश्मन ज़माना हो या प्यार करने वाला।

0: फिर से जुड़ते हैं और एक बहुत ही प्यारा गाना है दुश्मन ज़माना से, मुझे उम्मीद है ये वाला गाना आपको ज़रूर पसंद आएगा।
1: RM3 Radio.

0: 4:37 हो चुके हैं दोस्तों। इस वक्त जो लोग ड्राइव कर रहे हैं, हाँ आप तो कार में हैं, बाइक पे हैं, या घर लौट रहे हैं और ऑफिस का काम ख़त्म करने वाले हैं, या आप बिजनेस में हैं और बस अपना सामान रमासे कर रहे हैं, तो हम आपको इतना ही कहेंगे, गाना तो बजता रहेगा पर सड़क पर बिल्कुल नज़र रखें, थोड़ा सा कवर करके वापस आएँ घर। ये नहीं कि फिर बाद में ठंड लग जाए आपको, क्योंकि बाहर बारिश भी है और थोड़ा ठंडा मौसम भी है। सीट बेल्ट लगाइए, थोड़ी सी अपनी लिमिट में रहिए और आराम से ड्राइव कीजिए। हम है ना आपके साथ मस्ती कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं और आपके साथ में वो गाने आपको चला के सुना रहे हैं, जिन गानों के अंदर तो आपको लगता है बहुत ही स्पीड धीरे हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे गाने ऐसे चलते हैं जहाँ पे किसी की याद आती है और जब याद आती है तो दिल थोड़ा सा छिड़ ही जाता है। तो अगर ये वाला गाना आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इस मूवी को जब बनाया गया था तो बहुत ही शाहरुख खान साहब उस टाइम बड़े यंग से चार्मिंग और क्यूट से थे। तो इस मूवी का गाना आप सभी के लिए, इंजॉय कीजिए इस गाने को।
1: RM3 Radio.

कभी किसी ने आपका दिल चुरा लिया है तो चुपचाप ले लिया है या बिना बताए आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा कि ज़िंदगी में क्या हो रहा है और ऐसा एहसास होता है कि क्या बोलें क्या ना बोलें और बस एक जगह चुपचाप बैठ जाते हैं जहाँ पर आप सिर्फ गाना सुनते रहते हैं। कई बार ऐसे भी होता है कि ज़िंदगी का ऐसा मोड़ गुजर जाता है, कहते हैं एक यंग लाइफ गुजर जाती है, पर फिर भी जिससे प्यार हुआ होता है ना उसको भुलाना बहुत मुश्किल होता है। ना तो उस इंसान से शिकायत कर पाते हैं, ना उसको भूल पाते हैं, ना उसकी फीलिंग को कहीं छुपा पाते हैं, पर जब भी कोई ऐसे गाने चलते हैं तो उसमें एहसास होता है कि हाँ भाई हमें उनसे आज भी मोहब्बत है। और जब मोहब्बत में गाने ऐसे चलें तो जहाँ पे दिल टूटा हो या कभी जुड़ गया हो तो ये गाने बहुत काम आते हैं। तो मैं तो आपको इतना ही बोलूँगी, RM3 के साथ आप जुड़े हुए हैं और मैं साथ दे रही हूँ आपके पूनम इस समय, पर आपको इतना ही कहूँगी कि जो दिल है ना इसको थोड़ा सा संभाल के रखिएगा, ऐसे ही किसी को भी ना दे दीजिए, क्योंकि जब किसी को दे दिया जाता है तो उसके बाद एहसास होता है कि क्यों दे दिया था। पर हम यही आपको कहेंगे, ये गाने आप सबके लिए हैं, कोई भी फीलिंग्स हो अपनी फीलिंग्स को अपने दिल तक रखिए और उसको याद करते रहिए। RM3 Radio.

0: RM3 Radio.
1: चार बजकर 52 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, अभी इतनी जल्दी वक्त, एक घंटा ऐसे ही निकल गया। अभी तो शो शुरू ही हुआ था और अभी अलविदा कहने का मौका भी आ गया, तो फिर हम यही कहेंगे यहाँ पे, अलविदा बिल्कुल नहीं कहने वाले, हम बस इतना ही कहेंगे अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे इसी समय पर मेरी बात आपको साथ मिलने जा रहा है संजय जी का। इन्जॉय कीजिएगा इस गाने को और साथ में अपना ख्याल रखिएगा।
2: फर्स्ट टाइम देखा तो

0: ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री सरस्वती नमः। रेडियो मनोरंजन के सभी श्रोता भाई बहनों को जय सियाराम, जय जय हनुमान। आप सबों का हार्दिक अभिवादन है आज के हमारे राम रसधारा सत्संग में। आज स्टूडियो में उपस्थित हैं चार बहनें जिनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। बहन माला जी को जय सियाराम, बहन शिवानी जी को जय सियाराम, बहन सिमरन जी को जय सियाराम और बहन सुनीता जी को जय सियाराम। जय सियाराम बहने।
1: जय सियाराम।

0: रसधारा।
1: जय सियाराम, जय श्री गणेश। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। देवी और सज्जनों, अगले मंगलवार को हम सब विघ्नहर्ता रिद्धि सिद्धि के देवता श्री गणेश जी का महोत्सव गणेश चतुर्थी मनाएंगे। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड के मंगलाचरण के पहले ही श्लोक में माता सरस्वती और गणेश जी को नमन किया है। सुनते हैं मंगलाचरण। जय सियाराम, जय श्री गणेश।
2: जय सियाराम।

0: रसधारा
1: देवी और सजनों रेडियो मनोरंजन के लहरों पर आप सुन रहे हैं राम रसधारा भाई संजय के साथ और आज हमारे साथ स्टूडियो में चार बहनें उपस्थित हैं जो सुमिरत से देहोय गणनायक करिबर बदना करहूं अनुग्रह सोई बुद्धि राश शुभ गुण सदना मंगलाचरण के बाद प्रथम सोपान ही में बाबा तुलसीदास जी ने बप्पा का आशीर्वाद लिया है चले सुमिरनी को सुनते हैं बहनों के संग जय सियाराम
2: जय सियाराम जो

0: सूरज धारा
1: देवी और सज्जनों, सनातन धर्म में हम भगवान श्री गणेश जी को विघ्न विनायक, विघ्नों के राजा मानते हैं, द लॉर्ड ऑफ ऑब्स्टेकल्स, और हनुमान जी को संकट मोचन, संकटों को दूर करने वाले। इन दोनों का समागम हम देखते हैं श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड के शुरुआत में, जब हनुमान जी निकलते हैं माता सीता की खोज में और उनके सामने अनेक संकट आते हैं और किस तरह से अपनी बुद्धि, अपने विवेक के बल पर वो सबको एक एक एक करके पार करते हैं। जय सियाराम,
2: जय सियाराम,
3: जय सियाराम।

0: रामरसधारा
1: रेडियो मनोरंजन की लहरों पर रामरसधारा भाई संजय और चार बहनों के संग देवी और सज्जनों पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या खूब लिखा है सुंदरकांड में जिमी अमोग रघुपति कर बाना ए भाती चले हनुमाना राम जी की एक तीर की भांति हनुमान जी हर एक बाधा को पार करते हुए अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए आगे बढ़ते ही जाते हैं। उसी प्रकार जैसे शिव जी और माता पार्वती विश्वास और श्रद्धा के रूप में हमारे हृदय में वास करते हैं, उसी तरह बप्पा हमारे मस्तिष्क में बुद्धि और सद्विचार के रूप में वास करते हैं और इन्हीं तीनों के बदौलत हम हर बाधा को पार करते हुए अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते हैं। चले सुंदरकांड की ये दूसरी चौपाई सुनते हैं बहनों की वाणी में। जय सियाराम,
2: जय सियाराम।

0: रसधारा।
1: जय सियाराम, जय बजरंग बली। तो हमेशा याद रखें कि जब भी जीवन में कोई संकट आपके सामने आए तो उसे एक बाधा के रूप में न देखें, अपितु एक चुनौती के रूप में देखें, एक चैलेंज के रूप में देखें, जिसको पार करने के लिए आपको अपने आप को अपग्रेड करने की आवश्यकता है, मौका मिलेगा। तो इसी के साथ ही आज का राम रसधारा प्रोग्राम यहाँ पर समाप्त होता है। हम सबों की ओर से श्री गणेश महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं समाप्ति बहनों के साथ। जय सियाराम, जय जय हनुमान, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया,
2: जय सियाराम।

0: जय सियाराम, जय जय हनुमान, ओम गण गणपते नमः, हर हर महादेव।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
5: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। मॉरिशस गणराज्य दुनिया भर में अपन बहु संस्कृति और बहु जातीयता खातिर प्रसिद्ध है। भले ही ये एगो छोटा देश है, फिर भी यहाँ दुनिया के अलग अलग कोना से विभिन्न मूल के निवासी लोग एगो जीवंत और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर अनले हवन जा। आज ये सब संस्कृति, परंपरा, सामाजिक प्रथा और धर्म मॉरिशन सांस्कृतिक धरोहर के एगो अभिन्न अंग है। एकर बिना मॉरिशस के कोनो पहचान नहीं बा, और इमें दोनों मूर्त और अमूर्त विरासत शामिल बा। हमनी के विरासत के संसाधन, हमनी के हेरिटेज रिसोर्स, हमनी के राष्ट्र के गौरव है, ओकर शान है। ढेर कोई आप में से हमेशा पूछे लजा कि धरोहर के मतलब का है। धरोहर के मतलब है हेरिटेज, फ्रांसे में एक पैट्रिमोन बोलल जला। धरोहर के गिनती में बाप दादा, माँ दादी लोग के द्वारा छोड़ल गल वस्तु, इमारत, गहना, बर्तन, रीति रिवाज, प्रथा, संस्कृति, पुराना जोन प्रतिमा बा, या फिर कोनो ढांचा, कोनो स्ट्रक्चर, या फिर कोई भी पारंपरिक ज्ञान, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम जिके बोलीला जा, ये सब धरोहर के गिनती में आवेला। धरोहर की भाषा बहुत बड़ा बा, बहुत विस्तार से सकबा एकर परिभाषा देवे। दिलचस्प बात यह कि हमने एगो छोटा टापू देश होते हुए भी सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और बढ़ावा के प्राथमिकता देले आल है जा, और धरोहर के बचावे खातिर कानूनी ढांचा भी तैयार करा गए बा। हमने के देश में नेशनल हेरिटेज फंड की स्थापना से आगे जोन की मॉरिशस के धरोहर के सुरक्षा और संचालन के जिम्मेदार संस्था है, एकर से अक्ते मॉन्यूमेंट एक्ट 1944 के तहत मॉरिशस के धरोहर के संचालन करल जात रहल। 1985 में ई एक्ट में सुधार आनल गए। राष्ट्रीय धरोहर के सही संचालन के मकसद से 1997 में नेशनल हेरिटेज ट्रस्ट फंड कानून पारित करल गए, और 2003 में नवा नेशनल हेरिटेज एक्ट के घोषणा करल गए। एकर संगे संगे सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण खातिर और भी नियम और कानून पारित करा गल, जैसे आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड एक्ट 2001, लुमोन हेरिटेज ट्रस्ट फंड एक्ट 2004, लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2011, 2019 में आप्रवासी घाट विश्व धरोहर स्थापित के बफर जोन प्लानिंग पॉलिसी गाइडेंस, और लुमोन सांस्कृतिक प्राकृतिक इलाका के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 2004, और ओकर अर्बन हेरिटेज बफर जोन साल 2019 में। मॉरिशस यूनेस्को के कितने ऐसे कन्वेंशन के सदस्य देश है जेकर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय धरोहर के संचालन और संरक्षण के प्रावधान बा। हमने के एगो बहुत ही विशाल और समृद्ध लिखित दस्तावेज के कलेक्शन बा हमने के आर्काइव्स में। हमने के देश में फ्रेंच प्रशासन के रिकॉर्ड यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल बा। मॉरिशस में गिरमिटिया मजदूर के आर्काइव्स भी यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड

0: 94.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।
1: खुश आमदीद इस बुलेटिन में। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। रेडियोलॉजी और कैंसर के मिनी इन्वेसिव इंटरवेंशन के सिलसिले में प्रोफेसर एडवर्ड लम शामलिंग का हवाला दुनियावी सतह पर लिया जाता है। वो मोशन डॉक्टरों को प्रशिक्षित करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं में अपनी सहायता देने के लिए तैयार। आज दोपहर बाद मोशन मूल के इस डॉक्टर ने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से की मुलाकात। विरासतों की हिफाजत करना, ये एक कार्यशाला का आज मुद्दा रहा। मार्च 2027 में नेशनल हेरिटेज अथॉरिटी बिल को राष्ट्रसभा में पेश किया जाएगा। पहली बार के लिए मॉरिशस में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का प्रतिनिधि मंडल मॉरिशस आया हुआ है। आज इस अंतर्राष्ट्रीय इदारे के महानिदेशक दाहिन तांग ने विदेश मंत्री से भेंट की। गैर कानूनी तरीके से कचरा फेंकना यानी इलीगल डंपिंग करने की हरकत के सिलसिले में पर्यावरण मंत्रालय ने आज सुबह कुद्दो में मोरी फैसिलिटीज में एक राष्ट्र चेतना अभियान की लॉन्चिंग। गणेश उत्सव का माहौल देश में महसूस किया जाने लगा है। वाकवामी गणपति

0: के भक्त मिट्टी के बप्पा मिट्टी से बप्पा की मूर्तियां बना रहे हैं। विसर्जन विधि के दौरान भक्त उनसे अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की इच्छा व्यक्त करेंगे। और फिलीपींस में एक कश्ती में आग, 5 लोगों की मौत, 86 लोग जख्मी। नमस्कार, आदाब। रेडियोलॉजी और कैंसर के मिनी इन्वेसिव इंटरवेंशन के सिलसिले में प्रोफेसर एडवर्ड लाम शांगलिन का हवाला दुनियावी सतह पर लिया जाता है। आज दोपहर बाद उन्होंने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से रस्मी मुलाकात की ट्रेजरी बिल्डिंग पोर्टलुई में। मोशन मूल का ये डॉक्टर लंदन के इंपीरियल कॉलेज में स्थित हैं। उन्होंने कहा कि वो मोशन डॉक्टरों को प्रशिक्षित करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं में अपनी सहायता देने के लिए तैयार है। इसके अलावा वो अपने मोशन दौरे के दौरान कैंसर से पीड़ित मरीजों की सर्जरी भी करेंगे। विरासतों की हिफाजत करना, ये एक कार्यशाला का आज मुद्दा रहा। मार्च 2027 में नेशनल हेरिटेज अथॉरिटी बिल को राष्ट्रसभा में पेश किया जाएगा। फ्रांस की मदद से 3 ऐतिहासिक स्थलों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। ये बता दें कि फ्रांस 1 मिलियन यूरो देगा। पहली बार के लिए मॉरिशस में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रतिनिधिमंडल आया हुआ है। आज इस अंतर्राष्ट्रीय इदारे के महानिदेशक डारेन टांग ने विदेश मंत्री से मुलाकात की। मॉरिशस ने कई परियोजनाओं के लिए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग की मांग की है।
1: वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक डारेन टांग ने इंटरनेशनल प्रॉपर्टी से संबंधित मजबूतीकरण पर एक कार्य सत्र में भाग लिया। इसका मकसद रहा नवाचार, रचनाओं और कलात्मक रचनाओं को सुरक्षित रखने वाले इन अधिकारों को आर्थिक जरिया बनाना और रचनाकारों के लिए आय का स्रोत बनाना। डारेन टांग ने कहा, हमारे विचार से मॉरिशस में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर मजबूत नींव है। मॉरिशस के लिए अगले अध्याय के अंतर्गत ये देखना है कि मॉरिशस किस तरह पदार्थ या सेवा बन सकता है। नौकरी पैदा करना, निवेश आकर्षित करना, ठेकेदारों का समर्थन करना, ये भी कि किस तरह फाइनेंसिंग प्राप्त करने के लिए हिस्सेदार बन सकता है बैंक गारंटी को लेकर। इस कोशिश को ज्यादा आगे जाने के लिए मॉरिशस ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ जुड़ी कई परियोजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के समर्थन की मांग की है, जैसे कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन के माध्यम से स्थानीय पदार्थों का मूल्य बढ़ाना। रम, शक्कर और रोड्रिक्स के नींबू पहले से ही इस लेवल से फायदा उठा रहे हैं। मंत्री रितेश रामफल ने कहा, इससे इन पदार्थों के लिए पहचान मिलती है। जब मंडी में ये सामान बेचे जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तब पदार्थों को ज्यादा विजिबिलिटी मिलती है। निर्यात किए गए पदार्थ हैं, स्थानीय स्तर पर जो सामान तैयार किए जाते हैं, इन पदार्थों को रजिस्टर करने की संभावना है GI इंडेक्स के अंतर्गत। इसके बाद डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से जुड़े कमर्शलाइजेशन और फाइनेंसिंग पर भी बातचीत चली। इन परियोजनाओं को अमल में लाने की दिशा में मदद पहुंचाने के वास्ते मॉरिशस में एक विशेषज्ञ भेजे जाने वाले हैं, जो कानूनी ढांचे की तैयारी और वाहनों के कलपुर्जों तथा दवाइयों के लिए पैरेलल आयात को अमल में लाने की दिशा में कार्य करने में सहायता पहुंचाएंगे।
0: मलागासी उद्योगपति मामी गवातुमांग को जमानत पर रिहा करने की मांग पर बहसें आज बेल एंड रिमांड कोर्ट के सामने खत्म हो गई हैं। मैजिस्ट्रेट इल्फाज फारूक नाचिया 12 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएंगे। प्रतिरक्षा ने 300 से जायद दिनों तक अपने मुवक्किल के कैद में रखे जाने पर एतराज जताया। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने आपत्ति जताई, ये कहते हुए कि मामी गवातुमांग के फरार होने का खतरा है। गवाहों के साथ बात करने और सबूतों में हेरा फेरी करने का भी खतरा है। अक्टूबर 2025 में मामी गवातुमांग को गिरफ्तार किया गया था और मेलगोज की अदालत में तब से वे कैदी हैं। इस साल मॉरिशस में वर्ल्ड तमिल्स इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस का 13वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। कल 11 से 13 सितंबर तक पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन के अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में ठेकेदार, अर्थशास्त्री और मुख्तलिफ मुल्कों से आए पेशेवर वैश्विक अर्थनीति और अंतर्राष्ट्रीय तजारत की चुनौतियों पर बात करेंगे। यासिंदीन मोहम्मद की रिपोर्ट पर यह विवरण।
2: 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में कई देशों से आए करीब 150 प्रतिनिधि आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर सांपत कहते हैं,
3: दिस कॉन्फ्रेंस मेनली टू डिस्कस अबाउट ग्लोबल

0: इकोनॉमिक सिचुएशन।
1: ये सम्मेलन वैश्विक आर्थिक स्थिति पर चर्चा का अवसर देता है, साथ ही मॉरिशस और तमिलनाडु के बीच निवेश और विकास के अवसरों पर भी खास तौर पर चर्चा हो रही है। स्वास्थ्य, मेडिकल टूरिज्म, वित्त और प्रबंधन जैसे कई क्षेत्रों पर विचार किया जा रहा है। नेटवर्किंग सत्रों के जरिए नए साझेदारों से जुड़ने और कारोबार के नए अवसर पैदा करने का भी मौका मिल रहा है। इस सम्मेलन में तमिल समुदाय से जुड़े कारोबारी, अर्थशास्त्री और विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवर शामिल हैं। वे वैश्विक अर्थव्यवस्था में मौजूद अवसरों और चुनौतियों पर विचारों का आदान प्रदान कर रही हैं। कार्यक्रम में व्यापार में वित्तीय संस्थानों की भूमिका पर भी चर्चा हो रही है, खासकर भारत, मॉरिशस और अफ्रीका के बीच व्यापार को लेकर। साथ ही कारोबार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने वाले नियमों पर भी विचार किया जा रहा है।
2: गैर कानूनी तरीके से कचरा फेंकना यानी इलीगल डंपिंग करने की हरकत के सिलसिले में पर्यावरण मंत्रालय ने आज सुबह को दो मेमोरी फैसिलिटीज में एक राष्ट्रीय चेतना अभियान की लॉन्चिंग की। नए उपकरणों को प्रदान करते हुए यह ऐलान किया गया। भारतीय सरकार के सहयोग से 6 स्कैवेंजिंग लॉरियां दी गई हैं। ये चेतना अभियान इलाकाई प्रशासनों की मदद से चलाया जाएगा ताकि जनता के ज्यादा करीब जाया जा सके। गणेश उत्सव का माहौल देश में महसूस किया जाने लगा है। वाकुआ में गणपति के भक्त मिट्टी से बप्पा की मूर्तियां बना रहे हैं। विसर्जन विधि के दौरान भक्त उनसे अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की इच्छा व्यक्त करेंगे, अपने सभी दुख दर्द और जीवन की बाधाएं दूर करने की प्रार्थनाएं करेंगे। हर कारीगर के लिए बप्पा की मूर्ति बनाना एक कला और परम्परा के अलावा भक्ति का जरिया है।
3: रंगों से पहले मिट्टी आकार लेती है। कृष्ण राव अप्पा की उंगलियों के बीच मिट्टी दबती हैं, संवरती हैं और फिर उसके हर छोटी बारीकी पर काम होता है। धीरे धीरे उभरती लकीरें और घुमाव भगवान गणेश की आकृति में जैसे प्राण भर देती हैं। कई दशकों से वे चेहरे और आभूषणों को उसी लगन से आकार दे रहे हैं। यहाँ कुछ मिलीमीटर का अंतर भी मूर्ति के पूरे भाव को बदल सकता है।
4: C'est l'héritage qui nous transmet de génération en génération. Et moi, mon quatrième génération qui peut continuer à faire Ganpati. Et la préparation de Ganesh Chaturthi a commencé à partir de Nag Panchami. C'est là, après Nag Panchami, qui nous cesse la terre. Et bien sûr, on a cessé la terre-là, Bédicap. Et bien sûr, on a une préparation de ça, la terre-là. Quand nous prenons l'île, nous faisons mettre tremper. Et puis ça, pour 4-5 jours, et puis ça nous vient nettoyer la terre là, tirer tout simplement l'herbe et les roses, tout ça là, et nous craser la terre là, et pour capable faire ça manière pour nous rendre mortis.
3: ये कला समय के साथ थमी नहीं है, नए रूप जन्म लेते हैं और उन्हें गढ़ने की तकनीक भी निखरती गई है। इस वर्ष उनकी कार्यशाला में दो खास रूप सामने आए हैं। वीरा गणेश भगवान गणेश के वीर स्वरूप को दर्शाती है, जबकि तरुण गणेश उनके युवा रूप की झलक है। इन दोनों कृतियों में कला एक नया रूप लेती है, लेकिन आस्था से उनका नाता वैसा ही बना रहता है।
4: Nous avons beaucoup de modèles, quand nous regardons internet, nous avons différents modèles. Pour un seul motif, demande beaucoup de dévotion et beaucoup d'émotion aussi. C'est un sacrifice qu'il fait. À partir que nous commençons à Ganpati, c'est sacrifice qui commence.
3: सड़क के दूसरी ओर उनके चचेरे भाई राजभाऊ अपनी अलग कलात्मक राह पर चलती हैं। वे भी कई तरह की मूर्तियां बनाते हैं और हर मूर्ति का अपना भाव, अपना स्वभाव और अपनी पहचान होती है। लेकिन ये नई सोच केवल मूर्तियों के रूप तक सीमित नहीं। दोनों कार्यशालाओं में मूर्तियां पूरी तरह मिट्टी से बनाई जाती हैं। पर्यावरण के अनुकूल ये मूर्तियां विसर्जन के बाद पानी में सहज रूप से घुल जाती हैं।
5: Jamais une mourti va vous faire. Quand on voit la terre, les plus bons pour ventiler l'époque, les vous font pour lui-même, mais tandis que le talent, les vous, on avait au moins, il va moins. Mais ça n'a pas plus bon.
3: दो कार्यशालाएं कला की दो अलग पहचान, घरों और पूजा स्थलों तक पहुंचने से पहले हर मूर्ति में कई घंटों की मेहनत और धैर्य समाया होता है। उसकी हर रेखा में रह जाती है कारीगर के हाथ की छाप, उसकी अपनी शैली और उसके मन का भाव।
2: करात इस्लामिक कल्चरल सेंटर पोर्ट लुई में नेशनल कुरान

0: रेसिटेशन मुकाबले का ग्रैंड फिनाले लगेगा। मुल्क के दीगर इलाकों से 175 नौजवानों ने हिस्सा लिया, जिनमें 9 फाइनल्स तक पहुंचे। जीतने वालों को उमरा अदा करने का पैकेज मिलेगा। मक्कतुल मुकर्रमा सोसाइटी और एमबीसी के तावुन से कल के ग्रैंड फिनाले में पाकिस्तान के कारी डॉक्टर इकरमुल्ला मोहसिन बतौर खास मेहमान शिरकत फरमाएंगे। आप पाकिस्तान के वजीर आजम के कारी भी हैं। आज आप एमबीसी के स्टूडियो में तशरीफ लाए थे। उनकी खुशगुन आवाज में एक खास कशिश है और अरबी अल्फाज की अदायगी में ऐसी मिठास है कि दिल बेइख्तियार मुतवज्जो हो जाता है। कुरानी आयतों पर उनकी महारत यकीनन काबिल-ए-दाद है। आप एक माहिर तिब यानी मेडिकल डॉक्टर होने के साथ साथ पाकिस्तान की एक मोहतरम शख्सियत है। हमारे दरमियान साहिब इज्जत खुशलहान कारी डॉक्टर कारी इकरामुल्ला मोहसिन साहब तशरीफ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम और आदाब। आपको आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए हैं।
1: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू वेरी मच
0: कारी साहब। आप नेशनल कुरान कंपटीशन के ग्रैंड फिनाले के लिए खास मेहमान के तौर पर मुशरस आए हैं। आप हमें बताएं कि कुरान की तिलावत के लिए कौन कौन सा पहलू अहम है, मद्देनजर रखना चाहिए जब तिलावत करनी हो।
1: बड़ा खूबसूरत सवाल आपने किया। मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहला जो पहलू है वो ये है कि हमें खुलूस से दिल के साथ, खुलूस से नियत के साथ जो है वो कुरान मजीद जो है वो पढ़ना चाहिए। और फिर सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो तजवीद है, यानी कि आपका पूरा फोकस जो है वो तजवीद के ऊपर होना चाहिए। यानी कि तजवीद जो है, आप जो समझें कि तजवीद का मतलब यह है कि कुरान के जो हरूफ हैं उनकी सही प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, वो उसको तजवीद कहा जाता है। उसके फिर मखारिज हैं, फिर उसकी सिफात हैं। तो कुरान को सही अदायगी के साथ पढ़ना जो है ये बुनियादी चीज़ है। और उसके साथ फिर जो है वो मकामात हैं कि आपने किस लहन के अंदर, किस सुर के अंदर, किस लहजे के अंदर कुरान मजीद को जो है वो अपने पढ़ना है। तो यकीनन ये आप तभी पढ़ पाएंगे जब आपने ये मकामात सीखे होंगे, आपको ये इन लहजात के बारे में पता होगा। और फिर तीसरी जो अहम चीज़ है वो वक्फ और इयादा है कि जब आप कोई कुरान की आयत पढ़ते हैं तो आपने कहाँ से पढ़ना है, कहाँ पे वक्फ करना है और फिर कहाँ से आपने उसको लौटाना है, आपने उसका इयादा कहाँ से करना है। तो ये तीन बुनियादी चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं। फिर आवाज़ की खूबसूरती ही, आवाज़ का तरन्नुम, ये एक इजाफी चीज़ है। अगर किसी की आवाज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, उसकी आवाज़ में तरन्नुम ज़्यादा है, तो यकीनन जब वो पढ़ेगा तो उसकी एक अपनी चाशनी और खूबसूरती होगी।
0: 1400 से ज़्यादा सालों से कुरान पढ़ी जाती आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, हम जानते हैं कि, लेकिन आज के दौर में कितना ज़रूरी है कि कुरान पढ़ने के साथ साथ कलाम पाक को समझना चाहिए।
1: बड़ी खूबसूरत आपने बात की। कुरान का जो है वो लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, इससे कबल बल्कि इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वमु व युबश्शिरुल मुमिनीना अल्लज़ीना यअमलूनस सालिहाति अन्ना लहुम अजरन कबीरा। यकीन कुरान जो है वो मंबा रुश्द हिदायत है और क़यामत तक के आने वाले लोगों के लिए निजात का एक बेहतरीन ज़रिया है। जिस वक्त तक हम कुरान को सही पढ़ के, सही समझ के उस पर अमल पैरा नहीं होंगे, उस वक्त तक कुरान हमारे लिए निजात का ज़रिया नहीं बन सकता।
0: बेशक, जैसा कि आप कह रहे हैं कि समझना बहुत ज़रूरी है और आप ट्रेनिंग भी देते हैं कुरान पर। कुरान शरीफ जो है वो इस्लाम की सबसे बड़ी किताब है और हमारे रसूल पर नाजिल फरमाई गई थी। आप हमें बताइए कि आप एक आलम हैं, एक स्कॉलर हैं, और आपके नज़रिए से कुरान पाक का जो सबसे बड़ा दरस है वो क्या है।
1: बड़ा ज़बरदस्त आपने सवाल किया। वाहतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकु, कि कुरान की जो रस्सी है, we have to catch the rope of the Allah, and the rope of the Allah is the Quran. पूरी इंसानियत के लिए जो है इसमें दरस है, किसी एक कौम के लिए नहीं, किसी एक फ़र्द के लिए नहीं, बल्कि क़्यामत तक के आने वाले के लिए जितने भी लोग होंगे, जितने भी जो है वो अफराद होंगे, उन सब के लिए जो है इसमें खूबसूरत दरस है। और लेकिन वो बड़ी बात सबसे यही है कि जिस वक्त हम कुरान को समझेंगे नहीं तो ये हमारे लिए दरस बन नहीं सकता। जब हम तक, जिस वक्त तक इस पर अमल पैरा नहीं होंगे, उस वक्त तक ये हमारे लिए निजात का ज़रिया नहीं बन सकता।
0: कारी साहब, अगर आपको हमारी नई नस्ल के लिए कलाम पाक वाले से आपको एक पैगाम देना हो तो आप क्या कहेंगे?
1: नई नस्ल के लिए मेरा यही पैगाम है कि वो कुरान को पढ़ें, कुरान की तालीमात को आम करें। और आज बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि हमने कुरान की तालीमात को पसे पुश डाल दी है। और कुरान को जब हम आम करते हैं, जब हम कुरान को उसको पढ़ना सीखते हैं, तो यकीनन इसके साथ हमारे बहुत सारे जो मसाइल हैं उनका भी हमें हल नज़र आता है और हम एक पक्के और सच्चे मुसलमान बनते हैं। हमारा अल्लाह ताला के साथ हमारा एक क़ुर्बत का एक जो बेहतरीन ज़रिया है वो भी कुरान मजीद की रीडिंग है और कुरान मजीद की तालीमात पर अमल पैरा होना है, और उस वक्त तक हम मोमिन नहीं कहला सकते। देखें, कुरान एक अल्लाह ताला की एक ऐसी किताब है कि जिसका पढ़ना भी सवाब है, उसका मोहब्बत भरी निगाह से देखना भी सवाब है, उसको छूना भी सवाब है। तो यकीनन कुरान ही वो वाहिद किताब है जो हमारे लिए जो है उम्मत पूरी के लिए जो है वो निजात का बेहतरीन जरिया और सबब।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। बतौर मेहमान हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं डॉक्टर क़ारी इकरमुल्लाह मोहसिन साहब। आप मक्कतुल मुकर्रमा सोसाइटी की जानिब से एमबीसी के तआवुन से तिलावत कुरान के कौमी मुकाबले के ग्रैंड फिनाले में बतौर ख़ास मेहमान मुर्शिद तशरीफ़ लाए हैं। ये कॉम्पटिशन कर रात इस्लामी सकाफती सेंटर ICC पोर्टबी में किया जाएगा और कुल 9 फाइनलिस्ट हैं। हम आपको बता रहे थे विरासतों की हिफाजत करना, ये एक कार्यशाला का आज मुद्दा रहा। मार्च 2027 में नेशनल हेरिटेज अथॉरिटी बिल को राष्ट्रीय सभा में पेश किया जाएगा। फ्रांस की मदद से 3 ऐतिहासिक स्थलों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। फ्रांस 1 मिलियन यूरो देगा। अंजू राम गुलाम की रिपोर्ट पर ये विवरण।
2: हमारी विरासत को सुरक्षित रखने के लिए आयोजित कार्यशाला में अलग अलग तरह के कैमरों के जरिए इन पलों को रिकॉर्ड किया गया। अधिकारी बीते समय की इन निशानियों को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना चाहती हैं और इसी उद्देश्य से नेशनल हेरिटेज अथॉरिटी बिल को मार्च 2027 तक संसद में पेश किया जाएगा। मॉरिशस की इस पहल में मदद के लिए अप्रैल 2025 में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मॉरिशस यात्रा के दौरान फ्रांस के साथ एक समझौता तय हुआ था। इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त धनराशि भी उपलब्ध कराई गई है।
3: Nous disposons d'une enveloppe sur 2 ans qui est d'1 million d'euros.
2: दो सालों के लिए हम 2 मिलियन यूरो की धनराशि उपलब्ध करा रहे हैं। इस राशि का एक हिस्सा विशेषज्ञता अनुभवों का आदान प्रदान तथा धरोहरों का संवर्धन करने के लिए प्रयोग किया गया है। कार्यशाला में कई मंत्रियों, नागरिक समाज संस्थानों और पुलिस के प्रतिनिधि शामिल हुए। अलग अलग क्षेत्रों से आए इन प्रतिनिधियों ने अपने विचार और सुझाव साझा किए ताकि हमारी सामूहिक समिति से जुड़ी इन धरोहरों को बेहतर तरीके से सुरक्षित रखा जा सके। इन सुझावों को एकत्र कर उनका विश्लेषण किया जाएगा जिसमें विरासत प्रबंधन के विशेषज्ञ वैसोनिग्री भी शामिल हैं। जब धरोहरों के संरक्षण की बात करते हैं तो हम इलाके के प्रबंधन और विरासत के साथ उसके संबंध की भी बात करते हैं। इसमें विरासत को तोड़े जाने या उससे नुकसान पहुंचाने वालों से बचाव भी शामिल है। इसलिए इस परियोजना के लिए सभी संस्थाओं और मंत्रालयों को साथ लाना जरूरी है। मंत्री महेन गोंदिया कहती हैं, इस विधेयक की आवश्यकता है क्योंकि ऐसे कई धरोहर हैं जिनका संरक्षण करना जरूरी है और इसके लिए बहुत खर्च होते हैं, पर इस सहयोग के माध्यम से वर्तमान कार्यों को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इस सहयोग की शुरुआत के लिए 3 ऐतिहासिक स्थलों की पहचान की गई है। इनमें सचिव सागर राम गुलाम बोटानिकल गार्डन, पुरानी सुप्रीम कोर्ट और मेबर म्यूजियम शामिल है। विरासत से जुड़े इस प्रोजेक्ट में फ्रांसीसी साझेदारों का सहयोग अगस्त 2027 तक जारी रहेगा।
0: विदेश में फिलीपींस के पालावान राज्य में कश्ती में आग लगी। कम से कम 5 लोग मारे गए हैं और 87 लोग जख्मी हुए। तटरक्षकों के मुताबिक 82 लोगों को बचाया गया जिनमें 38 मुसाफिर और 4 क्रू मेंबरान शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर नवंबर के चुनावों में रिपब्लिकन्स की जीत हुई तो हर अमेरिकी नागरिक को $5,000 मिलेंगे। अपनी कार्यवधि के मध्य में पार्टी के पहले जुटाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने यह वादा किया है। और अब करते हैं मौसम की बात। मॉरिशस में कल सुबह 10 बजे तक ऊंची लहरें उठने की चेतावनी है। मस्करेंस के दक्षिण पश्चिम में जोरदार एंटी साइक्लोन पाया जा रहा है जिसकी वजह से काफ़ी ठंड महसूस की जा रही है और तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए मौसम की पेशगोई, आज रात और कल सुबह बादल घिराएंगे, रह रहकर पूर्व और सेंट्रल प्लाटो में बारिश होगी और ऊंचे इलाकों में कोहरा छाया रहेगा। कल दिन के दौरान घने बादल होंगे और ऊंचे इलाकों में रह रहकर हल्की वर्षा होगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। इसी वजह से हवाई ढलानों पर सावधानियां

रखने की मांग की जाती है। समुंदर के यानी समुंदर में लहरें उठेंगी 4 मीटर वाली, इसी वजह से समुंदर की हालत ख़राब रहेगी। सभी प्रकार की सावधानियां बरतने की मांग की जा रही हैं क्योंकि तटीय क्षेत्रों में बाढ़ उतर सकती है। तापमान, सेंट्रल प्लेटो में न्यूनतम तापमान 14 से 16, अधिकतम 20 से 23, साहिल इलाकों में न्यूनतम तापमान 18 से 21, अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 6:10 पर सूरज उगेगा और शाम को 6:03 पर सूरज ढल जाएगा।

तो ये थी अब तक की स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अब तक के बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभागों और हमारे तकनीकी साथी लुडोविक जोहांगिया की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब थोड़ी देर में आप शोक समाचार सुन पाएंगे। नमस्कार और आदाब।

0: अभिनय कोसामी मोका में 85 साल के 85 years old श्री कृष्णदत्त सिबरन जो बाबा के नाम से ज्यादा जाने जाते थे और रॉयल कॉलेज क्यूपिप में पढ़ाते थे की मृत्यु हो गई है और थी कल साढ़े बारह बजे इनके घर अभिनय कोसामी मोका से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सियाकोंस्टांस सैंपिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 12:30 PM रॉयल रोड कॉम्बे में 68 साल की 68 years old श्रीमती साकिला सोवांबेया पैदाइशी नाम लक्ष्मण जो साकिला के नाम से ज्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई है और थी कल शाम चार बजे इनके पति रमेश सोवांबेया के घर रॉयल रोड कॉम्बे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शिमा वैंपिये कॉम्बे की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 4 PM कोऑपरेटिव रोड लाफ्लोरा में 91 साल के 91 years old श्री केशवरदत्त दुबीजा जो चुनुन क्वाफिया के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है और थे कल 11 बजे के बेटे राज दुबीजा के घर कोऑपरेटिव रोड लाफ्लोरा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खोंबुआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM रॉयल रोड पिटी राफ्रे में 89 साल के 89 years old श्रीमती मिंत्रावती सिबा पैदाइशी नाम सोनियासी की मृत्यु हो गई है और थी कल दोपहर बाद एक बजे के घर रॉयल रोड पिटी राफ्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाऊची की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM मामजल जान गुडलैंड्स में 85 साल की 85 years old श्रीमती यशुमती लकू पैदाइशी नाम रामेश्वर जो दादी भानी के नाम से ज्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है और थे कल सुबह 10 बजे इनके बेटे संजीव लकू के घर मामजल जान गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM जावियर रोड कास्काविल में 36 साल के 36 years old श्री केविन सोहराई जो कुनाल के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है और थे कल दोपहर के दो बजे इनके पिता मनोज सोहराई के घर जावियर रोड कास्काविल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बसोंज की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 2 PM बुलाकी लेन मिडलैंड्स में 67 साल की 67 years old श्रीमती चंद्रिका सेलिन पैदाइशी नाम नेपाल जो गीता के नाम से ज्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है और थे कल 11 बजे इनकी माँ साबिता नेपाल के घर बुलाकी लेन मिडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मिडलैंड की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM न्यू रोड रोशनवा में 89 साल की 89 years old श्रीमती परबावती महेश जो जिब्लोसो मादाम के नाम से ज्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है और थी कल साढ़े दस बजे इनकी बेटी रानी हीरा के घर न्यू रोड रोशनवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पॉइंट दुलास्को की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेश टुमारो एट 10:30 AM शोक में दुबे परिवारों से हमें हमदर्दी है
1: kHz ये है सेंटर 95.5 नॉर्थ साउथ 95.6 ईस्ट वेस्ट 98.2
2: यू आर लिसनिंग योर RM फ्री मनोरंजन रेडियो मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: Ladies and gentlemen, अपने घर में मिला लीजिए इस वक्त शाम के ठीक 6:27 हो गए हैं

गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार और आदाब, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं नई सोच कार्यक्रम रेडियो मनोरंजन की लहरों पर। जी हाँ दोस्तों, हम आपका साथ देंगे यहाँ पर रात की 9 बजे तक। इसका मतलब ये है नई सोच कार्यक्रम रात की 7 बजे तक, फिर उसके बाद 7 से लेकर के 9 बजे तक दिलों की आवाज़ कार्यक्रम। स्टे कनेक्टेड वीव अभी, और यू कैन सेंड अस मैसेजेस हैपनिंग ऑन 5250-6200।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.
2: पता है, ऐसे सुंदर भजन सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि या जी हाँ, बिल्कुल गणेश चतुर्थी की जो एक्चुअली उनका जो वातावरण है, इसकी शुरुआत हो गई है. जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नई सोच कार्यक्रम में आप सभी का फिर से हम हार्दिक स्वागत करते हैं. इस वक्त शाम के 6:38 हो गए हैं. थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने रेडियो मनोरंजन का ही चयन किया, और इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं. रात बाकी है और बात भी बाकी है, और ऐसे टाइम पर आप लोगों के होने का एहसास भी बाकी है जी. और ऐसे टाइम पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 402-80-70 पर, 402-8070 पर. और अभी के लिए हम बात करने वाले हैं जिस प्रकार से हमारे गणेश भगवान सभी उनको कहते हैं विघ्नहर्ता, विघ्न का हरण करने वाला और स्ट्रगल करने वाला. अगर वे इस तरह से स्ट्रगल कर सकते हैं तो हम इंसान क्यों नहीं कर सकते हैं. हम उनका केवल आराधना नहीं करना चाहिए, हमें आराधना के साथ साथ उनकी बताई गई जो बातें हैं उनका भी हमें पालन करना चाहिए. सबसे पहले फोकस. जी हाँ बिल्कुल, अगर आप फुल फ्लेज एकाग्रता के साथ वो काम करेंगे ना, तो आपका जो काम है ना वो सफल होगा. कैसी सफल होगा? फोकस, कंसंट्रेट, पूरी शिद्दत के साथ आप वो काम कीजिए. भटकाव तो डेफिनेटली मिलेंगे, बहुत सारे डिस्ट्रैक्टर्स मिलेंगे, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप डिस्ट्रैक्टर्स को एंटरटेन करते हैं या फिर आप फुल फोकस के साथ वो काम करें. चलिए, नई सोच कार्यक्रम में हम यही बात करते हैं. और अगला जो गीत है, उन तमाम दोस्तों के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे जो काम से निकल कर घर की ओर जा रहे हैं. ड्राइव सेफली, अगर बारिश हो रही है बी केयरफुल ऑन रोड, बी कॉशियस, क्योंकि तेज भी हवाएं चल रही हैं, बह रही हैं. ठंडी हवाएं तो है ही, लेकिन बहुत ही जोरदार हवाओं का असर अभी जारी है मेरे दोस्त.

दिल तो आशिकाना है, लेकिन कभी कभी जब हमारा जो दिल है वो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, ऐसी ही स्थिति में आप लोग करते क्या हैं? कभी कभी आप लोगों को खुद से बात करनी

होगी और इस बात को ठीक से समझनी होगी कि दूसरों पर इतना ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अगर आप खुद पर ज़्यादा उम्मीद रखेंगे तो शायद बात बनेगी। जी हाँ दोस्तों, दूसरों पर उम्मीद रखने का मतलब ये है कि आप खुद अपने लिए आप दर्द बतोर रही हैं। मत कीजिए, ऐसा ना कीजिए। जिंदगी बहुत ही गुलजार है, बहुत ही खूबसूरत है और उसको खूबसूरत बनाने के लिए आपको खुद मेहनत करनी होगी, खुद पर उम्मीद रखनी होगी और खुद की खुशी के लिए दूसरों पर ज़्यादा डिपेंड ना हो। इसके बारे में सोचिए, आपको लगेगा कि हाँ बात तो बन रही है जी।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने घर ही मिला लीजिए, इस वक्त रात के ठीक 7 बजे हैं।

जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम भी पहुंच गए हैं सेकंड आवर में। इसका मतलब ये है दिलों की आवाज कार्यक्रम हम लेकर के आ गए हैं। दिल से स्वागत हम करते हैं आप लोगों का, और रेडियो मनोरंजन इस वक्त आप सुन रहे हैं अभी के साथ रात के 7:07 हो गए हैं।

मुझे ये पता नहीं है कि पहला प्यार है या फिर आखिरी, लेकिन हर सुबह जब आप जागते हैं तो एक नई दुनिया आपके सामने खुलती रहती है। ये दुनिया आपके विचारों से बनी है, जिसमें संभावनाओं का असीम आकाश है, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि इस असीम आकाश में उड़ान भरने की कुंजी आपके मन में ही छिपी है? जी हाँ दोस्तों, सोच ही हमारी भावनाओं का मूल कारण होता है, उसका मेन रीजन होता है। जब भी आप अपने मन में किसी निगेटिव आइडिया को आने देते हैं, तब वह एक छोटा सा बीज हो जाता है जो जल्द ही एक विशाल यानी कि बहुत ही बड़ा पेड़ के रूप में वो धारण कर लेता है, और इन्हीं और उनकी जो जड़ें हैं आपके मन की शांति को हिलाने लगते हैं। लेकिन बात देखिए, इस बात को रखिए अपने दिमाग में कि ये पेड़ भी आपकी ही हुई खाद पानी से बढ़ता है। इसके बारे में सोचे ना, ना ऐसा होता है आपके साथ क्या? And right now we shall bring you down to the memory lane of the golden era. हम बात कर रहे हैं मूवी सिलसिला के बारे में, जहां पर रेखा और अमिताभ बच्चन हरियाली फूलों के खेत में इस तरह से जब लोग शूटिंग कर रहे थे, हाय हाय क्या दिन थे।

जी दोस्तों, यहाँ पर फुलवारी से निकलकर हम पहुँच गए हैं एग्जैक्टली रुजबेल में, जहाँ पर ठंडी हवाएं बह रही हैं, हल्की सी बारिश भी हो रही है, लेकिन बारिश की बूंदों के साथ यहाँ पर सेलिब्रेट कर रही हैं यहाँ पर योगिता गुबिन, जिनका आज जन्मदिन है। बहुत बहुत सारे बेस्ट विशेज कमिंग फ्रॉम उनके लवली भाई जिनका नाम है रोशन, प्यार से उसको हम पॉलिस भी कहते हैं। वी ऑल्सो हैव विनय जो कनाडा से हमें याद कर रही है बाय लॉगिंग ऑन freew.mbcradio.tv। बाद में वो कहेंगे क्रिमिनल वाला जो गीत है ना, मेरे नाम चला देना, बाद में हम चलाएंगे। अभी के लिए स्पेशल गर्ल है योगिता के लिए, उनके दो बच्चे के नाम और दिलन और याना जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदाउट फॉरगेटिंग विवियो, और साथ ही साथ विवियो और फिगारो और उनके सभी फैमिली की ओर से, फिगारो के पूरे फैमिली की ओर से योगिता को बहुत बहुत सारा प्यार और बेस्ट विशेस दे रही हैं। वी ऑल्सो हैव उनकी प्यारी बहना, वी हैव केशिनी, वी हैव मिमी, साथ ही साथ मोमन जो इस वक्त पोर्टुगल में है और वहां से भी हमें याद कर रही हैं, विदाउट फॉरगेटिंग बावा, और साथ ही साथ है उनके प्यारे जितने सारे जो छोटे छोटे नीस एंड नेफ्यूज, यतीश, सानवी, वी ऑल्सो हैव नील, वी ऑल्सो हैव उसका नाम, हाँ निवेश, निवेश का नाम क्यों नहीं याद आ रही है, और उनकी जितने सारे जो गोबिन फैमिली हैं उनको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं, हमेशा खुश रहे ना। और एक्चुअली योगिता को 90s के गाने बहुत पसंद हैं, खासकर वे आमिर खान के बहुत बड़े फैन हैं। तो चलिए ये गाना खासकर हम योगिता के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे, और जितने सारे उनके दोस्त जिनको जानते हैं और इस वक्त हमारे साथ स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड हैं, और उनको दिल से हम कहना चाहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू योगिता।

इस गाने की फरमाइश की है आयुषा, जो इस वक्त हमारे साथ स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है फ्रॉम कोंडू मास्का। तो चलिए ये गाना आपके नाम आयुषा, आपके सभी दोस्तों, आप सभी फैमिली मेंबर्स के नाम।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी

जी हाँ बिल्कुल, वी शॉल ब्रिंग यू डाउन टू द मेमोरी लेन ऑफ द गोल्डन ईरा। हम बात कर रहे हैं 90s ईरा के बारे में, जो इस वक्त हमारे साथ स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है। हम कहना चाहेंगे थैंक यू सो मच, वेटिंग फॉर यू ऑन 5250-6200 फॉर योर मैसेजेस। एग्जैक्टली कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगे उसको हम यहाँ पर चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग अभी घर में है लॉक कंप्लीटली, क्योंकि बाहर निकलना उनके लिए बहुत ही डेंजरस होगा। क्योंकि लेकिन किंतु परंतु बंधु, अगर अंदर ही रहेंगे, हमारे गीत को एंजॉय करते रहेंगे, तो कितना अच्छा होगा जी।

दोस्तों, ऐसे गीत सुनने के बाद ना ऐसा लगता है कि हमारे जिंदगी की जो आपाधापी है, जो भागम भाग की जो जिंदगी है, उसमें एक ठहराव सा आ जाता है और उस ठहराव में हम अपने लबों पर एक हल्की सी मुस्कान लेकर के आते हैं। यहाँ पर जो अगला गीत उस शख्सियत के लिए मैं चलाना चाहूँगा, ये हमारे दिल के बहुत करीब है, हमारे दिल के बहुत करीब है, हमारे टेस्ट के बहुत करीब है, हमारे पेट के बहुत करीब है। एक्चुअली हम बात कर रहे हैं विशाल बिसेसा के बारे में, जिनका आज जन्मदिन है। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर नहीं भाई, हैप्पी बर्थडे टू माय ब्रो, टू माय मेरे भाई विशाल। सब लोग उसको विशाल कैंटीन कहते हैं, लेकिन हम उसको कहते हैं भाई विशाल, नमस्ते, आप कैसे हैं? एक हल्की सी मुस्कान के साथ, वो भी हल्की सी मुस्कान के साथ कहते हैं, भाई अभी आप क्या खाएंगे? सवाल यही है, क्या खाएंगे आप? हम पेट की आग लेकर के बुझाने के लिए उनके यहाँ चले जाते हैं। कभी कभी हम लोग 4-5 घंटे बिना खाए ऐसे ही रह जाते हैं, शूटिंग के बाद या फिर शो के बाद या फिर समाचार के बाद। जब उनके यहाँ जाते हैं, उनकी हमारा जो दर्द है, हमारी जो भूख है, हम लोग भुक्कर हो जाते हैं, वे उस पेट की आग को बुझाते हैं। थैंक यू सो मच इसके लिए। जितने सारे लोग इस वक्त, खासकर जो एमबीसी के जो लोग हैं, जब उनके यहाँ जाते हैं, हाय हाय क्या बात है, उनके जो हाथ के द्वारा बनाए गए जो खाने हैं अपने आप में बेमिसाल हैं, और उसको खाने में जो मज़ा आता है ना, क्या बात। तो बहुत बहुत धन्यवाद हम आपको कहना चाहेंगे पूरी टीम की ओर से, रेडियो मस्ती, रेडियो मनोरंजन, समाचार की पूरी टीम की ओर से, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत सारे बेस्ट विशेस हम देना चाहेंगे। भाई विशाल, हमेशा खुश रहना, आबाद रहना। मुझे पता है सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक काम करना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन आप कर लेते हैं, आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर लेते हैं, ताकि हर एक जो स्टाफ है उनकी जो पेट की जो आग है वो बुझा सके। इसके लिए ऊपर वाले आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। सो भाई विशाल, ये गाना खास कर आपके नाम।

एक और बात है भाई विशाल, आपकी लवली वाइफ ने इस गाने की फरमाइश की है आपके लिए और वो कहना चाहते हैं कि वो आपसे बेतहाशा मोहब्बत करती है। विदाउट फॉरगेटिंग आपका छोटा लल्ला भी आपको बहुत बहुत सारे बेस्ट विशेस दे रही है।

जी दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं दिलों की आवाज़ कार्यक्रम अभी के साथ। रात की 7:47 हो गई हैं और आपके जो सॉन्ग सिलेक्शन है अपने आप में बहुत ही लाजवाब हैं। बेमतहाशा मोहब्बत

हम भी आपसे करते हैं बारिश की बूंदों के साथ, हल्की और ठंडी हवाओं के साथ। उनकी कसम खा करके मैं कहता हूँ कि मैं भी आपसे बेइंतहाशा मोहब्बत करता हूँ। और ये जो मौसम है ना, अगर उसको आप बेईमान कहेंगे तो डेफिनेटली बेईमान ही रहेगा, लेकिन अगर उसको अलग नज़रिए के साथ झांक करके देखेंगे ना तो आपको लगेगा हाँ ये मौसम जो है वो प्यार का मांझ रहा है जी। और ये गाना उन तमाम दोस्तों के नाम हम डेडिकेट करना चाहेंगे जिस वक्त हमारे साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं आशा ताई और किशोरदा की आवाज़ों में। और ये गाना स्पेशली जो लोग इस वक्त अभी तक काम कर रही हैं, बोकोराज टू एवरीवन।

जी हाँ दोस्तों, प्यार का जो कारवा है उसको हम यहाँ पर लगातार बढ़ाती जा रही है रेडियो मनोरंजन के लहरों पर। वेटिंग फॉर यू ऑन 402-80-70 पर, 4-0-2-8-0-7-0 पर। एग्जैक्टली कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगे उसको हम यहाँ पर चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके दिल के जो तार है सितार के साथ हम जोड़ना चाहेंगे।

0: Center 95.5. North South 95.6. East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अपनी घेर घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त रात के ठीक का 8 बजे है। बारिश की बूंदों के साथ आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए। वेलकम बैक फॉर यू सेकंड आवर ऑफ दिलों की आवाज कार्यक्रम अभी के साथ रात के 9 बजे तक वेटिंग फॉर यू ऑन 402-80-70 पर 402-80-70 पर हम भी आपको दे रहे हैं दावत इश्क।

जी हाँ बिल्कुल, कभी कभी जब बरसाती मौसम होता है ना तो ऐसे ही मूड रोमांटिकली सेट हो जाता है और अब सब लोगों की नींद उड़ करके आ गई है और कह रहे हैं कि अभी पता है आपका सॉन्ग सिलेक्शन एकदम बढ़िया है। एक्चुअली हर थर्सडे को मैं आप लोगों की मांग को ध्यान में रख करके ही ऐसे ऐसे गीत सुनाता हूँ। जैसे कि बहुत ही इत्मीनान होकर के मैंने बताया था कि आज योगिता गुबिन का जन्मदिन है, तो उनके जिगरी दोस्त जिनका नाम है प्रीति अंगद, उन्होंने फ़ोन करके कहा कि प्लीज़ अभी एक गाना उनके नाम चला दीजिए। चलिए मैं फिर से एक गाना चलाऊंगा, वाई नॉट। सो दिल चाहता मूवी से है और योगिता गुबिन को आमिर खान बहुत पसंद है, उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं और इसलिए उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं क्योंकि वो एक वर्सटाइल एक्टर है। तो बहुत बहुत सारे शुभकामना का गुलदस्ता यहाँ पर यजुर दे रही है, साथ ही साथ है केशिनी और यजुर के सभी दोस्तों की ओर से भी योगिता गुबिन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, बहुत बहुत सारे बेस्ट विशेस देना चाहेंगे। दिलान याना उनके दो बच्चों की ओर से

बहुत सारा प्यार, बहुत बहुत सारे बेस्ट विशेज और शुभकामनाएं। तो चलिए अगला गीत स्पेशली हम डेडिकेट करना चाहेंगे योगिता गोबिन के नाम, और इस गाने की फरमाइश की है स्पेशली प्रीति अंगद फ्रॉम मोदालबेया।

और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं विनय गोबिन फ्रॉम कनाडा बाय लॉगिंग ऑन freew.mbcradio.tv। ये गाना खासकर उनके लवली वाइफ गौरी के नाम, साथ ही साथ सानवी और यतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो यस, वी शुड ब्रिंग यू डाउन टू द मेमोरी लेन ऑफ द गोल्डन ईरा ऑफ 90s, और ये गाना खासकर विनय गोबिन के नाम।

और इस गाने की फरमाइश की है यहाँ पर श्वेता, उन्होंने कहा रवीश प्रीशा लविशा और दागेन और सभी अपाडू फैमिली जो खुशनुआ के रहने वाले हैं, ये गाना खासकर उन लोगों के नाम।

शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। ये यादें, हाय यादें, यादें।

0: एमपीसी तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।

जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमारे साथ विक्रम भी जुड़ गई है। नाइट शिफ्ट का काम इसकी शुरुआत हो गई है। गरम गरम कॉफी का लुफ्त उठाते हुए अपने सभी दोस्तों के साथ एक हल्की सी मुस्कान के साथ वे कर रही है, चल भाई हो जा शुरू। ये गाना आप लोगों के नाम, वो गुगाज टू यू गाइज़।

ये गाना खासकर हम परितुष्टि मुगन के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे, जिनका जन्मदिन कल था। बहुत सारे बेस्ट विशेस कमिंग फ्रॉम मामा पूनम मुगन, वी आल्सो हैव पापा जी मनीष और फैब्रिस अस्मिता, उनके अंकल और उनके दादा दादी और उनकी सभी मुगन और लोखन फैमिली की ओर से हैप्पी बर्थडे टू परितुष्टि।

बहुत सारे लोग इस वक्त हमारे साथ स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड हैं, खासकर वे लोग गणेश चतुर्थी की तैयारियों में लगे हुए हैं। और राइट नाउ फ्रॉम शुमे ग्रेये शामुनी वी हैव गोपाल फैमिली जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम गोपाल फैमिली को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे और बो कुराश कहना चाहेंगे, क्योंकि पता है गणेश चतुर्थी की तैयारी, उसका प्रिपरेशन करना कितना टफ होता है, लेकिन बप्पा बहुत बहुत आशीर्वाद देंगे आप लोगों को। और हमेशा गोपाल फैमिली गणेश भगवान की जो महिमा है, हमेशा उनका गुणगान करें। और साथ ही साथ वी हैव नीलकंठ सकाराम जो हमेशा उनकी मदद करेंगे। सो ये गाना खासकर उन लोगों के नाम हम डेडिकेट करना चाहेंगे। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमारा साथ दिया। एंड वी हैड ए वेरी नाइस मोमेंट टुडे, क्योंकि बारिश भी हुई और बारिश की बूंदों के साथ आप लोग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सो हियर वी गो, ये गाना खासकर आप लोगों के नाम, गोपाल फैमिली, नीलकंठ सकाराम। अभी को दीजिए इजाजत, नमस्कार और आदाब, थैंक यू, बाय बाय।

0: मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया। एमबीसी टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ।
2: मैं तुम्हारे हर मतलब का मतलब समझता हूँ सोनिया। तुमने सोचा होगा कि तुम्हारे इस राज पर हमेशा पर्दा पड़ा रहेगा, लेकिन आज पर्दा उठ गया, हकीकत सामने आ गई। तुम्हारा प्यार इतना सस्ता है कि प्रताप सिंह जैसे लोग भी खरीद सकते हैं।
3: नहीं विजय, तो
2: मैं नहीं जानता था कि इस मासूम चेहरे के पीछे कैसा चेहरा छुपा हुआ है जिसका ईमान धर्म सिर्फ पैसा है।
1: शनिवार 12 सितंबर को एमबीसी 4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म दिल तेरा आशिक। 90s के दौर की ये हसीन मूवी 1993 की ये फिल्म सलमान खान और माधुरी दीक्षित पर फिल्माई गई दिल तेरा आशिक।

0: भोजपुरी के धमाल, भोजपुरी तड़का, आज की रात किरण संगे।
1: आज के रात है 10 सितंबर 2026 के रात और दिन है बृहस्पतिवार यानी कि बीफे। 9:05 होल बा सुना था रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस और हम किरण आप सबको एक स्वागत करत है। हमार प्यार भरा नमस्ते स्वीकार कर। आज के इजन रात बा बहुत बरसाती बा, बहुत ठंडा हवा चलता और ऐसन में अगर आपके निकले के नहीं हुई घर से तो बिना भेद के कहूँ नहीं जा, घर पर रह, जे बहुत ही ज़रूरी हुई, बहुत नेसेसियर रही तब सकबा निकले और नहीं तो अपन सुरक्षा खातिर, औरों के सुरक्षा खातिर और अपन खुद के स्वास्थ्य खातिर आप हमने संगे जुड़ल रह, घर पर ही रह। पहला गीत आप सब कोई के नाम पानी बरसेला।

जैसे दिखत है जा आज का सब कोई गणेश वंदना में मगन हवा जा और गणेश चतुर्थी ढेर दूर नहीं बा आवत से मन मनावब जा आप सब कोई के जे गणेश व्रत रखत हवा जा गणेश वंदना में लगल हवा जा आप सब कोई के बहुत बहुत शुभकामना और ई गणेश वंदना गीत बिस्वानी दीपो के आवाज़ में ई ख़ास तौर पर शीला जी के फरमाइश पर आप अपन सब लड़का लोग के नाम ई गीत करत हवा श्लोक कबीर यौवन सोनम और आपके सब नाती पोता सब बेटा बेटी के नाम दामाद के नाम जे लोग पर हमेशा गणेश जी के कृपा बनल रही और ई बखत जितना कोई हमने के सुना था वजह मंदिर से वापस आवा था वजह या फिर घर के ही पूजा से उठा था वजह आप सब कोई के एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामना।

9:15 होल बा और आज के प्रोग्राम के श्री गणेश होगल बा। भोजपुरी तर का प्रोग्राम चला था अभी से रात के 11 बजे तक। आप सबको साथ देवत हो जा, आप सबको के बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे शुरू में बोल ली, आज बहुत ठंडा रात बा, पानी होला रात बा, ऐसन में आप कि चाहिए अपन रेडियो के करीब रह के जे खाना खा ले हुई बा, तो अब आराम करे के समय चला बा। खाना के बाद आराम और नींद, ई दोनों के बीच एगो बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। ऊ है एगो ऐसन गतिविधि में शामिल हो जाए के या तो बैठ के टीवी देखा, या फिर रेडियो सुना, या फिर एगो किताब पढ़ा, आपके जोन खाना बा ऊ भी पच जाए और साथ में आपके नींद भी आवे के शुरू हो जाए। और ऐसन में आपके चाहिए ऐसन ऐसन ख्याल, ऐसन ऐसन विचार करे के जेकर से आपके मन शांत रही। दिन भर के थकान के बाद ई बखत आपके चाहिए सब कुछ भुला के अब एगो नवा दिन के शुरुआत खातिर नवा संकल्प, नवा कल्पना करे के। और बोलल जाला संकल्प से सिद्धि होवेला, तो जोन सोच के सुते जेबा वैसे ही आपके अगला दिन रही, वैसे ही आपके तकदीर बन ले जाए। तो चला अगला गीत, पिती पिती छोकरी जनाना तुरे जाला। ई एगो ऐसन गीत है जेकर में छोटा छोटा कहानी बा, छोटा छोटा बात बा, और बहुत ही मधुर आवाज़ में, बहुत ही अच्छा लय में सुदेश बोईजू ई गीत गैले हवन। आप सब कोई के नाम ई अगला गीत।

जीवन संगे। अभी आप सुना था अपन मनपसंद प्रोग्राम भोजपुरी तड़का, और आज बीफे के दिन हो गए। देखते देखते 10 तारीख सितम महीना के जन्माष्टमी गुजर गए। अब गणेश चतुर्थी आवता ओकर बाद पितर पक चलाए और फिर दिवाली चलाए। बहुत तेज़ी के साथ समय चल ले जाता, और देखते देखते ये जोन बरिस बा वो गुजर जाए, नवा बरिस भी चढ़ जाए। और ऐसा मैं चाहला हर एगो जोन पल बा ओके जी भर जिए के, और जोन दुख के पल रही ओके चाहे जितना हाली होई ओके भुला जाए के। बुलल जला दुख के पल बरिसन जैसन बुझाला, और जोन खुशी के पल रहला वो हाली हाली बीत जाला। तो आपके चाहे जितना जहाँ तक हो सके जोन दुख के पल बा ओकर से अपन ध्यान हाली से हटा लेवे के। और दुख सुख का देखबा था जोन हमनी के आस पड़ोस में जोन चीज बीता था, हमनी के सामने, हमनी के पीछे, हमनी के बगल में, ओकर से हमनी के कौन प्रतिक्रिया आवेला, कैसे हमनी ओकर से निपटेला, स यही है सुख और दुख। तो जोन भी कठिनाई जोन भी चुनौती आपके सामने आई तो वो कही चाहे बहुत हिम्मत से ओकर से निपटे के, ओकर से काम लेवे के। कहे कि बोलल जला कि कुछ भी जीवन में हमेशा खातिर नहीं है, दुख के पल भी कट जाला, सुख के पल भी कट जाला। तो यही सबसे अच्छा बात बा कि दुख के जोन पल बा वो भी कट जाला, और आपके चाहिए हमेशा ऐसा ऐसन मौका ढूंढे के, ऐसा पल ढूंढे के जहाँ पर सकबा ये सब बात भुला के थोड़ा आशावादी बने, थोड़ा खुशी के बात सोचे। तो ये वही बखत है, ये 2 घंटा जो चलेला भोजपुरी तड़का में हमने के।

ये देश के ही गावल गीत, हमनी के भाषा में गावल गीत, हमनी के कलाकार लोग द्वारा गावल गीत, और ऐसन ऐसन मौका पर जोन हमनी रोज जीला सा अपन जीवन में, अगला गीत थोड़ा जीले। ये गीत बंधु राजा के आवाज़ में ये गीत सुने चाहत हवन ते अगोश के शांति जी, और आप अपन पूरा मराठी परिवार के नाम जे लोग दागुचिया से हवन सा, और अपन भगीना ओम के नाम अपन दागुचिया से जे हवन, और ख़ास तौर पर आप अपन भाई बलराम के नाम ये गीत करत हवा। बलराम जे पुलिस अफसर हवन और ये प्रोग्राम सुनते रहेलन, और आपसे शिकायत भी करेलन कि खाली आप अपन भगीना खातिर गीत मांगेला। तो चला आज आपके भाई बलराम के नाम भी ये अगला गीत शांति जी के ओर से जे त्यागुश से हवन।

जब देवता देवी आसन छोड़ दिया तो खीर पूरी चढ़ाने से क्या होगा। भर पेट जब भात खा लिया तो अब खुद ही चुनने से क्या होगा। अरे गंदे पानी पीकर प्यास बुझा लिया तो

0: अरे रिश्ता जोड़ने से क्या होगा, अपने घर के कुत्ता जब काट दिया तो पुलिस को बताने से क्या होगा।
1: कौन फुलवा कौन फुलवा फुलेला तो रंगना, ये गीत के फरमाइश कर ले हवन विजय बेनी प्रसाद जी। और आप ये गीत अपन खास दोस्त गणेश जगनारायण के नाम करत हवा जे शामुनी से हवन, और अपन दोस्त शास्त्री बुनमाली के नाम, और पूरा जन बेनी प्रसाद परिवार बा, आपके धर्मपत्नी, आपके बेटी और सब परिवार के नाम। सुना नुयान के आवाज में चला ये गीत सुनी जा।
0: अरे सफेद चादर में दाग लग गई तो अरे नदी में जाकर धोने से क्या होगा, जब घर की चौकट साफ किया नहीं तो आंगन झलकाने से क्या होगा, जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा, जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या हो,

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।

0: भोजपुरी तड़का किरण संगे
1: Center 95.5 North South 95.6 East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ एमबीसी टीवी रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
4: पाव किलो का भेजा भी अजीब चीज है, ठीक हो तब भी तकलीफ देता है और अगर ना ठीक हो तब तो और भी तकलीफ देता है।
5: लड़की जिसकी आंखें ये कहती हैं।
0: रविवार 13 सितंबर को

KBC3 पर दिन के 12 बजे हिंदी फीचर फिल्म चैंपियन 2000 की ये मूवी सनी देओल और मनीषा कोइराला पर फिल्माई गई चैंपियन।

ये धुन से के परिचित नहीं बा ये ला म्यूजिक सुनते ही जान जाए बा कि अब ब्रह्माजी के आवाज गुंजे होला बा जुबेदा लोटू लेके जाए ये गीत सुने चाहता वन पितों से अमृता गणेश और ये गीत आप खास तौर पर अपन बेटा के ओर से विशान के ओर से मांगा था वा और विशान ये गीत अपन धर्मपत्नी मीनाक्षी अपन बेटी सोनिया और परी के नाम भी करा था वन

जुबिदा लुतु लेके जाए अब ई गीत के बाद अगला जन गीत चली उमीरा मोहन के आवाज में चटनिया और ई गीत सुने चाहत हवन वाकवा से विश्वानी दोमन जी और आप ई गीत अपन बहिन इंदिरा शारदा और सहेली नीला प्रतिभा शोभा और गीता खातिर मांग करत हवा और जितना कोई ई भकत हमनी के सुनत हवा जा आप सब कोई के नाम ई अगला गीत मीरा मोहन के आवाज़ में

रात के 10 बजे में 2 मिनट कमती बा और आप सुना था अपन मनपसंद प्रोग्राम भोजपुरी तड़का रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर. अगला जो गीत चली ये गीत के फरमाइश आलबा फिल्म के मतलब गीत के जो शीर्षक है वह अयोध्या के राज सिया मांगे अयोध्या के राज. ये एगो जन्मदिन के अवसर पर अभी हम चलावे जाते हैं और जन्मदिन बा आज कैथोबोन के प्रेमिला जी के बेटी विद्या विद्या के जन्मदिन और विद्या जी के उनकर माता जी के ओर से ढेरों बधाई साथ में उनकर पति प्रवेश और ओकुले से सब परिवार के ओर से और उनकर जुड़वा बेटा बा लव और कुश लव और कुश अपन माँ के जन्मदिन के शुभकामना देवत हवन जा और विद्या के तीन गो मौसी उनका

और भाई रोशन के ओर से जे रोजबेल हवन और देवनारायण परिवार के ओर से, फिर बिसेसर परिवार के ओर से यश युग यानव के ओर से, परिवार में ढेर कोई हवन जा तब पूरा परिवार के ओर से विद्या जी के जन्मदिन के ढेरों शुभकामना।

0: खुद क्षमा को लेने आया है परवाना।
1: तुझे आज तक एक मामूली चोर समझता था, लेकिन तू तो आतंकवादियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। जानता ही ये क्या है? बम है बम।
0: आग में कूद पड़ूं, इरादों में असर रखता हूँ, नाम है परवाना।
2: रविवार 13 सितंबर को NBC 4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म परवाना 2003 की मूवी अजय देवगन और अमिषा पटेल पर फिल्माई गई परवाना।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। भोजपुरी तड़का किरण संगे।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: रात के 10:10 होल बा ऐसा जन शिफ्ट बा हमके बहुत अच्छा लगेला। जब तालमेल अच्छा से बैठेला तब बुझाला ये जन ब्रह्मांड बा ओकर हर एगो कर्ण अलाइन हो जाता, हर एगो कर्ण एगो सीधा रेखा में चला हुआ था, सब कुछ ठीक ठाक चलता। हमी के यही उम्मीद बा कि आपके जीवन में भी सब कुछ ऐसे ही ठीक ठाक चली, आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, आपके लड़का के जीवन में, आपके माँ बाप के जीवन में। और अगला गीत सैंपिया से, लविनिया सैंपिया से अफेज के नाम। अफेज आप सुने चाहता हुआ आज के गमट को और किशोर की मियाँ की आवाज़ में ये गीत आप सबके नाम करा था जे ई बखत हमने के सुनत हवन जा। तो अफेज जी खास आपके नाम ई अगला गीत।

आज के गमट को लाले लाल बा एकर बाद अगला जन गीत चली पूर्णिमा फकीरा के आवाज में और ये गीत सुने चाहत हवन से जमील फॉरेस्ट साइड से शांता सुकारी जी जे बोलत हवन उनकर यहाँ बहुत ठंडा कर रहा और जितना दुलिया बा सब उठ गल बा कहे कि जब ठंडा करे रहा जितना दर्द है वो और तेज हो जाना तो हमने आशा करते जाकि जो अगला गीत चली ये सुन के आपके दर्द कमती हो जाए। शांता जी आप अपन पूरा परिवार के नाम ये गीत करत हवा अपन बेटा अपन पतो और अपन नाती पोता और साथ में ये गीत मोहताबा के कमला दिनू के ओर से भी आप ये गीत अपन नातिन आरोही के नाम करत हवा। आप भी बोलत हवा कि मोहताबा में भी बहुत ठंडा हवा पानी कर ले बा और आप अपन नातिन खातिर ये अगला गीत चलावे चलावत हवा। तो जितना कोई अभी हमने के सुनत हवा जा या तो आपके अभी नींद आवत हुई या फिर आपके इंतज़ार बा कब एगो अगला गीत चली जो जस्ती अच्छा रही तो ये अगला गीत आप सब कोई के नाम

पूर्णिमा फुकीरा के आवाज में ये गीत के बाद जो नगला गीत चले होला बा वह संतोष महादेव के आवाज में पियर पियर ऊंटी ये गीत सुने चाहता वन घोंगोप से श्यामा रघुनंदन जी और साथ में ये गीत वाकवा के सुदेवी जी भी सुने चाहता वन अपन दीदी ललिता सुनीता शोभा देवीना के नाम और मालेगा के सब राम रतन परिवार के नाम

बड़की मसाला पिसेला ये गीत क्रिश हृदय के आवाज में सुने चाहत हवन फ्लिक ऑफ लक से अनीता जी और आप ये गीत जितना कोई ई बखत हमने के सुना था वजह सब कोई के नाम करत हवा और आपके सब दोस्त आपके सब परिवार खातिर भी

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: भोजपुरी के धमाल, भोजपुरी तड़का, आज की रात किरण संगे।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर आरएम फ्री मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: Bhojpuri Tadka, Kiran Sanghi.
4: रात के 10:41 होल बा, 11 बजे में 20 मिनट से कमती समय बा और 11 बजे तक ये आपके प्रोग्राम चली आपके ही पसंद के गीत। अगला गीत जिसे सुना था वह सुलकावाल नीरज गुप्त मधु की आवाज़ में और एक बाद मोर जानिको को कृष्ण दोए की आवाज़ में, फिर गीत गवाई के गीत बिजमावती सांपत की आवाज़ में और आखिरी गीत रही लंगड़ो राधन राम साहा की आवाज़ में।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर आरएम फ्री मनोरंजन रेडियो मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: Bhojpuri Tadka, Kiran Sanghi.

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your morning station. जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ.
3: प्यारे प्यारे श्रोताओं, नीतू शाह का करजोर प्रणाम. इस समय आप रेडियो मॉरिशस के साथ जुड़े हुए हैं, तो आइए इसे घंटे के सुरीले सफर यानी कि सुनहरे पल में स्वागत है आपका.

आज हम बात करेंगे श्रोताओं नितिन मुकेश जी, हाँ द ग्रेट मुकेश जी के बेटे नितिन मुकेश के बारे में। नाम सुनते ही एक ऐसी आवाज़ याद आती है जिसमें मिठास भी है, सादगी भी है और एक गहरी इमोशनल वॉर्म्थ भी। महान गायक मुकेश जी के बेटे होने के बावजूद नितिन मुकेश ने अपनी पहचान सिर्फ अपने पिता के विरासत के सहारे नहीं बनाई, बल्कि अपनी मेहनत, अपनी आवाज़ और अपने खास अंदाज़े गायकी से हिंदी फिल्म संगीत में एक अलग मकाम हासिल किया।

राजेश का जन्म 27 जून 1950 को हुआ था। बचपन से ही उनका माहौल संगीत से जुड़ा रहा। उनके पिता मुकेश जी हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार प्लेबैक सिंगर्स में से एक थे। ऐसे माहौल में पलने के कारण नितिन जी को बहुत ही कम उम्र से ही सुर, ताल, संगीत की गहरी समझ मिल गई। लेकिन एक मशहूर गायक का बेटा होना अपने आप में सफलता की गारंटी नहीं होती। अपनी आवाज को पहचान देना और अपने लिए एक अलग जगह बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा।

उन्होंने बहुत छोटी उम्र में प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया में कदम रखा। उनकी आवाज में अपने पिता मुकेश जी की कुछ झलक जरूर महसूस होती थी, लेकिन धीरे धीरे नितिन मुकेश ने अपना खुद का सिंगिंग स्टाइल डेवलप किया। उनकी आवाज में एक सॉफ्ट टेक्सचर, साफ प्रोनाउंसिएशन और जज्बात को सीधे दिल तक पहुंचाने की खूबी रही। वो जब रोमांटिक गाने गाते तो आवाज में नरमी और मोहब्बत का एहसास होता। दर्द भरे गीतों में एक जेन्युइन उदासी महसूस होती और भक्ति या इंस्पिरेशनल कंपोजिशंस में आवाज एक अलग ही रूहानी रंग ले लेती।

नितिन मुकेश के करियर में 1980s और 1990s का दौर खास तौर पर याद किया जाता है। उन्होंने कई मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया और हिंदी सिनेमा के कई यादगार गीतों को अपनी आवाज दी। उनकी आवाज को खास तौर पर ऐसे गानों में बहुत पसंद किया गया जहां मेलेडी और इमोशन दोनों की जरूरत थी। उनके बहुत सारे मशहूर गीत रहे, लेकिन नितिन मुकेश की पहचान सिर्फ फिल्म सॉन्ग्स तक ही सीमित नहीं रही। उन्होंने लाइव परफॉर्मेंसेस, डिवोशनल म्यूजिक और स्टेज शोज के जरिए भी अपने सुरों का सफर जारी रखा। उनकी सिंगिंग स्टाइल की सबसे खास बात है उनका इमोशनल एक्सप्रेशन। वो गाने को सिर्फ सुरों में नहीं भावों में भी पेश करते हैं। उनकी आवाज में एक नेचुरल सॉफ्टनेस है जो रोमांटिक मेलोडीज को खूबसूरत बनाती है। साथ ही उनकी डिक्शन यानी अल्फाज को साफ और समझने लायक तरीके से पेश करने की कला भी उनकी एक बड़ी स्ट्रेंथ रही है।

वैसे नितिन मुकेश की आवाज को सुनते वक्त अक्सर महसूस होता है कि वो गाने के अल्फाज को समझकर गा रहे हैं। उनकी गायकी में अननेसेसरी वोकल शोमैनशिप कम और इमोशन ज्यादा नजर आता है। इसी वजह से उनके कई गाने सीधे सुनने वाले के दिल से कनेक्ट कर

म्यूजिकल लिगेसी को जिंदा रखा, लेकिन साथ ही उन्होंने अपने इंडिविजुअल करियर को भी बनाए रखा और ये साबित किया कि विरासत मिल सकती है लेकिन अपनी पहचान खुद बनानी पड़ती है।

अपने करियर के दौरान उनको कई अवार्ड्स और ऑनर्स से भी सम्मानित किया गया। जी हाँ, नितिन मुकेश को अपने म्यूजिकल कंट्रीब्यूशन के लिए कई सम्मान और रिकॉग्निशंस भी मिले। उनका करियर सिर्फ अवार्ड्स की संख्या से नहीं बल्कि उनके लंबे सफ़र, लाइव परफॉर्मेंसेस और हिंदी फिल्म म्यूजिक के प्रति उनकी डेडिकेशन से भी पहचाना जाता है। उन्हें मुकेश जी की म्यूजिकल लेगेसी को आगे बढ़ाने और हिंदी संगीत की परंपरा को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए भी सम्मान मिला है। नितिन मुकेश के करियर को देखा जाए तो ये एक ऐसे सिंगर की कहानी है जिन्होंने एक महान गायक के घर में जन्म लिया लेकिन अपनी आवाज से अपनी जगह बनाई। उनके लिए मुकेश जी का नाम एक इंस्पिरेशन भी था और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। उन्होंने अपने पिता की गायकी को इमिटेट करने के बजाय उस विरासत को सम्मान दिया और अपने अंदाज में संगीत की दुनिया में अपना सफर तय किया।

जब हम हिंदी फिल्म म्यूजिक के गोल्डन और लेटर एरास के सिंगर को याद करते हैं तो नितिन मुकेश का नाम एक खास एहसास के साथ लिया जाता है। उनकी आवाज हमें याद दिलाती है कि प्लेबैक सिंगिंग सिर्फ सुरों का खेल नहीं, ये इमोशंस, एक्सप्रेशंस और स्टोरी टेलिंग का भी नाम है। नितिन जी का सफर हमें एक खूबसूरत बात सिखाता है, विरासत हमें एक पहचान दे सकती है लेकिन उस पहचान को अपनी मेहनत से मजबूत बनाना पड़ता है। और नितिन मुकेश ने अपनी आवाज, अपने सुर और अपने डेडिकेशन से हिंदी संगीत के सफर में अपना एक यादगार पन्ना जरूर लिखा है। तो आज अगर आप नितिन मुकेश जी का कोई गीत सुने तो सिर्फ मेलोडी को मत सुनिए, उनकी आवाज में छिपी जज्बात को महसूस कीजिए, क्योंकि कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, वो सीधे दिल में उतर जाती है। नितिन मुकेश की आवाज भी उन्हीं सुरीली आवाजों में से एक है। प्रणाम, शुभ रात्रि।